0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली के अपग्रेड होने से एआई के माध्यम से

सड़कों पर वर्जित या खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, या फिर खतरनाक ड्राइविंग या रेड लाइट पार करना। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ा दिया है। ये वित्तीय साल इस गुरुवार 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस तरह मॉरिशस का कोटा 12,910 से बढ़कर 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू हो गया है, जो 6.3% की बढ़ोतरी है। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार मॉरिशस यह अतिरिक्त 813 टन चीनी बेच पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई है। इनके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण बताया जाता है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होती रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सुबह के 6:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 28 सितंबर 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए 9 बजे तक। जी हाँ, सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि एक नई उम्मीद लेकर आती है। श्रोताओं, कल की थकान और परेशानियों को पीछे छोड़कर आज फिर से मुस्कुराने का मौका मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आइए सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुतबंधु आज आप सभी के मध्य यज्ञ के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह देखकर और जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मॉरिशस देश के वासियों की यज्ञ के प्रति अगाढ़ श्रद्धा है। बंधुओं, ये श्रद्धा आपकी हमेशा ऐसी ही बनी रहे, परंतु हमें

हज करते समय कुछ चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हमारी अच्छी भक्ति के द्वारा किया गया यज्ञ भी लाभकारी नहीं होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि भगवान श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा होगा या कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ कहलाता है, तो भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से तीन यज्ञों का वर्णन करते हैं, तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और सात्विक यज्ञ। तामसिक यज्ञ वह है जो दूसरों की हानि के लिए होता है, जिसमें तमोगुण विशेष होता है। राजसिक यज्ञ वह होता है जिसमें अपनी मान प्रतिष्ठा, अपने राजस्व को बढ़ाने की कामना से जो किया जाए। और बंधुओं, सात्विक यज्ञ वह होता है जो लोकोपकार व अंतःकरण की शुद्धि के लिए सत्व गुण के द्वारा किया जाता है। अब हमें यह जानना है कि हम जो यज्ञ करते हैं वह यज्ञ हमारा सात्विक है या फिर तामसिक है, उससे लोगों का उपकार हो रहा है और हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, या फिर उससे हानि हो रही है या हमें उससे कोई लाभ नहीं है। बंधुओं, इसको जानने के लिए हमें गीता के उस श्लोक की ओर बढ़ना होगा, जिस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया, विधिहीनम मंत्रहीनम असृष्टानम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम तामसम यज्ञम प्रचक्षते। प्रिय बंधुओं, मॉरिशसवासियों, केवल आप यज्ञ करते समय पांच चीजों पर विशेष ध्यान देना। सबसे पहले बताया विधिहीनम, अर्थात कोई भी कार्य किया जाए सबसे पहले उसके संविधान को जानना होगा, उसका संविधान हमें बनाना होगा। और यज्ञ का संविधान उसकी विधि है कि कब कौन सी चीज़ें करना है, कब आचमन करना है, कब संकल्प करना है, कब अग्नियाधान करना है, कब स्वस्ति वाचन, कब शांतिकरण करना है और कब कब किन किन मंत्रों का विधान करना है। तो हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद जो हमारे बीच में परिष्कृत यज्ञ को रखा है, उस परिष्कृत विधि को रखा है, उस विधि को जानते हुए हम सब लोग अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ करने का प्रयास करें। दूसरा शब्द कहा मंत्रहीनम, ये बात विशेष आती है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम यज्ञ करते समय केवल वेद मंत्रों का पाठ करें, वेद मंत्रों के अलावा किसी दूसरे मंत्र, श्लोक या किसी भी वाक्य के द्वारा यज्ञ में आहुति नहीं दी जाती, केवल वेद के मंत्रों का ही पाठ किया जाता है। और हमारा जो ऋषिवर देव दयानंद के द्वारा वेद के मंत्रों के द्वारा यज्ञ बताया गया है, और बंधुओं विशेषता हमारे यज्ञ की यह होती है कि हमारे यज्ञ में विषयों के द्वारा मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती है। जैसे यदि किसी के नए व्यापार का शुभारंभ करना है तो नए व्यापार की आहुतियाँ दी जाती है, किसी का जन्मदिन है तो उसके लिए जन्मदिन की आहुतियाँ दी जाती है, वैवाहिक वर्षगांठ है तो वैवाहिक वर्षगांठ की आहुति दी जाती है, शांति यज्ञ करना है तो शांति मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती है। तो मंत्रों के द्वारा और विधिपूर्वक जहाँ जहाँ जिन जिन मंत्रों की आवश्यकता हो उन मंत्रों को देखते हुए हम आहुतियाँ प्रदान करने का प्रयास करें, और इस बात पर विशेष ध्यान दें। बंधुओं, तीसरी बात उन्होंने बताई असृष्टानम, ये बात हमारे लिए विशेष है कि हम यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ करते समय हमारे विधि भी ठीक है, हमारे मंत्र भी ठीक है, लेकिन यदि हमारी सामग्री अशुद्ध रहेगी तो फिर हमारा वो यज्ञ यज्ञ नहीं कहलाएगा, वो तामसिक यज्ञ हो जाएगा। इसे समझने की आवश्यकता है कि हम उत्तम से उत्तम घी का प्रयोग करें, उत्तम से उत्तम सामग्री का प्रयोग करें। और एक बात और विशेष ध्यान देना, यज्ञ में केवल चार प्रकार के पदार्थों की ही आहुतियाँ दी जाती है, सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक। बंधुओं, ये सुगंधित क्या होते हैं, जैसे केसर, अगर, तगर, गूगल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, ये सुगंधित चीज़ें हैं। पुष्टिकारक जैसे देसी गाय का घी, फल, कंद, पंचमेवा, चावल, जौ, तिल, ये पुष्टिकारक है। मिष्ट शक्कर, शहद, छुवारा, किशमिश, गुड़ आदि, ये मिष्ट

पदार्थ है और रोगनाशक जैसे गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलेठी, सौंठ, तुलसी इत्यादि जो रोगनाशक पदार्थ है उनकी आहुति दें। तो यज्ञ में केवल चार प्रकार के ही पदार्थों की आहुतियाँ दी जाती है, सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक। तो हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है कि हम उत्तम से उत्तम पदार्थों का प्रयोग करें। अब जो चौथी बात आती है वो बड़ी विशेष है, अदक्षिणम। बंधुओं, दक्षिणा एक यज्ञ का भाग होती है और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम पुरोहित को दक्षिणा देना चाहिए और इस बात को हमें समझना होगा। यदि हम लोग अपने उत्तमता के साथ या अपने कमाए हुए धन में से दान नहीं कर रहे हैं तो उस दान का विनाश हो जाएगा। और यदि यज्ञ करते समय हम दक्षिणा नहीं प्रदान कर रहे हैं तो हमारा यज्ञ यज्ञ नहीं होता। और बंधु, एक बात का और विशेष ध्यान रखना, पुरोहित का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने सामर्थ्य, अपने जान और अपने यज्ञ के द्वारा यजमान को संतुष्ट करे। और यजमान का कर्तव्य होता है कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा के द्वारा पुरोहित को संतुष्ट करे। बंधुओं, पुरोहित का अर्थ ही है पुरोहितम करोति यस्य सः पुरोहितः, जो दूसरों के हित की भावना से यज्ञ करता है। और एक बात और विशेष ध्यान देना, हम अपने विद्वानों का, अपने पंडित पंडिताओं का जितना अधिक सम्मान करेंगे वो उतने ही अच्छी प्रकार से आपको आशीर्वाद देंगे। और पंडित पंडिताओं का, विद्वानों का, संतों का जो आशीर्वाद होता है वो व्यक्ति को एक ऊंची दिशा प्रदान करता है। तो हम कितना अधिक से अधिक उनका सम्मान कर सकते हैं, उनके प्रति हमारी जितनी अच्छी श्रद्धा होगी उतना अच्छा लाभ हमें प्राप्त होगा। और दक्षिणा देते हुए एक बात और विशेष ध्यान रखना, केवल हम दक्षिणा के रूप में कुछ 100, 500 या 1000, 2000 रुपये ना पकड़ा दें। हमारा कर्तव्य होता है कि श्रद्धा के साथ हमारा जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य के अनुसार राशि एक लिफाफे में रखें और लिफाफा केवल प्रदान न करें, हम उसमें कुछ फल या कुछ पंचमेवा, कुछ मिष्ठान बड़े सजा करके एक थालिका में रखें और श्रद्धा के साथ, पुष्पों के साथ, उस लिफाफे और फल के साथ हम अपने पुरोहित, अपने पंडित पंडिता का सम्मान करें। यह हमारे यज्ञ का एक भाग होता है। यज्ञ के बिना, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो उत्तम से उत्तम दक्षिणा प्रदान करें। और बंधुओं, वो बात आती है आ ददाना, आ यजमाना, आ श्रद्धदाना। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, जो व्यक्ति उत्तम दान दक्षिणा नहीं देता है और जो व्यक्ति अच्छी श्रद्धा नहीं रखता है, वो मनुष्यत्व की प्रवृत्ति में नहीं है, वो राक्षसत्व की प्रवृत्ति में। तो यदि हम चाहते हैं कि हम देवत्व प्रवृत्ति प्राप्त करें तो हम श्रद्धा के साथ उत्तम से उत्तम दान दक्षिणा देने का प्रयास करें। और बंधुओं, में इतना समझाऊंगा कि हमारे शास्त्र कहते हैं जितना हम कमाते हैं उसका दशांश हम दान करें। जैसे यदि मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो मैं 10 रुपये दान दूँ, मैं 1000 रुपये कमाता हूँ तो मैं 100 रुपये दान दूँ, दशांश में दान देने का प्रयास करूँ। और बंधुओं, अंत में भगवान कृष्ण ने बताया श्रद्धा विरहितम तामसम यज्ञम प्रचक्षते। यदि यज्ञ करते समय आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आपका वो यज्ञ तामसिक यज्ञ हो जाएगा। और तामसिक यज्ञ का अर्थ होता है दूसरों की हानि के लिए किया गया यज्ञ। तो यदि आप चाहते हैं आपका यज्ञ सात्विक हो तो आपको श्रद्धा अपने अंदर रखना होगा, यज्ञ के प्रति श्रद्धा, मंत्रों के प्रति श्रद्धा, पदार्थों के प्रति श्रद्धा और साथ ही साथ पुरोहित, पंडित, यजमान, विद्वान के प्रति यदि आपकी श्रद्धा होगी तो आपका वो श्रद्धामय यज्ञ आपको उन्नति कारक बनाएगा और आपका यज्ञ सात्विक होता चला जाएगा। तो बंधु, ये समझने की आवश्यकता है कि यज्ञ करते समय इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। उत्तम से उत्तम वस्त्रों को पहने, सफ़ेद, केसरिया, भगवा, पीले वस्त्र हम धारण करें, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक होते हैं। और उत्तम से उत्तम सज सवर करके हम यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास करें, अपनी विधि को ठीक करें, शुद्ध मंत्रों का पाठ करते हुए हम आहुतियाँ प्रदान करें, अच्छी सामग्री का हम प्रयोग करें और अच्छी दक्षिणा देते हुए श्रद्धा के साथ जब यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ संसार

के कल्याण के लिए होगा, अंतःकरण की शुद्धि के लिए होगा और हम सबको इहलोक और परलोक में आनंद देने वाला होगा। आप सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाओं के साथ, यज्ञ की अगाढ़ श्रद्धाओं के साथ, उत्तम से उत्तम आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। आप सभी ने मुझे श्रवण किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम शम।

बजकर 23 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे घर की, वो विरासत है जिनके अनुभव में पूरी एक जिंदगी की कहानी छुपी होती है। उन्होंने हमें सिर्फ संस्कार ही नहीं दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में धैर्य रखना और छोटी छोटी खुशियों की कदर करना भी सिखाया। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम, और भूलिएगा नहीं, 6:30 बजे आप सुनेंगे समाचार और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद। तब तक चंद खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं।

समझाओ दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको।

गरी मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला एलोकेशन बढ़ाया है। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका में हुए सिलसिलेवार गोलीबारी में 27 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं

0: बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली की अपग्रेड होने से एआई के माध्यम से सड़कों पर वर्जित या खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करना। विस्तार उर्वशी बिकारी बंजन और नियर्मा नारायण रेड्डी के साथ।
1: इन कमरों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जिनकी मदद से सड़क पर होने वाली नियमों के उल्लेख का पता लगाया जा सकता है। समय के साथ उन्हें और भी आधुनिक बनाया जाएगा। फिलहाल ये कैमरा लाल बत्ती पार करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, सीट बेल्ट न लगाने और अचानक लेन बदलने जैसे मामलों का पता लगा सकते हैं, जिससे घटना का खतरा बढ़ सकता है। अगर कैमरा यह पता लगाता है कि चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है तो संबंधित नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजा जा सकता है। इसी संदर्भ में सरकार का मानना है कि यह कदम सड़क पर लोगों की जान की सुरक्षा में मददगार साबित हो सकता है। पुलिस, मॉरिशस टेलीकॉम और उसके ठेकेदार के बीच इस परियोजना को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए इस व्यवस्था से सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने की उम्मीद है।
0: अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। वाशिंगटन ने 2027 के वित्तीय साल के लिए अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस को दिया जाने वाला लोकेशन बढ़ा दिया है। ये वित्तीय साल इस गुरुवार 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस तरह मॉरिशस का कोटा 12,910 से बढ़ाकर 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू हो गया है, जो 6.3% की बढ़ोतरी है। लेकिन अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस प्रकार मॉरिशस ये अतिरिक्त 813 टन चीनी बेच पाएगा। शैलिनी अबन अभ्युदय।
2: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस अमरीकी फैसले से क्या बदलाव आया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए मॉरिशस के शुरुआती कोटा में 813 MTOV यानी कि मेट्रिक टन रो वैल्यू का अतिरिक्त कोटा जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर अब देश के पास इस मंडी के लिए 13,723 MTOV कच्ची चीनी उपलब्ध है और ये नया एलोकेशन वाशिंगटन द्वारा वैश्विक कच्चे चीनी के अमेरिकी कोटे से बाकी बचे 55,993 MTOV के वितरण के बाद आया है। परंतु कोटे की उपलब्धता का मतलब ये नहीं है कि बिक्री भी अपने आप बढ़ जाएगी। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने डिमांड यानी कि मांग का आकलन करने की दिशा में पहले से ही अपने अमेरिकी ग्राहकों से संपर्क कर लिया है। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट के CEO दिवेश दुखेरा के अनुसार अतिरिक्त टन भार का एक हिस्सा पहले ही तय किया जा चुका है और चीनी पेराई सत्र नवंबर तक जारी रहेगा, जिससे किसी भी संभावित ऑर्डर को पूरा करने के लिए अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं। डेमे रारा, मुस्को वाडो और अन्य विशेष प्रकार की चीनी अमरीकी मंडी मॉरिशस शुगर सिंडिकेट का एक प्रमुख लक्षित गंतव्य बना हुआ है। 13,723 MTOV के इस नए कोटे के साथ अब मुख्य चुनौती इस अतिरिक्त पहुंच क्षमता को वास्तव में बेचे गए ऑर्डर्स में बदलने की है।
0: ओज़ेम्पिक, वेगोवी और मुंजारो जैसे इंजेक्शंस हैं, ऐसे इंजेक्शंस हैं जो वजन घटाने में असरदार होने के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर कुछ मशहूर हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स के बीच। शुरू में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएं भूख और दूसरी चीज़ों पर असर डालकर काम करती हैं। ओज़ेम्पिक हाल ही में मॉरिशस में उपलब्ध होने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार उसमें GLP-1 नामक एक हार्मोन पाया जाता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से भी विद्यमान है और ये ब्लड शुगर के स्तर और भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि एक ज़रूरी बात यह है कि ये इलाज सिर्फ डॉक्टर की सलाह

0: पर ही उपलब्ध हैं और इसके लिए सख्त मेडिकल देखरेख की आवश्यकता होती है। सिंचा मुतु, गीता सरन।
1: मॉरिशस में हाल ही में उपलब्ध हुई दवा ओज़ेम्पिक में मुख्य रूप से GLP-1 नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ब्लड शुगर तथा भूख को नियंत्रित करने में मदद देता है। ओज़ेम्पिक में इसे अधिक मात्रा में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। मेडाक्टिव की फार्मासिस्ट हेमानंद कुसिरतन कहती हैं, ओज़ेम्पिक एक इंजेक्शन है जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। ये खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दिया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और मेडिकल फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल मोटापे के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें शरीर के वजन में 16% तक कमी आने की संभावना होती है। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं पड़ता, दिल के लिए भी ये अच्छा है, खासकर जिन्हें दिल की परेशानियां होती हैं। ये किडनी के लिए भी अच्छा है। किस मरीज को और कैसे ये देना चाहिए, ये जानना जरूरी है। दुनिया भर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सौंदर्य और शरीर का वजन कम करने के लिए भी किया जा रहा है और किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, साइड इफेक्ट्स में खासकर पाचन की समस्या हो सकती है। कुछ मरीज मसल्स खो देते हैं, इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। ये दवाई का असर नहीं बल्कि तेजी से वजन घटने का असर है। अगर डायबिटीज या दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखी गई, ध्यान नहीं दिया गया और जब इस दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो ये खतरा पैदा होता है। इलाज बंद करने के बाद दोबारा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है और कम किए गए वजन का 60% तक वापस बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज कराना बहुत ही जरूरी है।
0: एजिंग पॉपुलेशन, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर प्रिसिला मथुकताको के अनुसार ये चार बड़े बदलाव हैं जिनके लिए मॉरिशस को तैयारी करनी होगी। सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 के अंतर्गत अपने वक्तव्य में उन्होंने आर्थिक स्थिति स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही देश को ऐसे बदलावों के लिए तैयार करने की बात पर बल दिया जिनका प्रभाव रोजगार, विकास और पब्लिक फंड पर पड़ सकता है। आदरणीय वाले अभी उदोई।
2: पहली चुनौती डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर प्रिसिला मथुकताको के अनुसार साल 2024 में मॉरिशस की आबादी 12.4 लाख के अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है और उनके द्वारा उद्धृत IMF के एक अनुमान के अनुसार यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो साल 2070 तक का आबादी 30% तक कम हो सकती है। ये बदलाव कार्य क्षमता को कम कर सकता है, विकास को धीमा कर सकता है और सार्वजनिक वित्त पर दबाव बढ़ा सकता है। दूसरी चुनौती जलवायु परिवर्तन, परंतु ये एक अवसर भी प्रस्तुत करता है। उनके भाषण में उद्धृत विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुमान है कि रिन्यूएबल ऊर्जा में निवेश और समुद्री संसाधनों का सतत दोहन साल 2030 तक मॉरिशस में 32,000 तक नई नौकरियां पैदा कर सकता है। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर उन भू राजनीतिक तनावों का भी उल्लेख करती है जो छोटी अर्थव्यवस्था में व्यापार और निवेश को बाधित कर सकते हैं। और अंतिम चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जो उनके अनुसार उत्पादकता, नौकरियों और आर्थिक मॉडलों को बहुत तेजी से बदल सकती है। प्रिसिला मथुकताको के लिए इन सब का समाधान टिकाऊ सार्वजनिक का वित्त, मूल्य और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के साथ साथ कौशल, नवाचार और संस्थानों की अनुकूलन क्षमता में निवेश से होकर गुजरता है।
0: कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन की इक्विटी को मर्क और MSC के लिए खोलने की योजना अब एक ठोस चरण में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ हुई बातचीत के बाद अगला कदम एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति होगा जिसका मुख्य काम इस ऑपरेशन में शामिल संपत्तियों का मूल्यांकन करना होगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत उचित जांच पड़ताल और सुप्रशासन नियमों का पालन करते हुए निजी साझेदारों को 40%

0: प्रतिशत तक की इक्विटी देने की योजना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नई व्यवस्था 2027 की शुरुआत तक लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही नए क्रेन्स की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। शैलिनी अबन, नियमा नारायण रेड्डी।
1: काफी समय से कई सरकारें इस रणनीतिक साझेदारी की तलाश में थी ताकि हमारे बंदरगाह को और बेहतर बनाया जा सके, उसे अधिक मजबूत और परिस्पर्धी बनाया जा सके और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देकर पोर्टविस में और अधिक जहाजों को आकर्षित किया जा सके। अब देखना यह है कि यह साझेदारी हमारे बंदरगाह की क्षमता को दुगना करने के लिए किस तरह की व्यवस्था लेकर आती है और क्या इससे नए ग्राहक भी आकर्षित होंगे। पोर्टविस का बंदरगाह पहले 9 मीटर गहरा था, जबकि अब इसकी गहराई 15 मीटर तक पहुंच गई है। इससे लगभग 400 मीटर लंबे और 24,000 TEU की क्षमता वाले बड़े जहाजों की भी आकर्षित करने की संभावना है। हमारे पास अच्छी बंदरगाह क्षमता है, लेकिन फिलहाल उसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि यह रणनीतिक साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे बंदरगाह के लिए नई सुविधाएं और अतिरिक्त मूल्य ला सकती है।
0: मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैम्पलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन। एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खास तौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तमागे में कल एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। दक्षिण अफ्रीकी मूल की 58 वर्षीय एक महिला ने अपने 4x4 पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी बगल में जा टकराई। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और बचाव टीमों की कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है। उधर दक्षिण में पोना चगैल पर घूमने निकला भारतीय मूल का 45 वर्षीय एक व्यक्ति खाड़ी से नीचे गिर गया। जानकारियों के मुताबिक वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर की टीमों की कोशिशों के बावजूद कल उसका पता नहीं लगाया जा सका और आज तलाश कार्रवाइयां जारी रखी जा रही हैं। वर्तमान राष्ट्र खबरों की ओर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक पार्क के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इनके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण बताया जाता है। उधर बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कल पश्चिमी यूके में एक एयरबेस के पास 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग 3 गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे, जिनमें विस्फोटक पाए गए हैं। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह लगभग देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी। दिन के दौरान पश्चिमी इलाकों पर बारिश रह रहकर तेज हो सकती है और बादलों की गरजने की भी संभावना है। रात के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रभाव रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की लहरें उठेंगी। दो समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सरल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस।

साहली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:54 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:07 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां। एक बार फिर सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएं बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी के लिए अतिरिक्त 813 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय की गई है। मॉरिशस एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में कीटनाशक पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण अफ्रीका में हुए सिलसिलेवार गोलीबारी में 27 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: शोक समाचार सुनिए। ब्रांच रोड पोंब्लॉन फ्लाक में 52 साल के 52 years old श्री दीपक शिवनारायण जो मास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे की अर्थी आज दिन के 2 बजे के मकान ब्रांच रोड पोंब्लॉन फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इमेजिन कौनवास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM। जगनारायण रोड मेबर्ग में 65 साल की 65 years old श्रीमती दुर्पति गंगा बिसुन पैदाशी नाम गुरा जो सती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पति श्री सिवन गंगा बिसुन के मकान जनारायण रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मोसेल मगाफेल ओशेते अरूज में 71 साल के 71 years old श्री द मालिंगम सामी जो पानामा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती सामी के मकान मोसल महाफिल ओशित अगूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉम्पलेमोस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। रॉम्पलेमोआ मोदालबेयर में 72 साल की 72 years old श्रीमती ज्ञानती सिटी ऑफ पैलेसेस पैदाशी नाम दुखी जो लीलावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे की अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान रॉम्पलेमोआ मोदालबेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। प्रिंटानियर लेन सेंट एन फ्लाक में 72 साल की 72 years old श्री रामदेव कुंजा जो वीर नाम से जरा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान पैतानिया लेन सैतान फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। दुलाव लेन मेबर्ग में 57 साल की 57 years old श्रीमती धनवंती बंगारू पैदाशी नाम बुधनुआ जो रीता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान दुलाव लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। क्लेफो नंबर दो वाक्वा में 65 साल के 65 years old श्री श्याम गजाधर

अदर जो रोशन नाम से ज़्यादा जानी जाती थे और पहले मार्केटिंग बोर्ड की कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 12:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 12:30 बजे इनके मकान क्लेफो नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 नून। अवेन्यू कालीमाई पालमा काथोबोनमी अवेन्यू कालीमाई पालमा काथोबोनमी 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्ण पलत, श्री कृष्ण पलत जो नंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 1:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 1:30 बजे इनके मकान अवेन्यू कालीमाई पालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। श्रीमती दिव्याग ग्लेन पग वाकवामी, दिव्याग अली ग्लेन पग वाकवामी 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बाला सुब्रमण्य पाथी, श्री बाला सुब्रमण्य पाथी जो किसना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती जैनसी पाथी के मकान दिव्या गली क्लैन पॉक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 10 AM। नथुआ रोड थियोंगुडलेंसमी 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती स्वस्ति परेश पैदाशी नाम पुनाई जो स्वस्ति मादाम कोंगो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री मनीश्वर परेश के मकान नथवा रोड थियोंगुडलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 8 नून। रॉयल रोड मोफिया चिल न्यूगोव में रॉयल रोड मोफिया चिल मी स्नो वाइट सुपर मार्केट के पास 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्री जन्मजय मुतुजी, श्री जन्मजय मुतुजी जो गासो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके भाई श्री गजन मुतुजी के मकान रॉयल रोड मोफिया चिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे 11 AM। सुबाची रोड बोनाकई में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री रवीन जमना जो मुनू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और NTC के चालक थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती दीपा की सुंदरयाल जमना के मकान सुबाची रोड मोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लवों चौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट ऑफ ऑफ नून। महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लीलावती गुलजार पिताशी नाम केवल जो मामा सुदेश नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:30 PM। शोक में रुबिन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग फुटबॉल के बिना वीकेंड सप्ताहांत सूना सूना लगता है, पर सुनने के लिए और सुनाने के लिए खेल जगत में बहुत कुछ है। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फैसले का क्या असर होगा? 115 चार्जेस सिटी के खिलाफ, फाइनेंशियल रूल ब्रीचेस सिटी के खिलाफ, अब पनिशमेंट सजा क्या होगी, ये कभी सभी लोग जानने के लिए बेताब हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स के अनुसार आरोप बहुत

सीरियस हैं, बहुत संगीन हैं, ऐसे में पॉइंट्स डिडक्शन अंक निकाले जा सकते हैं, पर मैनचेस्टर सिटी अपील करेगा, इसलिए अभी के लिए कोई फैसला नहीं है। फाइनेंशियल ब्रीच कौन सी है? फाइनेंशियल ब्रीच क्या है? ये वित्तीय उल्लंघन, इसका सीधा सा मतलब है जब कोई फुटबॉल क्लब अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करता है या फुटबॉल एसोसिएशन के तय किए गए पैसों के नियमों को तोड़ता है। यर्गन क्लॉप का दूसरा मैच और पहली हार, जर्मनी की टीम 1-0 से हार गई ग्रीस के खिलाफ। हम यूईएफए नेशंस लीग की बात कर रहे हैं, जर्मनी की हार, वो भी उर्सबर्ग जर्मनी में। इसी ग्रुप में नेदरलैंड्स की जीत हुई, पर लीडर है ग्रीस दूसरी जीत के साथ क्वालिफिकेशन के करीब। डेनमार्क और पोर्टुगल भी जीत पाए, अर्लिंग हालैंड का गोल काफी नहीं रहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट रहा, यानी उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया। सो जर्मनी की हार, इसमें जर्मनी के खिलाफ ग्रीस ने 1-0 से मैच जीता। नेदरलैंड्स के लिए मर्डिंग 2-1 गोल स्कोर कर पाया। सो नेदरलैंड्स 2 सर्बिया 1, ग्रुप 4 में नॉर्वे 1 पोर्टुगल 2 डेनमार्क 2 वेल्स 0। अन्य मैचों में जिब्राल्टर 0 अंडोरा 0, लिथुआनिया 1 अजरबैजान 1, ऑस्ट्रिया 3 कोसोवो 1, इजराइल की हार हुई, रिपब्लिक आयरलैंड ने उसे 3-0 से हराया। आज बेल्जियम का मुकाबला फ्रांस से होगा, तुर्की इटली, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन, आर्मेनिया मोंटेनेग्रो, लाटविया साइप्रस, नॉर्दर्न आयरलैंड हंगेरी, रोमानिया बोस्निया और स्वीडन का मुकाबला पोलैंड से। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज मैच भी खेले गए, कनाडा ने चिली को 1-0 से हराया, मेक्सिको और कोलंबिया के बीच मैच ड्रॉ 1-1, चीन 0 न्यूजीलैंड 3, बोलिविया 0 पाराग्वे 2। लिवरपूल का स्ट्राइकर मिस्टर नाजुक फिर से घायल हो गया है, मिस्टर नाजुक मतलब इंजुरी पर इंजुरी, अलेक्जेंड्र इसाक वापस आ गया है और इंजुरी की भी वापसी माइनर इंजुरी कहा जा रहा है। स्वीडन के लिए पिछले मैचों में 1 गोल स्कोर किया था। कोडी गाक्पो को भी चोट लगी है, एंकल इंजुरी। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडेज भी इंजुरी लिस्ट में है, उसके साथ ही डोगो के साथ। क्रिकेट, विराट कोहली की ओर से एक और विराट इनिंग्स, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 139 रन नॉट आउट। वनडे इंटरनेशनल में 15,000 रन पार कर चुका है कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद 15,000 रन पार करने वाला पहला वो बैट्समैन है। 8 विकेट से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच में। शुभम गिल भी सेंचुरी पूरा कर पाया, पर मैन ऑफ द मैच रहा कुलदीप यादव, 4 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज को लुढ़काया। वेस्ट इंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स की सेंचुरी रही। भारतीय दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम 3 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी। एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में आज टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, जापान में बारिश की संभावना है, मैच वॉश आउट भी हो सकता है, अगर वॉश आउट हुआ तो टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। टेनिस, टीम यूरोप ने लावर कप जीता टीम वर्ल्ड को हराकर, अलेक्जेंड्र वेरेव टीम यूरोप में था, लर्नर चेन को हराकर वेरेव ने टीम यूरोप को टाइटल दिलाई। टीम वर्ल्ड में कार्लोस अल्काराज भी था। इधर मोंट्रियल के वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपने परफॉर्मेंस से निराश है किम ले को, बहुत तैयारी और उम्मीद के साथ वो वहां गई थी, बीच रेस में हुई घटनाओं के कारण वो पिछड़ गई। आज सुबह अलेक्जेंड्र मेयर की बारी थी, हमारा हमवतन 2 घंटों तक रेस में आगे था पर अंत में रेस पूरा नहीं कर पाया। उल्लेखनीय है कि मोंट्रियल कनाडा में बसे मॉरिशस के बहुत लोग हमारे साइक्लिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे थे, मॉरिशस का नेशनल फ्लैग हमारा चौरंगा लेकर आए हुए थे। रीजनल स्तर पर आर्सेनल में आयोजित SSR मेमोरियल फुटबॉल मैचेस में कल आर्सेनल वेटरन और पॉम्पलेमूस SC की जीत, पेनाल्टी पर आर्सेनल वेटरन की जीत हुई जबकि पॉम्पलेमूस ने रोजबॉ बोल्टन सिटी को हराया। इधर रोशनो स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में रोशनो यूनाइटेड 7 रेड स्टार बोनाके 1, स्पोर्टिंग बॉयज रिविया जुरांपा ने 2-0 से ओलंपिक कप मालेरू को हराया। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, कल यर्गन क्लॉप की जर्मनी की टीम की हार हुई और
आज फ्रांस मैदान में उतरेगा, देखेंगे क्या करेगा। नमस्कार।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति. रोजिल के आसपास के इलाके अवेन्यू मद्रास, रासिन तातान अवेन्यू, क्रेटे अवेन्यू, सीरियस एनएचडीसी साइट और जी हाँ एनएचडीसी साइट एंड सर्विसेज के रहने वालों को यह सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 28 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई में फिर से चालू कर दी जाएगी. सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं.

0: सुबह के 7:10 हुए हैं श्रोताओं, बहुत ही प्यारी सुहानी और रोशन सुबह में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ, जी हाँ, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, जहाँ हर सुबह हम लेकर आते हैं कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत यादें और दिल को छू जाने वाले गीत। मैं उषा कौर आप लोगों के साथ, और कहते हैं ना, सुबह का वक्त अपने आप एक खूबसूरत तोहफा है, एक नया दिन, एक नई उम्मीद और ज़िंदगी को फिर से एक नए अंदाज में जीने का मौका। तो अपनी सुबह को मुस्कुराहट के साथ शुरू कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए इस सुबह का पहला नजराना सुनते हैं, लेकिन इससे पहले हम सुनने जा रहे हैं चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी जुमन जी के साथ।
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, यह सब मानस तप कहा जाता है।

सुबह के 7:11 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और कहते हैं ना, हर सुबह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी रुकती नहीं, कल चाहे जैसा भी रहा हो आज हमारे पास एक नया पन्ना है। तो चलिए, आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए बहुत धन्यवाद। और ये भी बताइए कि आपकी सुबह की सबसे खूबसूरत आदत क्या है। चाय के साथ प्रार्थना, परिवार के साथ वक्त, या फिर

रेडियो के साथ कुछ सुकून भरे पल। आपके मन में क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। सुनते हैं लता जी की आवाज और साथ में है तलत महमूद साहब।

सुबह के 7:16 हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत कार्यक्रम में और आपको सुनाते हैं रेडियो सुर्खियाँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम 8 बजे भोजपुरी समाचार और समाचारों के बाद आपकी राशि। और इसके दौरान 8:50 पर किरण जानकी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों

के बाद नीतुषा के साथ आज की चर्चा प्रोग्राम 10 बजे संक्षिप्त समाचार और भक्ति धारा कार्यक्रम, इसके बाद आप सुन पाएंगे रोशनी द्वारा। 11 बजे संक्षिप्त समाचार और सायदा सुबाय प्रस्तुत करेगी उर्दू प्रोग्राम शामे फरोजन। 12 बजे मराठी प्रोग्राम मिसेस दरमिया के साथ और

दोपहर के एक बजे तमिल प्रोग्राम जी हाँ और पौने दो रंगारंग प्रोग्राम रत्ना के साथ दो से ढाई बजे तक चाइनीज प्रोग्राम आप सुनेंगे दाविद की प्रस्तुति में और रत्ना प्रस्तुत करेगी आपकी पसंद प्रोग्राम आपका मन पसंद प्रोग्राम चार बजे तक और भूलिएगा नहीं सवा चार आप सुन पाएंगे जी हाँ चार बजे से सवा चार प्रकाश कार्यक्रम और तेलुगु प्रोग्राम वंदना प्रस्तुत करेगी सवा चार से साढ़े पाँच बजे तक साढ़े पाँच रत्ना के साथ बच्चों का कार्यक्रम छः बजे समाचार और समाचारों के बाद साढ़े छः चाइनीज प्रोग्राम जिनकी प्रस्तुति में पुवाना द्वारा तमिल प्रोग्राम आप सुनेंगे रात के सात से साढ़े सात बजे तक और साढ़े सात वंदना प्रस्तुत करेगी स्वराला वेदिका प्रोग्राम सात बजकर पचास मिनट पर गीत गंगा कार्यक्रम नितिन बापू प्रस्तुत करेगा और रात के आठ बजकर दस मिनट पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम देवीना द्वारा आप सुनेंगे और बढ़ते हैं आगे रात के 8:40 पर जी हाँ सैयदा सुबाया के साथ महफिल शब प्रोग्राम रात के 9 से रात के 11 बजे तक भोजपुरी तर्क का कार्यक्रम आप सुनेंगे किरण जानकी की प्रस्तुति में और गिनिशा प्रस्तुत करेगी सुनहरे पल प्रोग्राम रात के 11 बजे से 12 बजे तक और भूलिएगा नहीं रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट सुन पाएंगे चलिए खूबसूरत गीतों का सिलसिला हम जारी रखते हैं

7:27 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और ये गाना जो आप सुन रहे थे, सनम तेरी कसम मूवी से लिया गया। श्रोताओं, बचपन की सुबह पुराने ज़माने की सुबह का जिक्र करें। चलिए, घर में जल्दी उठना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, चाय की खुशबू, स्कूल की तैयारी और गली मोहल्ले की अपनी अलग ही दुनिया है ना। उन दिनों को हम फिर से याद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदल गया, सुबह का अंदाज बदल गया, लेकिन बचपन की वो यादें आज भी दिल के किसी कोने में वैसे ही बसी हैं। और यहाँ पर हमें सुन रही है देवी जी। चलिए, वो कहती है कि वो सुबह सुबह भगवान को याद करती है और योगा भी करती है, और साथ में नाश्ता के साथ बनाते समय वो रेडियो को सुनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी प्यारी लक्ष्मी जी जो है वो रहती है बॉम्बू, और वो कहती है कि वो हमें सुनना पसंद करती है, अच्छा गाना, अच्छी बातें। तो चलिए, आप लोगों के लिए हम यहाँ हैं, साथ देने के लिए। बस उम्मीद है कि आप लोग भी साथ देंगे।

0: जय श्रोताओं, 7:34 हुए हैं। कहते हैं ना, आज सुबह आप किसको याद कर रहे हैं। वैसे हर सुबह मैं अपनी नानी को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि हर सुबह वो ऐसे ही गाने सुनते थे। और आपके घर में सबसे ज्यादा पुरानी यादें किस बुजुर्ग के पास हैं? कौन सा पुराना गीत आपको अपने बचपन की याद दिलाता है? रेडियो की खूबसूरती की यही है दोस्तों, आवाज एक तरफ से आती है लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। और यहाँ हमें सुन रही हैं हमारी प्यारी माला सुमारू जी, और कहती है उषा की किरण लाने वाली प्यारी हमारी उषा जी, बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अगला गाना सुनते हैं लता जी की मधुर आवाज में।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। एक लड़का हर सुबह दौड़ने जाता था। वो रोज कोशिश करता लेकिन बार बार हार जाता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिर उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर कोशिश करूँगा। वो रुका नहीं, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और एक दिन उसने वही कर दिखाया जिसे कभी वो नामुमकिन समझता था। दोस्तों, ज़िंदगी में हार जाना बुरी बात नहीं, लेकिन हार मान लेना ज़रूर बुरी बात है। और सुबह हमें एक और मौका देती है खुद पर भरोसा करने का, फिर से कोशिश करने का और अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाने का। बस चलते रहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल सिर्फ एक कोशिश दूर होती है। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं हमारी प्यारी सी मुंज जो रहती है ख्वाया, उन्होंने हमको याद किया है, तो चलिए उनका नाम हमने ले लिया। अगला गाना सुनते हैं आ अब लौट चले, मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ों में।

0: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल

0: 7:55 चलिए यहाँ पर इस गीत के साथ हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की ओर। और श्रोताओं, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: गुनाह करने दो

0: बता दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे।
1: अपन घर ही मिला रहे जब हजीर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। सबसे अगते ई दुखद खबर, लावांचा में आज फजर के 7:30 के करीब एगो गंभीर सड़क दुर्घटना पेश आयल बाटे। एगो बस आर एगो लॉरी के बीच टक्कर होल बा, कई जना के घाव लगे के खबर बाटे। इस संबंध में अभी खातिर जस्ती स्पष्ट जानकारी नहीं मिलल बाटे। तमांग में काल एगो जानलेवा सड़क हादसा पेश आयल। दक्षिण अफ्रीकी मूल के 58 बरिस के उम्र के एगो महिला अपन 4x4 से नियंत्रण खो दिलक आ जेकर से वो गाड़ी बगल में जाके टकरा गल। महिला गंभीर रूप से घायल होल आर बचाव टीम लोग के कोशिश के बावजूद अस्पताल में ओकर मौत हो गल। ई मामला में पुलिस जांच शुरू कर ले बाटे। उधर दक्षिण में पोना चगल परी घूमे खातिर निकलल भारतीय मूल के 45 बरिस के उम्र के एगो आदमी खाड़ी से नीचे गिर गल। जानकारी के मुताबिक उ सेल्फी लेवे के कोशिश करत रहल। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर के मदद से ओकरा खोजे के एगो कार्यवाही शुरू करल गल, जेकरा आज जारी रखल जाता। सेफ सिटी कैमरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी शामिल करके ई नेटवर्क में एगो नवा पड़ाव पार करे के कोशिश करल जाता। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नवा टेक्नोलॉजी के जस्ते इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियम के उल्लंघन के पता लगावे के क्षमता जस्ते अच्छा करे के लक्ष्य तय करल गल है। मौजूदा प्रणाली के अपग्रेड होए के संगे AI के माध्यम से सड़क परिवर्जित या फिर खतरनाक व्यवहार के बारे में आसानी से पता लगावल जा सकी। जैसे

तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलावे के बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करे के या फिर गाड़ी चलावे बखत फ़ोन पर ही बतियावे के या खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करे के। अमेरिकी बाजार में मॉरिशस की चीनी खातिर अतिरिक्त 813 MTRV यानी मेट्रिक टन रॉ वैल्यू तय करल गया है। वाशिंगटन 2027 के वित्तीय बरिस खातिर अमेरिकी टैरिफ रेट कोटा के तहत मॉरिशस के देवल जाए होला लोकेशन बढ़ेले बा। ई वित्तीय बरिस ई बीफे 1 अक्टूबर से शुरू हो। इस तरह से मॉरिशस के कोटा 12,910 से बढ़ा के 13,723 मेट्रिक टन रॉ वैल्यू करल जाता यानी 6.3% की बढ़ोतरी। ओजेम्पिक वेगोवी आर मुंजारो ऐसन इंजेक्शन है जे वजन घटावे के खातिर असरदार होवे के कारण तेजी से लोकप्रिय हुआ था। खासकर कई गो मशहूर हस्ती लोग और इन्फ्लुएंसर लोग के बीच शुरू में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा के इलाज खातिर इस्तेमाल करल जाए होला। ये सब दवाई भूख और दूसर चीज के असर डाल के काम करेला। ओजेम्पिक हाल ही में मॉरिशस में उपलब्ध हो लगल बा। विशेषज्ञ लोग के अनुसार ओकर में GLP-1 नामक एगो हॉर्मोन रहेला जे शरीर में प्राकृतिक रूप से पावल जाएला और ई ब्लड शुगर के स्तर और भूख के नियंत्रित करे खातिर मदद करेला। हालांकि एगो जरूरी बात यह है कि ई इलाज खाली डॉक्टर की सलाह पर ही उपलब्ध हो के चाहिए और एक खातिर सख्त मेडिकल देखरेख की भी आवश्यकता है। दूसर देश की खबर में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार सांझ के गोबार के करीब 8 हमलावर लोग अंधाधुन वहाँ के आदमी पर ही गोली चलैलन जा 17 जना की मौत की खबर बाटे। जबकि ई हमला के कादगो घंटा बाद काल फजर के केप टाउन में करल गल यही प्रकार के गोवार हमला में 11 जना के मौत की खबर बाटे। एकर पाछे आपराधिक गुट लोग के बीच झगड़ा के कारण बतावल जाता। ते रहल भोजपुरी के समाचार, तो ध्यान खातिर धन्यवाद।

मनी की खबर सुना जा। ब्रांशोर पोंब्लॉ फ्लाक में 52 बरिस के सेकंड के श्री दीपक शिवनारायण जी मास नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गए हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे ब्रांशोर पोंब्लॉ फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिनकों दिमास के श्मशान भूमि ले जाल जाए। जयनारायण रोड मेबग में 65 बरिस की श्मशान सैकों के श्रीमती दुर्पति गंगा बिसुन पैदाशी नाम गुरा जे सती नाम से जस्ती जाल जात रहन गुजर गए हवन। उनकर माटी आज दिन के तीन बजे उनकर पति श्री शिवन गंगा बिसुन के घरे जयनारायण रोड मायबू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो वो मायबू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। मोसलमा गाफिल ओशते अरोज में 71 बरिस के 71 श्री दमालिंगम सामी जे पानामा नाम से जस्ती जान जात रहन गुजर गए हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती सरस्वती सामी के घरे मौसल मगाफिल ओशते अरोज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉपलेमुस के श्मशान भूमि ले जाल जाए। गौपलेमुआ मौदालबेया में 72 बरिस की 72 के श्रीमती ज्ञानती सिटी ऑफ पैलेसेस पैदाशी नाम दुखी जे लीलावती नाम से जस्ती जान जाता रहन गुजर गए हवन। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घर गौपलेमुआ मौदालबेया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्रेमानियों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। फैतानिया लेन सैतान फ्लाक में 72 बरिस की 72 के श्री रामदेव कुंजा जी वीर नाम से जस्सी जान जाता रहन गुजर गए हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बज के आधा उनकर घरे फैतानिया लेन सैतान फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खती लावों चकी श्मशान भूमि ले जाल जाए।

0: Doulolin Mebug me 57 baris ke second set onke Shrimati Dhanwanti Bangaro. Shrimati Dhanwanti Bangaro pitashi naam Budnuma je Rita naam se jassi janratralan guzar gal hawan unkar maati aaj din ke 11 baje unkar maati aaj din ke 11 baje unkar ghare Doulolin maibu se utha ke antim sanskar khatir to wo maibu ke shmashan bhumi le jal jaye. Telephone number 2 vakwami 65 बरिस की 65 ओके श्री श्याम गजाधर जे रोशन नाम से जस्ती जान जात रहलन आर मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व कर्मचारी रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर घर एक फोन नंबर 2 वाकवासी उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए. अभिनी काली माई पालमा का थोबोन में 71 बरिस की 71 ओके श्री कृष्ण पलट जे नंद नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उनकर घर आविनी काली माई पालमा काथोबों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाल जाए. श्रीमय देवे ग्लेन पॉक वाक्वामी 77 बरिस की 67 अंके श्री बाला सुब्रमण्य पाती जे कृष्णा नाम से जैसी जान जातरलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज बजे के 10 बजे उनकर पत्नी श्रीमती जयंसी पाती के घरे श्रीमय देवे ग्लेन पॉक वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुल्फ एनो वाकवा के शमशान भूमि ले जाल जाए. नथवा रोड ट्रियांगल गुडलैंड्स में 67 बरिस के 67 ओके श्रीमती स्वस्ति परेश पैदाशी नाम पुनाए जे स्वस्ति मैडम कोंगो नाम से जसी जान जाथरलन वो गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर बेटा श्री मनीश्वर परेश के घरे नाथवा रोड थ्रियांग गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जाल जाए. रॉयल रोड मोफे चिल न्योगोव में स्नो वाइट सुपर मार्केट लगे 73 बरिस की 73 ओके श्री जन्मजय मुतुजी जे गासो नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर भाई श्री गजन मुतुजी के घरे रॉयल रोड मोफियाचिल से उठा गया अंतिम संस्कार खातिर सैचिलिया की शमशान भूमि ले जाल जाए. सुभाची रोड बोनाकय में 56 बरिस के 62 सीजों के श्री रवीन जमना जे मुनू नाम से जसी जान जात रहलन आर सेंते के चालक रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती दीपा की सुंदयाल जमना के घरे सुभाची रोड बुना कैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर लवांचा की शमशान भूमि ले जाल जाए. महात्मा गांधी रोड थ्रा बुचिक थ्रियोले में 84 बरिस के 84 के श्रीमती लीलावती गुलजौ पैदाशी नाम केवल जे मामा सुदेश नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा उनकर घर महात्मा गांधी रोड ख्वाबुचिक थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यामिनी थ्रियोले के शमशान भूमि ले जाल जाए. शोक में डुबली सब परिवारों के संगे हमनी की संवेदना है.
1: ये है रेडियो मॉरिशस.

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर, जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी, कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी तीन बेटियां निमकी, मिट्ठू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची, और मंझली बेचारी गूंगी है। गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है। बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।

0: जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 8:22। जी दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन सितारों की बात करने का जो आपके आने वाले सप्ताह के बारे में कुछ संकेत दे रहे हैं। काम, परिवार, रिश्ते और मन की बातों से जुड़ा क्या रहेगा आपका सप्ताह और कौन सा रंग और अंक रहेगा आपके लिए शुभ, तो चलिए जानते हैं।
1: आपकी राशि रेडियो मिश एरीज मेष राशि।
0: मेष राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। काम के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा। जो काम कुछ समय से रुका हुआ था उसमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। परिवार में किसी अपने की तरफ से खुशी मिल सकती है। रिश्ते में अगर कोई छोटी सी नाराजगी है तो प्यार से बात करके उसे दूर करें। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह शांति और स्थिरता लेकर आ सकता है। आप किसी पुरानी परेशानी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। काम में धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बिताया हुआ समय मन को सुकून देगा। किसी अपने से मिलने वाली अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। लकी नंबर है 6, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: मिथुन राशि वालों के लिए आपकी बात करने की कला इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। किसी से हुई एक अच्छी बातचीत आपके लिए नया रास्ता खोल सकती है। काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप समझदारी से पूरा करेंगे। रिश्ते में अपने मन की बात छुपाने के बजाय प्यार से कहना बेहतर रहेगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: कर्क राशि वालों, ये सप्ताह दिल और परिवार के नाम रहेगा। अपनों के साथ बिताया हुआ समय आपको अंदर से खुशी देगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। काम में थोड़ी व्यवस्था रहेगी लेकिन आप सब कुछ संभाल लेंगे। बस अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेओ सिंह राशि।
0: सिंह राशि वालों, आपके अंदर का आत्मविश्वास इस सप्ताह और मजबूत होगा। आप जिस काम को पूरा करने का संकल्प लेंगे उसमें पूरी लगन से कर लेंगे। काम की जगह पर आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। परिवार में भी आपकी राय को महत्व मिलेगा। रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाए रखें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है नारंगी।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: कन्या राशि वालों, ये सप्ताह आपको अपने अधूरे काम पूरे करने का मौका देगा। आप अपनी व्यवस्था और समझदारी से कई मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। पैसों से जुड़ी बातों में सोच समझ कर कदम उठाएं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अपने मन को भी थोड़ा आराम देना ना भूले। लकी नंबर है 5, लकी कलर है नीला रंग।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: तुला राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह रिश्तों में मिठास लेकर आ सकता है। किसी खास अपने के साथ दिल की बात करने

0: का मौका मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही है तो प्यार से बात करके उससे सुलझाया जा सकता है। काम में संतुलन बनाए रखें और हर बात को लेकर ज्यादा चिंता ना करें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह हिम्मत और मजबूत इरादे का है। आप जिस मुश्किल को लेकर चिंतित थे उसमें धीरे धीरे सुधार आ सकता है। किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। अपनों पर भरोसा रखें और हर बात को अपने मन में दबा कर ना रखें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है गहरा लाल रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: धनु राशि वालों, आपके लिए नई सोच और नए प्रयासों का सप्ताह है। किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है। आपकी मेहनत और उत्साह दूसरों को भी प्रभावित करेगा। यात्रा या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात का योग बन सकता है। अपने लक्ष्य को लेकर सचेत रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि वालों के लिए आपकी मेहनत और धैर्य इस सप्ताह आपका साथ देंगे। काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है लेकिन उसके साथ सम्मान भी मिलेगा। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। परिवार में किसी जरूरी बात को लेकर आपकी सलाह मांगी जा सकती है। पुरानी चिंता को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है हरा रंग।
1: Aquarius, कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए कुछ नया सीखने और कुछ नया करने का मौका लेकर आ सकता है। दोस्तों और अपनों का सहयोग मिलेगा। आपके मन में कोई पुराना सपना फिर से जाग सकता है। काम में अपनी सोच पर भरोसा रखें लेकिन दूसरों की सलाह को भी जरूर सुने। लकी नंबर है 7, लकी कलर है आसमानी रंग।
1: Pisces, मीन राशि।
0: और मीन राशि वालों के लिए आपका ये सप्ताह प्यार, अपनापन और भावनाओं से जुड़ा रहेगा। किसी अपने से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। जो बात कुछ समय से आपके मन को परेशान कर रही थी उसे दूर होने का मौका मिलेगा। अपने सपनों पर भरोसा रखें और दिल की अच्छी आवाज को सुने। लकी नंबर है 3, लकी कलर है सफेद रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मोशन्स।
0: तो दोस्तों ये था आप सभी का साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, राशिफल हमें सिर्फ संकेत देता है लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना हमारे हाथ में होता है। अच्छी सोच रखिए, अपनों के साथ प्यार बांटिए, मेहनत करते रहिए और हर नए दिन का खुशी से स्वागत कीजिए। आपका ये जो पूरा सप्ताह है मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे।

जी हाँ श्रोताओं, सोमवार का दिन अक्सर नई शुरुआत का एहसास कराता है, तो क्यों ना इस सुबह की शुरुआत हो थोड़ी मस्ती, थोड़ी खुशी और बहुत सारी ऊर्जा के साथ। आज हम लेकर आए हैं 80s के दशक के कुछ ऐसे बॉलीवुड गीत जिनमें जोश है, मस्ती है और पुरानी यादों की मिठास, और ऐसे गीत जो सुनते ही कदम खुद ब खुद थिरकने लगे और चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो दोस्तों, चाय की प्याली हो हाथ में या सफर का रास्ता, आवाज थोड़ी और तेज कीजिए, दिल को खुश कीजिए और तैयार हो जाए एक खूबसूरत सोमवार के लिए।

दोस्तों, ज़िंदगी कभी आसान रास्ता नहीं देती, कभी खुशियों के पल लाती है तो कभी हमें थोड़ा रुकने और संभलने का मौका देती है। और आज हम उन सभी श्रोताओं के नाम ये बात कहना चाहेंगे जो किसी बीमारी की वजह से घर पर है और फिर भी अपने रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कभी कभी बस एक अपनी सी आवाज़, एक प्यारा सा गीत और कुछ दिल से निकले शब्द भी इंसान को हिम्मत दे जाते हैं। तो आज का ये गाना आप सभी के लिए, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किलें लाए, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। बहुत जल्द सेहत, मुस्कान और खुशियों के साथ आप फिर अपनी जिंदगी को गले लगाएंगे।

0: 8:50 हुए हैं दोस्तों, चलिए जिंदगी गले लगा ले। और अभी हम सुने जा रहे हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ। और याद रखिए, हमारी धरोहर सिर्फ पुरानी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे गीतों, भाषा, रीति रिवाज और बुजुर्गों से मिली सीख में भी बसी है।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने बतियाब जा आंचलिक कूपन के बारे में, जिनकर मृत्यु 27 सितंबर 1943 के होल रहल बंदूक के गोली से। कुछ लोग जन्म से महान रहेलनसा, लेकिन कुछ लोग महानता हासिल करेलनसा। अंजलि कूपन एगो ऐसन ही औरत रलन। उ एगो गिरमिटिया मजदूर रलन और अपन काम करवा साथी लोग के संगे काम करवा लोग के अधिकार के हक में एगो विद्रोह जुटाव में बेलव्यूआगल में भाग लेवत रलन, जब गोली मार के उनकर जान ले लेवल गल। और अंजलि कूपन के नाम मॉरिशन इतिहास में गढ़ गल। और अंजलि कूपन के दर्दनाक मृत्यु के बाद हर बरिस उनका श्रद्धांजलि अर्पित करल जला। उनकर एगो मूर्ति बा शहर के पुराना सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंडस्ट्रियल कोर्ट के बगल में, हुआ के प्रांगण में, पोपेनेसी गली पोटरी में। और हर बरिस इनकर प्रतिमा पर 27 सितंबर के महानुभाव लोग माला चढ़ा के उनकरा श्रद्धांजलि देवेलन जा। ई मूर्ति आगे इमिग्रेशन बस अड्डा के सामने अप्रवासी घाट के बगल में पौका बुले में रहल, फिर एक इंडस्ट्रियल कोर्ट के आंगन में अनलगल। कहे कि ई मानल जला कि इनकर सही जगह एगो अदालत के आंगन में ही है। कहे कि उ काम करवा लोग के हक में जो क्रांति चलल ओकर में भाग लेते हुए अपन जान गवाइलन। अंजलि कूपन सुंदरम पवत

0: टन के नाम से जन्म ले रलन फरवरी 1911 में रिविया जुरोंपा गांव में। रिविया जुरोंपा गांव में ही उनका जन्म होल और उबड़ा होलन। 13 सितंबर 1943 के बेलव्यूआगल के ताबिस्मा में एगो हड़ताल शुरू होल। 17 सितंबर के दो को कामकर लोग के प्रतिनिधि हरि प्रसाद राम नारायण और शर्मा जगदम्बी शक्कर मिल मालिक लोग संगे एगो संधि तय करलन सा। बाकी लोग हड़ताल जारी रखलन सा और हिंसा भड़क गल जोन खातिर पुलिस के पड़ल मामला पर काबू पावे गए। 27 सितंबर के काम करवा लोग बेलव्यूआगल के ताबिस्मा में एगो पूजा के आयोजन करलन सा। जब पुलिस आल ते देखलन सा कि औरत मर्द लड़का लोग लाठी और हाथ में पत्थर लेके खड़ा होवन सा और हटे के नाम नहीं लेवन सा, तो उ लोग पुलिस पर पत्थर चलावे के भी शुरू कर दिलन सा। जेकर बाद पुलिस के पड़ल गोली चलावे के बंदूक से कितने जना घायल होल और 3 जना के जान गल उ बखत हुए पर ही 3 जना के जान गल हुए पर और ई में अंजाले कुपेन भी शामिल रहल जिनकर उम्र 32 बरिस के रहल और उ पेट से रलन गर्भवती रलन। ई बलिदान खातिर उनकरा हमेशा याद करल जाला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

7:55 हुए हैं श्रोताओं, इसी के साथ आज का प्रोग्राम सुबह का नजराना प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला। आप सभी को सोमवार की ढेर और शुभकामनाएं। ये नया सप्ताह खुशियों, उम्मीद और नई ऊर्जा से भरा हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं उषा कौर लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: हर पल आपके साथ।
1: घड़ी मिला दे चले, सुबह के ठीक 9 बजे है। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार। आपको
2: नमस्कार नीतू शाह, श्रोताओं को भी नमस्कार। लावांचिया में आज 7 बजे के करीब एक गंभीर सड़क हादसा पेश आया। एक बस और एक लोरी के बीच टक्कर हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार लोरी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। तमाह में कल एक जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। दक्षिण अफ्रीकी मूल की 58 वर्षीय एक महिला ने अपनी 4x4 पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी बगल में जा टकराई। महिला गंभीर रूप से घायल हुई और बचाव टीमों की कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस जांच चल रही है। उधर दक्षिण में पोना चुगैल पर घूमने निकला भारतीय मूल का 45 वर्षीय एक व्यक्ति खाड़ी से नीचे गिर गया। जानकारियों के मुताबिक वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। नेशनल कोस्ट गार्ड और पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से कल रात उसे ढूंढने की कार्यवाही शुरू की गई, जो आज सुबह से जारी रखी जा रही है। सेफ सिटी कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजियां शामिल करके इस नेटवर्क में एक नया पड़ाव पार किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार नई टेक्नोलॉजियों का ज़्यादा इस्तेमाल करके सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की क्षमताएँ बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। मौजूदा प्रणाली के अपग्रेड होने से AI के माध्यम से सड़कों पर वर्जित या फिर खतरनाक व्यवहारों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकेगा, जैसे तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, बिना सेफ्टी बेल्ट पहने ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, खतरनाक ड्राइविंग या फिर रेड लाइट पार करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कल पश्चिमी UK में एक एयरबेस के पास 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग 3 गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे, जिसमें विस्फोटक पाए गए हैं। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा

द्वारा किया जाता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो हमने के कार्यक्रम आज तनी सुन खास बाटे काहे कि हमने के दुगो मेहमान रहियन स्टूडियो में हमने के नंदकिशोर प्रताप जी और भाई या संजय शंभू। तो चला तनी देर में हमने संगे रह बजा कोनो प्रश्न रही पूछे के खेती बाड़ी से जुड़ल। तो लाइन खुलल बाटे 402-4085। एगो और छोटा सा मिस कर ब्रेक लेके हमने वापस आ जा और वो जब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के बारे में हमने बात करी लाजा काल कैसे रहल आज कैसे बातें कल ओकर भविष्य कैसे और उज्जवल हो सकी और टीवी रेडियो के माध्यम से इस सब हमने चर्चा करब जा साथ दिया जा।

0: आज की चर्चा।
1: फिर से सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में सबके स्वागत बाटे। जैसे कि जन पे करेला हर लंदिन के हमने भेटायला सा हाइजन स्टूडियो बाटे हमने के मेहमान आवेलन फागे दाने से हमने खेती बाड़ी के बारे में बात करी ला जा। आज हो हमने बतियाप सा तने सुन विशेष बातें जैसे कि तोहरा बोली हमने इतना चीज बतियाए ला जा खेती बाड़ी के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में।

आगे कैसे रहल तनी सुन हमनी के आय जा बाटे और जस्ती देताय में हमनी जानब जा। आज जोन बातें हमनी कैसे अपन खेती बाड़ी के हमनी के जितना खेती हर लोग काम करे लन जा और जोन फ्यूचर जोन भविष्य बातें ओकरा और उज्जवल बनाए खातिर काहे कि जे खाए के नहीं मिली हमनी न सकब सजिए हमनी फूड सिक्योरिटी पर बात करी ला जाना। तो फूड सिक्योरिटी जोन बातें रेडियो और टीवी के माध्यम से हमनी के जोन टीवी रेडियो बातें ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन

0: पर जस्टी जानकारी और बतियाए खातिर हमने के दो मेहमान हवन जैसे कि तोहरा बोलली फागिद अने से प्रिंसिपल एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान नंद किशोर प्रताप और सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी। तो दोनों मेहमान के प्रणाम, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: तो अच्छा लगल तोहरा देख के फिरो से प्रताप जी, इतना दिन पर आयला और अच्छा लगल। तो कई जना पूछे लन प्रताप जी कहाँ हवन, आज देखा चल आयला। तो हमने बात करे था जा कि जो बदलाव बाटे जो हमने के एग्रीकल्चर रहल आगे और जो नहबी हमने करे था ऐसा जो आगे होय होला बात एक पर जस्टी हमने बतियाब जब। तो जब हमने बात करे था जा फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा बाटे, हमने ला जानी ला जा कि जो टीवी और रेडियो जब से हमने शुरू कर ली जा आज की चर्चा लगभग सकेला 13 बरिस हो गल बाटे। आज की चर्चा हमने करत है 2016 में, तो देखा कितना बरिस हो गल बाटे। तो तेवे जिन बातें और राज्यों ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे हम बोली उ बड़ा बाते, तनि सुन एक बारे में हमने के बताइए और एक पीछे जो हमने देखा था जा जो खेती बाड़ी बाटे कौन कौन बदलाव आगे रहल, कौन कौन बदलाव आनल गल।
2: हाँ नीतू शाह जी, ये तो बोल रहा है देखा बदलाव।
0: हाँ।
2: अभी ये देखा ऊंचा स्थान पर बैठा आगे हमारे शुरुआत हो रहा है देखा हौजल विभाग क्यपिप में जहाँ सीजो रहा पहला कार्यक्रम गनी करे आज नहीं 25 साल हो गल आवे बगल से घर लिंजा लाइव प्रोग्राम घर लिंजा करे है। तो हौजा प्रोग्राम शुरू हो रहा तो हम तो पहला है देखा दफा ऐसे प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है पर जैली लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छा बुझा क्योंकि ये देखा लाइव प्रोग्राम में और कोई हमने के प्रश्न पूछे लंजा लाइव तो ई बहुत अच्छा है। देखा हमने बताए ला जा हम ही सोची ला जा 1-to-1 है पर कितना जना हमने के सुना था वंजा और कुछ रहेला प्रश्न कुछ ऐसी करके मिल जाला हमने के और एगो प्रश्न से ये देखा कितना जना लाइव लोग के उत्तर मिल जाला और कोई नहीं सके लंजा फोन करे तो अब तक फोन करे लंजा पर एगो चीज हम थी जब बोलत हुआ हम बोला जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना कबो सोचले रही जा ऐसे रहती जा ऐसा माहौल में ऐसा चीजों अभी ये देखा कैसा बदलाव बोला हमने सब कोई लाइव सकत वंजा देखे हमने के फेसबुक पर अपन मोबाइल पर हवा खेत में हवा कहीं बगल हवा अभी देखा तो MBC लाइव बा
0: जी
2: MBC फेसबुक पर चल जाए कोई अभी सका था तो ये देखा नहीं जानने जा इस सफर कहाँ से हमने के आनी और आर सफर है देखा हमने कैसे बोल रहा शुरुआत कर लेने जा 2016 में 2016 आज की चर्चा प्रोग्राम रहा एगो प्रोग्राम उस शुक्रवार के रहा अभी तक हमारे थी याद बा बनाना फैकल जो बीमारी रहल केला पर हमने के देखा हम अली पर बोलन जा आमंत्रित कर दा एगो किसान के हमने के जो भाई कृष्ण फाउदा हवन उ चला रहन तब से हमने ये देखा है ये मंच पर नहीं है जा अब तक खेत में हमने भेंट भेंट होला है देखा कहाँ से निकल के हुए प्रोग्राम से उही दिन तय होल है देखा भाई प्रताप सिर्फ बतियाला काहे नहीं छाना बतलाई की उही दिन है जब आ रही शुक्रवार के हो जाए रिसेप्शन MBC के एथी हम के एथी कलन बहन नर्मदा कितना
0: जी
2: बोलन है देखा सिर्फ बोल देवा था ऐसे बकबक कर देवा तो बकबक करेला पर चाहे ना बतलाई के उही दिन तब शुरुआत होल है ये प्रोग्राम माती के मोल भाई संजय हवन ये भी प्रोग्राम में अलन देखलन कैसे हमने हमने अपन दफ्तर से निकल के खेत में जाए ला जा खेत में ऐसे है जाता कुछ नहीं बा पानी कुछ हवा कुछ नहीं में आता पर देख ली जा हौजा और हैजा हमने के थी एगो चीज जे किसान लोग नहीं रहते हमने नहीं रहती जा देखा
0: किसान की बात करे थे भाई प्रताप टीवी रेडियो तो हाँ हाइजा पाती हाइज प्लेटफॉर्मा के जरिए हमने आजकल देखा था ऐसा जानत है ऐसा अभी जैसे बोला स्टूडियो से बाहर हमने खेत में जाए ला जब माटी के मोल उ सब कार्यक्रम काहे कि जब माटी के बात करी ला जाने सबसे अंदर रहे चाहे ला मटिया पकड़े के तभी जानब सब ओकर मोल कौन चीज है। तो आगे जो रहल जो खेतिहर उसब रहल रहलन जब और लोग के अभी तक ट्रेनिंग बाटे ढेर कुछ बाटे जो वर्कशॉप सब होला आगे उन लोग के मदद उ सब कैसे करत जात रहल।
2: हाँ ज़्यादातर खेद का हमने खेत में जाते हैं
0: जी
2: उन लोग के खेत में जाते हैं तब शाम के मिलता नहीं जा दफ्तर में

0: दफ्तर में हाँ रेडियो रहल, पर रेडियो के माध्यम से टीवी पर आल बाद में, पर है जोन करली जा जोन माध्यम रेखा वन टू वन जाते हैं जा खेत में, हमने भी प्रशिक्षण देवत थली जा, पर
1: जी
0: प्रशिक्षण ऐसे ट्रेनिंग हॉल नहीं रहा ऐसा, हमने कहाँ जा थली जाए देखा, हमने के जोन को पिकाची के दव अथी रहल लोग बुलावत थलन जा, हमने साउथ सोशल में जा थली जा, विलेज काउंसिल में, कभी भी हमने खेत में अथी एगो देखली जा एगो ऐसा वृक्ष बा ओकर नीचे दे 5-6 जना 10 जना बुला के समझावत थली जा, और कौन सी एगो चीज़ है देखा है ये जब आएला जा कितना लोग कौन सी खुशी रहेलन जा, है जानकारी
1: जी
0: जानकारी लोग के मिलेला और टटका जानकारी, हवे बीमारी हम जिक्र के लिए बनाना फेकल शुरुआत रहल, पर हमने के चाह जनाई के
1: जी
0: और ऐसा जनाई के हमने के वो खेतहर के बुलैली जा, वो अपन अथी बोलन जा ओकर खेत में कैसे असुविधा होता वो बीमारी से,
1: जी
0: तैसे ही हमने खोजिला जा हरदम हम बोलीला आज की चर्चा माटी के मोल जो भी है हमने तुरंत पहुँचा देवे ले जा तू लोग, यहाँ एगो चीज़ है ज़्यादा लोग देखे लन जा, और अब तक टेक्नोलॉजी चला बा देखा टेक्नोलॉजी बहुत है मोबाइल व्हाट्सएप बा फेसबुक बा हमने अथी यूट्यूब बा ये सब प्रोग्राम यूट्यूब में भी आवेला, तो है देखा है ये जो ना आई ला जा हमने बतियाई ला जा लाइव मिलेला, और कितना जाना अभी सुनत हुआ जा बाहर भी है हाई प्रोग्राम के माध्यम से बोले लन जा, तो ऐसे ही है देखा हमने हरदम खोजी ला जा सरकार रह लागे हमने के जो एक्सटेंशन सर्विसेज रहल हमने आगे में गई ली जा फागे में, तो हमरी ऐसा जो प्रोग्राम कर ली जा हे देखा हमने के हित में केकर हित में काम करी ला जा, हमने के किसान लोग हमने के आम आदमी जो पब्लिक बा कितना जना भी रसोई में हो जाए अभी सकेला मांजत हुई जा बर्तन पर सुनत हुई जा,
1: जी
0: ये हमने के फीडबैक मिल जाला, क्योंकि जितना जानकारी नवा चीज़ हमने हरदम बोलते जाइला जा, और एगो चीज़ बा जब जिक्र करी जा 2016 में हम रही थी इंचार्ज जानकारी एफ ओ माशो सैपियर में हमर के हमके एथी बोला है देखा इनोवेशन कर नयापन आना, तो नयापन जैसे हमके मिलल एक कुली हैजा लाइव प्रोग्राम में मिली नहीं ये नहीं सकेला रोके,
1: जी
0: हर सप्ताह लगले जा एगो प्रोग्राम करे
1: जी
0: कर ली जा 10 साल हो गल है, और है ये जो माध्यम अली जा कौन सी अथी होल माथी के मोल, तब हे देखा आप पहला प्रोग्राम कर ला आज की चर्चा हौजा भी घसीट लेनी तोरा
1: जी एक पर हमने बतिया जा। अच्छा भाई संजय अभी प्रताप जी बोलत हवन जो रेडियो और टीवी जो ऐसा जितना माध्यम बाटे आज तो सोशल मीडिया बाटे, और कैसे वो अपन काम के कम्प्लीमेंट करत हुआ तुहर देखे में रेडियो और टीवी कैसन एगो जो ओकर कॉन्ट्रीब्यूशन तुहर देखे काहे कि दुगो जिनगासो बाटे हमर लगे सामने एगो प्रताप जी हवन एगो तू हवा तनि सुन के बारे में बताओ।
2: चाहे तो हमने किसान लोग की तरह रोज के रोज भेंट कैला जा, जैसे प्रताप जी बोलन जब खेत में जाब सा प्रशिक्षण देब सा या कोनो एगो के गोपमा करब जा एगो मीटिंग करब जा वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब सकल जला करे जब किसान हुआ भेंटाए नहीं भेंटाल तो तब ओकर हौ जन रहल हमने के बोले के जन जन जन मिसाज रहा पासे करे के वो लोग के तब नहीं सकल जाए करे, और आजकल आज देखब तो एगो नया दौर बा, पहले तो कहना किसान लोग शायद सिर्फ मंडी या लौकौतिया लगे भेजतलन था अपन अपन सब्जी वगैरह फल, अब तो देखब इतना होटल बा रेस्टोरेंट बा ऐते में जे लोग बा किसान लोग अपन अपन अपन रोज के रोज कहना लोग के समय ही नहीं रहेला, और भेंट करके भी कभी कभार कहना कठिन हो जाला, तो ये जब रेडियो और टीवी के माध्यम द्वारा जब हमने आय ला जाता तो किसान सकी कहीं पर भी रहे आम जनता कहीं सकी कहीं पर भी रहे, लेकिन जब रेडियो टीवी संगे जुड़ल बातें तो वो जन हमने बोला था जा तो वो लोग लगे पहुँचल पहुँचता हाँ बिल्कुल, अब जैसे बोला साल साल जब ऐसे चले गल तब देखा टेक्नोलॉजी कैसे अब बदल गल बातें, अब हम जन प्रोग्राम आवेला जे आज की चर्चा आवे लेला या माटी के मोल लेला तो फिर से ओकर डिफ्यूजन होला फिर से चलेला टीवी पर, तो कोई जब लाइव भी नहीं सकल ओके

0: सुने या जो समय ओके प्रस्तुत कर टी वी पर वो लोग नहीं सकन जा देखे तो सकन जा दूसर दिन दूसर बखत लेके देख ले या तो फिर जेकर लगे माइटी की सेवा उकर घर में बात सके रिकाप में भी देखे
1: हमने बोल दे और यूट्यूब सुने के मन बात सांझ के जो 3 से 4 बजे ले फिर से सुन बजा और टी वी पर 4 से 5 बजे ले सकियन जा देखे
0: हाँ दोहला चलेला और अब देखा अब जन तोहर MBC के जन प्रोग्राम बातें चाहे माटी के मोल हो चाहे आज की चर्चा हो दोनों यूट्यूब पर अब मिलेला तब कोई भी जब ये प्रोग्राम के गला नहीं सुन ले हो उस समय जब ये जब चला रहा तो दूसर कार्य में लगा रहा तो एकांत से जब घर पे वापस आए या अगले दिन सके यूट्यूब में ढूक के तैसा कि प्रोग्राम खोज के तब मिल जाए तो जन सुविधा MBC प्रदान करता एकर कैसे बोला सा मोल ना तो एकर मोल नहीं सकल जाए लगाए क्योंकि ये जब छोटा मोटा चीज़ हमने यहाँ बातचीत करी ला जा तो हमने के जन प्रकार से प्रभाव करेला जनता पर जाके अमल करेला जा एकर मोल नहीं है
1: जी इस सच्चे बात बोले हुआ तो चला माटी के मूल कार्यक्रम के बाद हमने अब करब जा जैसे बोला था प्रताप जी उकर शुरुआत 2016 में ही शुरुआत हो रहा आज की चर्चा संगे तह जो कॉन्सेप्ट सुनवा बाते वो कैसे शुरुआत हो रहा और कैसे हमने के जितना खेतीहर उन लोग के फायदे के बारे में हमने बताया था जा तो कौन एडिशनल जो बातें फायदा उन लोग के पहुँचल और पहुँचते आवता
2: हाँ ये बहुत अच्छा बोला कौन फायदा और कैसे हमने कंसेप्शन हो रहा
1: जी
2: इतना जब भोजपुर चैनल के एथिरान हुसैन चौध नर्वदा जी बैठक कर ली जा कैसे करेगी तो हमने बोली जा अरे देखा हर मास सकेला एगो प्रोग्राम करे हम बोली नहीं हर हर सप्ताह से कब्जा करे कर ली जा बैठ ली जा पर एगो चीज़ जब हमने सोच ली जा है देखा जब कृषि के बातचीत कर ली जा अकेले फागे नहीं काम करेला हमके कितना स्टेक होल्डर्स है स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड सरकार बा MCIA बा सर्विसेज बा है जितना प्रोग्राम कर ली जा सब कोई शामिल हो लग जा सब कोई हे रेखा हमने जब गई नहीं जा उन लोग के भी है जा हमने के भाई डॉक्टर सुका अलन जा MCIA से कितना जना अलन जा कर्मचारी स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड उन लोग के संगे मिला के ये सब प्रोग्राम जो कर ली जा तब हे देखा एक जना एगो किसान बा उ सिर्फ एक के खेती नहीं करेलन उ सिर्फ सब्जी नहीं रोपेलन उ सिर्फ कैसे फूल नहीं रोपेलन जो है जा एगो इतिया कैसे जा मिक्स क्रॉपिंग बगीचा है बगीचा में सकेला एग्रो फॉरेस्टी अब तो बातचीत करते जा ये सब रहल तो ये सब चाहत हमी के उ लोग के जाए के बतलाए के है जा तक कि हे देखा हम पशुपालन है जाएंगी हम कितना प्रोग्राम कर लीजा पशुपालन गाय बकरी हमी के भैंस हमी के काय जो छोटा अथी पक्षी है ऊपर कितना हमने अथी कर लीजा पर हे देखा एगो चीज़ जो माथी के मोल तब पहला कर लीजा हवे जो अथी कर लीजा एगो पहला जुटाव कर ले रहे जा मोहतालोंग में मोहतालोंग में जहाँ जहाँ गढ़ लीजा उ लोग के बुला के और प्रोग्राम कर ले जा और सब कोई के आमंत्रित कर ले जा और ऊपर भी प्रोग्राम कर ली जा देखा माथी के मोल होल गए ले जा है देखा तोहर यहाँ देख अभी याद बा पहला जो रहल होल में हो जा हमने के रहल हमने के भाई चिकोगी त्रियोले से कौन सी अथी अथी करत है नर्सरी रहा छोटा छोटा पौधा हौ बखत ढेर ऐसा नर्सरी नहीं रहा छोटा पौधा तोरा मिली अथी के मिर्च के मिली बैगन के मिली पलामून के मिली इस सब पौधा हो जा त्रियोले में करत जब प्रोग्राम कर ली जा जाने ला कितना जना देख के नर्सरी स्थापित कर दिले हन जा है चला जाने के और एगो चीज बा हम बोली ला जा देखब तब न करब
1: जी
2: बतियाव थे जा हे देखा इस साल से इत लाइव हो गल बा हम भी आईली लाइव हम डेमोस्ट्रेशन भी कर ले कैसे छाला इस्तेमाल करते ई सब हमने के छाला टेक्नोलॉजी हमने भी अब हम के याद बा कैसे हमने खेत में जा थली जा क्योंकि हमने भी प्रशिक्षण ले लिया जा कभी बाहर से कोई आल बा हमें प्रशिक्षण दे या बाहर गले जा तो उ सब हमली हे देखा है माध्यम के माटी के मोल इस सब हमने बैठ के हमें बोल जा चाहे ना जाए के करे के और ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम कर ली रेखा ढेर जना सुना।

0: नहीं जाना था, ढेर जाना नहीं। तो हम करली स्थापित करली हे रेखा एगो प्रोग्राम करी ले जा सुरन पर, ओकर से कौन ची होला। तब देखली जा सुरन से सकेला सामोसा होई, सब कोई अचार खाला तरकारी खाला, पर ओकर से कितना चीज करल जला ई बतैली जा। ऐसे ही हमें अनली जा कितना प्रोग्राम नयापन अनली जा मॉस टू हमें के स्नोपी हो जा बेलते गई जा हमने के दादा ऊ बतलैलन मॉस टू ढेर जगह नहीं जा था रोपाला। हाँ रोपाला निर्यात करी ला जा नहीं हमने बाहर से मंगाई ला जा। तो सब है ये माटी के मोल हमने खेत में। अब जितना किसान लोग हमने के बोली ला जा आई के उ लोग के हमने के छैला कैसे बोले के तू लोग बहुत अच्छा काम करत हुआ हमने के बुला के बांटत है जा। यही जिन चीज करत हुआ जा हरदम एगो चीज हम कर ले आई और चाहला इसने करे के जब हौजा गईली जा हौजन देखली जा ऊपर छैला बातचीत करे के। क्योंकि हम हरदम बोलते आए ला जा जोन चीज उ लोग करे ला जा तब हमके कबो हमें बोली ला जा हे देखा ढेर जना हमने के शिकायत करे ला जा कोनो चिड़िया उ लोग के अथी घिस लेवेला छोटा पौधा। पर हम एगो दादी गईली दागोछिया में उ जाने ला कौन चीज करत हन और काम करेलन मीगे काट काट के दरिया में डाल देवेलन चिड़िया नहीं आवेला। हौजा जब कलमासिया में गईली हौ एगो दादा रहन उ चिड़िया का करे जैसे हम एथी नहीं पसारे लीजिए लुगा ओके वो ऐसे अथी प्लास्टिक अथी डाल हम बोली तो हम सोचली खेत में वो लुगा पसारे लन बोला नहीं हे रेखा देखा है जा बैठा हो जा एगो चिराई है जाने आई सकेला वो खेत में आवा था। हे रेखा यही जब कुछ गईली जा हौजा देखली जा और कौन सी अच्छा होता ई बतलाएला जा और कबो हो जाला है देखा प्रोग्राम हमने के पानी चलावेला हवा उजाला। हमके सिर्फ याद बा ई 10 बरस में एक बखत हमें प्रोग्राम नहीं सकली जा करे
1: जी।
0: माने कि हमने हे देखा खेती हर लोग हमने के जोन पशुपालन लोग उ एथी पानी आवेला बरसात मूसलाधार बारिश उ लोग के चाहेला काम करे के चाहेला खेत में हमने उ लोग के साथ गईली जा मूसलाधार बारिश हवा बा साइक्लोन में भी गईली जा प्रोग्राम कर ली जा बतलाए के कि हे देखा कैसे उ लोग अपन जीवन ले जालन जा।
1: तो जैसे बोले थे बदलाव आल और कई चीज के जो लोग सामना कर ले माने कि हमने बात करी ला जा चैलेंजर्स और हमने देख ली जा कि खेती बाड़ी में समय समय पर कितना उस सब आल बातें चैलेंजर्स के सामना कर ले हवन। हम हजा पर एगो चीज देखा था 2008 में एग्रीकल्चरल इनपुट्स के कीमतों में जो जबरदस्त बढ़ोतरी हो रहा है एक बारे में तनि सुन बतावा और फूड सिक्योरिटी फंड स्कीम्स एक शुरुआत कौन तरीके से हो रहा और आज जो ग्रांट्स यानी कि जो अनुदान वो सब हमने के खेतिहर लोग के मिले तनि सुन एक बारे में बताओ।
0: हाँ ये देखा आज की चर्चा हरदम हमने एगो स्कूप दे हरदम हमने हरदम हम बोली ला देखा पहला हम जब आवब ई मंच पर या माटी के मोल बुलब कौन योजना रहा और योजना शुरू हो रहा 2014 में देमिल काथोज में पर ऐसे जब होल 2016 में लगभग अथी लॉन्से उगल रहा जितना स्कीम नयापन आ रहा हमने आगे लेके जाइए देखा हाइड्रोपोनिक्स पर बहुत जिक्र कर लीजा गुतागुत पर अथी कर लीजा और एगो चीज़ जैविक खेती
1: जी।
0: जैविक खेती जो ढेर आज चर्चा होता कैसे छाला हमने के अच्छा तरह तरीका अपनाए के जब खेती करी ला जा कैसे हे देखा होल हरदम बोली ला जा हमने के जब रिवोल्यूशन होल कृषि में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आल जोन जोन लैजिस्ट्री एथी बनावत हलन जा आमिनिशन से हम उ कन्वर्ट हो गेलन जा पोजिशेमिक करे लगलन जा। तो ऐसे ही हमने पर हो लगल हमने के आबादी बढ़े लगल पॉपुलेशन तब ओकर बोलन जा चाहेला ये देखा है खाद छाला इस्तेमाल करे के तो पेस्टिसाइड आए लगल। पर हमने के आज छाना जाने के हमने के जो नवयोन में हमने के पर्यावरण पर असर करता
1: जी।
0: और पहला असर है देखा हमने के माटी ये बोल जा माटी के मोल ओके बिगाड़ देव अपचा ओके छाला हमने के अच्छा से संभाली के एगो पहला और जब संभालेला के संभावेला हमने किसान लोग कम करवा लोग पर्यावरण और एगो दूसर चीज तब उ कहाँ जाला हमें के रसोई में हमके रेस्टोरा में हमें के पर्यटक लोग आवेलन जा तो उ छाला जो हमें पैदा करी जा छाला सुरक्षित तो यही माटी के मोल ये सब सिखैली जा नवा टेक्नोलॉजी आने के चाहेला आने के अभी टेक्नोलॉजी प्रेसिजन फार्मिंग पर

0: बातचीत करत है जा हरदम हमनी आगे जाते हैं जा हमनी बतलाए ला जा तो यही ये है प्रोग्राम हम है आज की चर्चा सब कोई देर जना रेखा हम तो रोज लगभग हमके कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेला हमने के ब्लेसिंग मिलते रहेला तब ना आगे लेकर हम जब आएला था हम जब लेंदी होला हम कुछ भी होला हम नहीं छाती और चाहिला आई कि क्योंकि हम जाना थे जा कितना जाना हमने यहाँ जानकारी बा उ लोग यहाँ भी जानकारी बा हमने के खेतीहर लोग ना पशुपालन करके उ लोग भी रोज में लगल रहेला जा अब भैया रेखा एगो हम एथी करत हैं माटी के मोल जब कर ली हमार माताजी बोला नहीं रेखा जब पिताजी बैठे थान बतान अच्छा रहत हमार एगो लड़का हौजा टेलीविजन पर बतियाई बाद में जननी है तो यही पर उ लोग के उ लोग सोचा था जा क्योंकि हमने प्रोग्राम करते थे जा ढेर बतिया था लीजा और कितना अवसर लोग आवत हल है खेत में और हाउ जो फार्मिंग न्यूज आगे मिला था लगभग हर महीना हम हमार मेज पर रहल सब हम खोल के देखा थली और ओके बांटा थली तो वो बताए जैसे बांटे तो काहे नहीं वो टीवी पर बांटी हम तो ऐसे ही होल है देखा तब कर ली जानकारी दे लगली हमके कितना जाना कैसे बताए जा कॉम्पली माँ मिलते रहेला ब्लेसिंग्स मिलते रहे ये सब कोई के हम बताए जे जे हमके टोक देवेलन हम अथी बताए कितना कॉम्पली माँ देवे ऐसे कोई चिता दिले बाहर का प्रोग्राम गलत हुआ कुछ हो जाए ऐसे हम बोली नहीं हमके चाहना पॉजिटिविटी पॉजिटिव चाहना हरदम रहे के और ये प्रोग्राम है देखा भाई संजय संगे हुआ हम बोली इस सफर में ये गांव हुआ क्रिकिया से ये अथी पिता बोस रोज देखेला हम भी मौत आयलोंग से पिता बोस इस सफर में क्रिकिया हुए परिवार स्कूल क्रिकिया ही अथी हमनी सेकेंडरी स्कूल गैली जा फारे में आई जा और एक के यूनिट में काम कर रहे
1: थे बाद में इंकरा हमने खींचा जा माटी के मूल में
0: हाँ तो अभी घिंचा करवा घिंचा करवा घिंचा करवा अभी ये देखा है वो प्रशिक्षण देवा था हल साइपिया में बैठा था लेकिन जा जो जानकारी हमने के जो अवसर बोला था जा है देखा है हमने लॉसमा कर ले रहे जा ये थी हम काम कर रहे थे दो बरिस में हमने सिर्फ यूट्यूब पर गई ली जा हमने जा इतना छः बरिस आगे हम कर दे जा प्रोग्राम
1: जी
0: संगे ये देखा हमें की जानकारी क्योंकि यूट्यूब में देख लीजा
1: जी
0: हो जो सुल्तान जो अथी टमाटर के ये थी बा हमली के जो किसान बा छः बरिस आगे रोप दे और हम जानकारी दे दिले जा
1: तो एक प्रश्न पूछा भाई संजय जिन हमने बात कर रहे थे ऐसा फूड सिक्योरिटी फंड स्कीम्स एक में तोहर देखे में कोनो बदलाव होल कोनो विकास होल बातें और ये सब स्कीम्स जिन बातें बदलते समय के साथ जिन हमने के किसान लोग हवन जा उकर से फायदा उठावत हवन जा
2: हाँ बिल्कुल और समय के साथ बदलते रहेला और कन्ना समय के साथ अडाप्ट हो ले जाला
1: जी
2: जैसे कि आज देखब जाके कम करवा कम थी बा मॉरिशस में तो उस प्रकार से देख बता फूड सिक्योरिटी ग्रांट स्कीम में आल गंदा परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ताकि किसान लोग सके इक्विपमेंट खरीदे या जो ट्रैक्टर वो भी खरीदे समय के साथ जो ग्रांट मिला था बढ़ गल 250 से 350 चल गल 1000 चल गल अब देख बा कैसे किसान लोग बोला देखा खेत में चोरी होता हमने ये सोच के देखा सोच ला सा था कैसे सकल ला किसान लोग की हमने सहायता प्रदान करे तो से कोई स्कीम आल परचेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा तो जो जो किसान लगावे ला तो लोग बोला कैसे हमने के वो किसान बा वो गनला जनाना रोपे ला तब बोला जब जब जनाना पके के समय ला था सब चोरी हो जाला तो अब किसान जब है लगा दे ले बा तो उकरे लोग ला कि चोर बच के रहना था ना क्योंकि उकर उकर उकर गाड़ी को कर नंबर कर मुँह सब लौकेला और आजकल जो कैमरा बा वो ए आई कैमरा हो गल बा जब कोई आवेला दूर से ताजा ऐसा ऐसा कैमरा किन बा तो अपने से फोकस होके हाँ सेंसर सब बा फोकस होके तो गाड़ी के प्लेट या तो चित्र वगैरह सब निमन से निकाल देवेला अब समय के साथ देखा अब टेक्नोलॉजी की ओर जाते हैं जाते अभी हाल ही में अभी प्रताप जी अभी बुल्लन तो एक नवा स्कीम निकल बा प्रेसिजन फार्मिंग पर और जो एआई पर आधारित जो सकी उत्पादन के बढ़ाए ओकर पर एक स्कीम निकलबा और वो जला 2 million rupees तक 50% के फंडिंग होला लेकिन 2 million

0: है रुपी तक चल जाला। तो इस प्रकार से अनेक ऐसा ऐसा सुविधा आवेला बढ़ेला या फिर नया नया आवेला ताकि समय के साथ हम इस कब्जा चले
1: जी।
0: और आज बोला तो अच्छा कि किसान लोग इस सबसे सुविधा उठावे जला कि नहीं, तो हम एगो उदाहरण जो बोला दूगो देला देखबा कितना किसान के आज खेत में और सीसीटीवी के कामयाब आते
1: जी।
0: तो एक में बहुत किसान एक में किसान लोग बा जो अपन से भी किन ले आधा तक पैसा डाले लंचा लेकिन एक में बहुत किसान बा जो स्कीम से लाभ उठा ले और हाइड्रोपोनिक के बोलब सा ग्रीन हाउस के तो पूछा नहीं आज देखबा तो शायद ठीक से नहीं सका बोले लेकिन आज देखबा ये 5 साल में तो सकेला हाइड्रोपोनिक के जितना आई मेत कागे बामोग इसमें तो सकेला दुगना हो गल। अभी हमने 1 मिलियन मीटर स्क्वायर से ज़्यादा चल गए हैं सर हाइड्रोपोनिक में अभी 2025 में। तो इस प्रकार से हाँ ये ग्रांट स्कीम और एक चीज बा कि सकेला हमने सोचिला सा कि नहीं तो ये बड़ा किसान बा ये छोटा किसान बा नहीं सब लोग आके कैसे लाभ उठावे लगे छोटा किसान बा बड़ा किसान बा कोई खातिन सकेला 20,000 ज़्यादा बा कोई खातिन 2 मिलियन ज़्यादा बा मैं सब कोई पर सब कोई एक में से लाभ उठावेला
1: जी। तो हमने बात करब जा तनि सुनो और माटी के मूल कार्यक्रम में प्रताप जी हमने इतना चीज पर बतेली है जा हमारे से आगे नर्मला जी रहलन और कई जना करले हवन माटी के मूल इतना टॉपिक पर बात होल बाते हार्वेस्टिंग प्रोडक्शन पशुपालन एकर पर हमने जानी जा हमने गैली सा पानी हो घामा हो लापू सब भीड़ मानी कि जर जाएला सा पर हम जो मजावा आवेला तोहर मनपसंद जो टॉपिक रहल प्रोग्राम रहल और भाइयो तोहरो से पूछब तुहु कोलाबोरे करले हो आज माटी के मोल कार्यक्रम में तो तोहरा कौन अभी जो ऐसे तो नहीं बोला पर कौन एपिसोड तोहर जो फेवरेट बात है दोनों हमने के बतावा जा।
2: बहुत से प्रोग्राम करे 10 साल हो गल है पर जब जाएला एक स्थान पर वो हरदम मेमोरियल हो जाला
1: जी
2: एगो मेमोरी रहना क्योंकि हो जा 2-3-4-5 घंटा हो गल बा कबो रात हो गल बा रात के भी प्रोग्राम कर ली जाए कहते ऑयल में गई ली जाए हाँ सुलीता पर क्योंकि वो चाहत रथवे के जाए के तो हम ही बोली जा नहीं एक दिन के जब से कौन चीज लौकी जो हौ अथी चाहत लिकिप में वो रथवे के चाहत बतलाए के बिजली के तो हौजा गई ली जा एगो है एगो जब अभी अथी में बताए है जो अथी रहा क्योंकि एगो नौजवान के पास गए ली जा है नौजवान हमने के जो बेटा निकेल गाम जो का मन है ये अच्छा बा बोले के वो जो चीज करत हुआन तुता अपसुलिता होता ये चार पाँच बरस हो गल मॉरिशस में बा पर हमने के चाहत बतलाए के वो नौजवान कैसे जो हमने के रासायनिक पदार्थ बिना डलला ओके चाहत कंट्रोली करके ये हमने गैनी जा सिखाई पहला हाँ अभी भाई संजय बोलन हाइड्रोपोनिक्स पर ढेर चीज बोलीला जा पर एगो चीज पर हम बोलीला जा क्योंकि जो हाइड्रोपोनिक यूनिट बनाई ला जा वो ज़्यादा अथी लगभग लगभग 30,000 1 मीटर स्क्वायर है लग जला अथी उपने निवेश करके बतलेली जा कैसे छाना पहला अच्छा हमने के जो अथी बा बनाए के अब जो कैसे चला खेती करे के शुरुआत में कौन हमने के चला प्रिकॉशन ले के अब कैसे चला निपटे के हम ही तो जब गईनी जब देख ली जा हमने के जो भाई एगो दूसरा हमने के एक्सटेंशन ऑफिसर कृष्णा कामसामी सब मिल के तब हौजा बतले ली जाए देखा तूता सकेला काबू में आए अब ढेर जाना भाई शंभू के भी साथ लिमायान में गई ली जा हौजा भी हमने अथी कर ली जा जो हमने के रासायनिक पदार्थ दलब जा वो कामे नहीं आई हमने के छाना तब भैजा ढेर चीज हमने कौन चीज बनले बतियाई लीजिए IPM इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट माने कि हौ जोन बीमारी बा हौ जोन हमने के कीड़ा बा लोग के सामना खरीते विभिन्न प्रकार के हमने के छाना बदलाई के पर एगो हम बोल दे बताए एगो अभी ले अथी बा हम एगो प्रोग्राम कर ले रहे जा अथी मालेगा में लहसुन पर गई ले जा तब हमने जब बीत गल तब खाए लगली जा तब गई जा मालेगा के क्योस में बैठ ली जा नर्मदा जी रहन हमने के बाल सिखाते हमने के जो अथी रहन कैमरा मैन हम बोलिए देखा सूरन पर हम एगो प्रोग्राम करब जब हौजा से लौका तब मोता लूँ तो मोता लूँ कहीं के लिमाया ये ही तो ज्यादा रोपाई उ लोग नहीं भाई प्रताप नहीं नहीं करियन जा

0: मलाई यति बा इतना रोपाला जब जैबा शादी में तो हवे कुछ मिलेला जब हमके कुछ नहीं रही वही मिलल तो हम कुछ नहीं बोली हम बोली बाद में तो कुछ नहीं बोली लोग के सिर्फ बोलनी है देखा उ दिन जाप जाम होता है लोग में प्रोग्राम नहीं बोली कहाँ जाप जा जब गैलन जाता है वो लोग तो बोलन जा ये तो चौक गैलन जा हम के जो कैमराम नहीं हवन अभी भाई संजय माथा पलत रहना वो जब हाउ प्रवेश करना जब प्रोग्राम कर दिली जा प्रवेश करना घर में जब देखलन हाउ विभिन्न प्रकार के जो हमने के तैयारी हो गल बा सूरन के समोसा सूरन के कुचा सूरन के तरकारी
1: आपके बोली नहीं
0: हाउ सब जे हाउ इतना अपने आप आंगन में चले गए फूल आने लगे हाँ। जहाँ सजाई के तब यही तब हम प्रोग्राम में कौन चीज दलनी हे देखा रोपी ला जा पैदा कर ले जा हमने के यूनिट बा उतर में हरदम बोली आ जा आगो प्रोसेसिंग बतलाई ला जा कैसे कुचा अचार चिप्स पर हाउ जो पकवान होला अभी गैली जा है देखा न्यू ग्रोव में हमी के जन भाई बाचू बतलैलन कैसे सूरन और गोपार अथी चोले छैना करे के तो इस सब हमने के छैना है देखा ढेर जना लड़का लोग उ लोग के छैना है ये छैना सिखाई के
1: बोकला पर हम
0: बोकला पर यही अभी ध्यान बा जो आर बोल जा सब बा रोपाला पर और कोई जब एथी में जालन जा मंडी में सूरन के रूप देखे भाई तो नहीं सकेला कि नहीं छिले कैसे छिलाई पर हमने ये सब बतला दिला जाए देखा रोपा तो रोपाए होला वो एथी हो जाला हमने सकब जा धो धा के उ सकेला रसोई में कोई नहीं काटेला तो हमने बतलाई जा कैसे चलना काटे के कैसे चलना पकवान अथी करके पर और एगो चीज पर ध्यान जब बोलनी जा हे देखा कुछ ना कुछ रोबा खैबा हम की सेहत पर बतलैली जा है देखा अभी अथी आवा था दुर्गा पूजा ढेर तब हम जब रिसर्च के लिए हो जा भारत में जब अथी ऐसा ऐसा पर्व आवेला तो उ लोग सूरन खालन जा काहे क्योंकि वो लोग के पेट भर ले रहेला फजीर के खाने तो ऐसे ही हम बहुत ध्यान देली रोपा हाँ मंडी में जाता और एकाध गो चीज रोपत है जा और जैविक खेती सकेला अपनाए भाई संजय तो रिक्वेस्ट हुआ ना जाने लें जब सूरन रोपा जला बोरन में कुछ रासायनिक पदार्थ नहीं डाला रहा कुछ नहीं बीमारी उरी नहीं होला ऐसा चीज हमने के छाया रोपाई तब करे के और पोपाजे करे के आगे लेके जे हमने के मयोग बा हमने के बतात बा इस सब सकब जा अरुई बा हम इस सकब जा जैविक खेती अपनाए तो ये अपनावब जा किकर हित में बा हमने के माटी हमने के जो आम आदमी अब बतलाए थी आम आदमी देखा बहुत हुआ हम जब प्रोग्राम करीला जो फीडबैक मिलेला और कोई ढेर जना अपनावे लंजा और कोई जब जैविक बोलला वो लोग अपन छत पर ढेर रूफ गार्डनिंग पर हमने अथी कर लीजा वो अपनावत हुआ जा कितना फीडबैक हमकी तस्वीर भेजे लंजा ये देखा अभी एक जना जो गोभी बाबू बतलाए देखा ओकर छत पर फूल गोभी गोभी सब रोपेलन इछाना अथी करे के तब पहला जो कार्यक्रम हो रहा हम गरली फिल्माई करे हमने के जो भाई मोरा बकस रहन सर दूसरी मंजिल पर एगो रूफ गार्डनिंग में जब गैली वन MBC के नीचे सड़क पर आल हम गैली बतलाए तब लोग नहीं आवत वन जा हम गैली हम बोली काहे नहीं आवत है कैमरामैन का पता कौन ची है प्रताप जी कौन ची है जा बा हम बोली उतरब तब न जाए तब गैलन छत पर तब बोले तो जा है जा सात तरह के आम बा मयोग रोपा गल बा गाँछी अबोका के गाँछी बा फूल गोभी सब इतना दू गो प्रोग्राम सकेला हो जाए तो यही बोलनी तब भाई ये प्रोग्राम हमने सिर्फ खेतिहर नहीं हमने बोलनी जा है देखा अपन आंगन में ब्रिक दलागल बा कोलता रोगल बा सकबत दमला में रोपे कोना एगो कोना माटी बा सकबर रोपाई करे छत पर दमला में सकबर जा रोपाई करे हजा तक कि हम चौंक गई जहाँ जहाँ जब अथी गहली जा हम बताए दूसरी तीसरी मंजिल पोटलिस में रोपाई होता मोरिंगा के गाँछी देखा था हमने के जनाना सब ऊपर दूसरी नहीं तीसरी मंजिल पर रोपा गल में तो हम भी तब बाँटे लगली हम ये सकेला करे और ढेर जना है देखा सिखैली जा है प्राचिक कुछ ना कुछ पैदा करत हुआ जा तो यही बा हमने बहुत है जा हमने के कौन सी उत्पादन बढ़ाए के अपन घर पर सकब अपन छत पर हमने के किसान लोग और हरदम अभी बोलते जा और कर 50,000 बीघा जमीन

0: ऐसे ही छूट कर बा।
1: तो चल नहीं छूट ले दिया जा, काहे कि हम अभी बखत देखा था हमने के प्रोड्यूसर शीतल हम की भगैया से अभी काहे कि अच्छा लगा था सुने के है जिन कहानी वो सब बातें है जिन जितना एक्सपीरियंस बातो हर। तो भाई तेरे सुन संक्षिप्त में तो हो रूप हमने जानी आजा जिन एगो प्रोग्राम रख ऋषि दर्शन ना।
2: हाँ।
1: आज तो आज की चर्चा तेरे सुन ईल एक्सपीरियंस वा के बारे कौन फर्क बा ई दू ले मिशोवा में और तो हर एगो जन जन एक्सपीरियंस बाटे माटी के मोल संगे।
2: अच्छा नहीं बहुत फर्क हो कृषि दर्शन हम तो शुरुआत करें केपिप से केपिप के स्टूडियो में हुआ से, लेकिन कृषि दर्शन एगो प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो तो यानी कि जब हमने एगो विषय चुननी जा तो सकब से एकांत से वो विषय पर काम करे ओका लिखे ओके निमन से ओकर पर जांच पड़ताल करे तब आके यहाँ पर ही ठीक से ओके पढ़ी ला जा
1: जी।
2: बात भी कर ला सा लेकिन ओकर पर रेफरेंस करके पढ़ के तब ओके रिकॉर्ड होला फिर से ओकर पर एगो एडिटिंग भी होला यानी कि कोनो खराबी वगैरह रहल तो लेकिन निकाल देब सा बीच में खटखटाहट होल हिचकचा गए निशा तो वो भी निकाल देब सा तो ये प्री रिकॉर्डेड रहला। लेकिन आज की चर्चा जो बा अभी ये प्रोग्राम जो अभी चला था ये लाइव बातें यहाँ पर जब तू प्रश्न पूछा तो यहाँ पर ही चला दिमाग के जल्दी जल्दी काम करे के
1: एडिटिंग कुछ नहीं बात कर कुछ नहीं बात
2: कर कुछ नहीं बात है तो यहाँ पर ला हमने के अनुभव के साथ बताए के एक आध चीज तू जब पूछे ला यहाँ पर ही या कहीं पर एगो लाइव प्रोग्राम चले ला तो जन पूछे ला तो उतर सकेला कोनो पुस्तक में लिखल ही नहीं बातें तब कहाँ से वो उत्तर आए उस आवेला हमने के अनुभव के साथ किसे हमने के भाई ननवन अनुभव देर बा तो अनुभव से बतियालन सा तो वही अनुभव के साथ हमने बुझला जा जो हमने के उचित लौकेला और जन ठीक बा वही वही तब बुझला जा
1: जी।
2: और माटी के मोल जन बोलला सकेला एगो अन्याय हो जाए आज हम एगो चुनाव तक हम जल्दी जल्दी में हम तोरा दो तीन गो बोल लेला
1: जी।
2: एगो तब बातें तोरा याद हो नन आई हमने वाले दे प्रेत में एगो कल निजा ओकरा जासिद पर वो काहे हम खादिन प्रिय है क्योंकि वो हमने एगो ऐसा समय पर वो प्रोग्राम करनी जा जन सकेला लोग सोचते हुए कि खासकर किसान लोग की ओकरा जासिद के ओकर कंट्रोल मैनेजमेंट करे खातिर खाली रासायनिक पदार्थ चाहला और हमने ऐसा एगो प्रोग्राम करनी जा कि जाके देख लीजा कैसे पायाज और कोक्सिनेल मल्चिंग और कोक्सिनेल सकी हमने के सहायता करे तो एक खातिर श्रेष्ठ बात है। ओकर बाद और एक दू गो ऐसा प्रोग्राम होल मैं लेकिन एगो बात श्रद्धांजलि के रूप में नन जी अभी बोलन कि एगो प्रोग्राम रहल हमने के भाई ओकर नाम बजला मुस्तफा महबूब अभी इस संसार में नहीं होन लेकिन ओकर संगे वो प्रोग्राम कर लीजिए कर लीजिए जा सन 2020 में शायद कर लीजिए जा जुलाई में तो वहाँ पर ही कैसे टमाटर में कैसे टमाटर मोटा मोटा मोटा मल्चिंग के साथ वो भी कम रासायनिक पदार्थ के प्रयोग करते रहन तो ये बातें। और तीसरा हम बोला वो हमार प्रोग्राम नहीं है ये हम नन के प्रोग्राम के देख के हम बोला था हमके एगो चीज़ बहुत अच्छा लगल हमके लोकल की हमने के जन फागे में नया पीढ़ी बा खासकर महिला लोग जन बा हमने के जन कोलेग बातें कैसे रिश्मा जंकी प्रसाद बा और देख ली धीमा बातें धीमा बातें हमके जन प्रसन्नता होल देख के क्योंकि ये दो हमारे जन कोलेग वन छ वो लोग हमने कहते स्वाभाविक रूप से भोजपुरी या हिंदी के बातचीत नहीं कर लन जा। हाँ हम तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं वो शायद उतना बात नहीं कर सकते हैं लेकिन दोनों के देख के जन हाउ पीछे से जन कैसे बने जन जन जन जन साहस के पॉजिटिव कलंजा आके टीवी पर बताए खातिन क्योंकि वो लोग भोजपुरी या हिंदी स्पीकिंग के नए हो अंजा लेकिन सीखलन जा आके बाद हमर हमर दिखे में ई अपने आप में एगो एगो बहुत अच्छा चीज है ये नया पीढ़ी के चला सीखे के कैसे इसे जिफो चला करे के और आशा करते हैं कि आगे जाके सकेला माटी के मोल लोग के संभालियन
1: काहे कि अभी हमने ये जाननी जा सुनी जा कि प्रताप जी तू अभी रिटायर हो जाएगा तो हमने लगे हम देखा था खाली दो मिनट बाकी बाटे तो अपन सफर के बारे में तनि सुन बताओ और तोहर खातिर ये एगो चैलेंज है प्रताप जी जात होवन अब एगो हाँ प्लास्मा जैसे सकब सब बोले हो काहे कि कैसे
2: आली ऐसे
1: जल्दी
2: जल्दी
1: जल्दी जल्दी
2: जो भी जे भी आए माटी के मोल के संभाले तो वो तो हमने पर निर्भर नहीं करेला वो तो निर्णय वगैरह होला लेकिन हम एगो चीज का बोले कि हमने की संस्कृति में एगो चीज बोला गया बाकी शिष्य के चला गुरु के चला ओकर मान रखे के और ओकर से जस्ती आगे जाए के
1: जी।
2: तो इस प्रकार से हम बोलब कि देखा माटी के मोल जहाँ ले आल बा शुरुआत हो जहाँ

0: वाले आल बा नन के कर में बहुत बड़ा हाथ बा ई कोई नहीं सकी कर निकारे तब हमने के चला देखे कि जे भी माटी के मोल के अपन कंधा पर ले ओके चला और ज्यादा आगे ले जाके नयापन आने के ताकि बरकरार रही
1: चले रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग के कंधा पर चला
0: बिल्कुल
1: प्रताप जी तुम्हारा मुझे लाफ है
2: हाँ हम तो बहुत खुश हो जाम रेखा चाहे ना आगे लेके जाके और धन्यवाद इतना कॉम्प्लीमेंट सब कोई मिलते चला है ई बा और है जो प्रोग्राम आज की चर्चा माटी के मोल चाहेला और बढ़ते जाके काहे बढ़ते जाके एगो हमने नहीं बतली जा महिला महिला लोग अभी जाने जा हमने के जो दूगो जिक्र कलान हमने के अवसर हवन जा ग्रीष्मा जानकी पासार और दीमा बर्षा रेखा नौजवान नया पीढ़ी हवन जा उन लोग के हमने ई माटी के मोल में अन ली जा उ लोग ये प्रोग्राम आगे और भाई संजय तो बचाया कि बोले जहाँ हमने किस देश से है जहाँ जिस देश से गंगा बहती है और है देखा है माध्यम बा अभी है जो भोजपुरी बा है ये तो अभी सब कोई सुना था वजह हमने के जो भोजपुरी जो चीज बात करते है जहाँ ऐसा हमने भाषा अथी तू लोग भी अपना दे हम ही अपना दे रहे जा ताकि तू लोग यहाँ पहुँचा था जो जानकारी
0: और अपना प्रोग्राम देखे सीखे भी खाते
1: हमने हाई जा सीखते हाई जा
2: बस खूब देव आप कौन सी करब भोजपुरी के विषय
1: फिर से आइया तो आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी और भाई साहब बहुत धन्यवाद प्रणाम

0: स्टूडियो में आ गए थे, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। लावांछा में आज सुबह 7 बजे के करीब एक गंभीर सड़क दुर्घटना पेश आई। एक बस और एक लॉरी के बीच टक्कर हुई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार लॉरी चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन की इक्विटी को मर्क और एमएससी के लिए खोलने की योजना अब एक ठोस चरण में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री दफ्तर के साथ हुई बातचीत के बाद अगला कदम एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति होगा, जिसका मुख्य काम इस ऑपरेशन में शामिल संपत्तियों का मूल्यांकन करना होगा। प्रस्तावित ढांचे के तहत उचित जांच पड़ताल और सुप्रशासन नियमों का पालन करते हुए निजी साझेदारों को 40% तक की इक्विटी देने की योजना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नई व्यवस्था 2027 की शुरुआत तक लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही नए क्रेन्स की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। मॉरिशस में एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अनुसार मई और जुलाई महीनों के बीच इकट्ठा किए गए फलों और सब्जियों के 150 सैंपल्स में से लगभग 30% में ऐसे कीटनाशक पाए गए हैं जिनकी उस खास फसल के लिए सलाह नहीं दी गई थी। साथ ही निगरानी मजबूत करने के लिए जल्द ही 4 नए नियम लागू किए जाएंगे। अधिकतम अवशेष सीमा, स्थानीय और आयातित उपज की सैंपलिंग, कीटनाशकों का मिश्रण और उनका इस्तेमाल तथा कृषकों का प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार प्रथम नियम खासतौर पर इसलिए लागू किया जाएगा ताकि अधिकतम अवशेष सीमा से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, बरतानी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने कल पश्चिमी यूके में एक एयरबेस के पास 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाने का शक किया जा रहा है। ये लोग 3 गाड़ियों में एयरबेस की तरफ जा रहे थे जिनमें विस्फोटक पाए जा रहे थे। इस एयरबेस का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जाता है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 13 असिलियम गली बौखली बोबासा में, नंबर 13 असिलियम बौखली बोबासा में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जानेगी लक्ष्मण पैदाशी नाम कतारी, जो राधा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे के मकान नंबर 13 असिलियम गली बौखली बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौलव्य की श्मशान भूमि ले जाए।

0: जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM मारीजानी रोजबेल में 64 साल के 64 years old श्री रमेश मुनिया जो उत्तम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM रॉयल रोड पेची पॉइंट ओपीमा में 84 साल की 84 years old श्रीमती सनमति बंधु पैदाशी नाम बिमल जो धनपति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री शिव बंधु के मकान रॉयल रोड पेची पॉइंट ओपीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ओपीमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 3 PM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.MU. ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति धारा, भक्ति की धारा बहने जा रही है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए श्रोताओं, कहते हैं कि भक्ति वह धारा है जो मन को धीरे धीरे शांति की ओर ले जाती है। जब जीवन में उलझने बढ़ जाए तब प्रभु का नाम मन को सहारा देता है। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, भगवान गणेश जी का नाम लेकर।
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

जी श्रोताओ, 10:11 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज है सोमवार, सोमवार का दिन समर्पित है भगवान शिव को और आपको पता है बहुत ही श्रद्धापूर्वक आज का दिन जो है बहुत सारे श्रोतागण जो है भक्तगण जो है शिव जी को पूछते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव जो जब हम उसको पूछते हैं, महादेव का स्मरण मन को जो है स्थिरता देता है और हमें ये भी सीख जो है मिलने को मिलता है कि कठिन समय में भी हमें धैर्य रखना होता है, श्रद्धा से पार जो है हम विजय जो है पा सकते हैं, कठिनाइयों का पार कर सकते हैं। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है, भक्ति गान जो है भगवान शिव जी पर आधारित आपके लिए।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। आइए मानस मंथन कार्यक्रम हम सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम जो है आप डॉक्टर वीरू अरुण जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनू अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 263 के नीचे की चौपाइयाँ मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोहा 263 के नीचे की चौपाइयाँ। प्रसंग आपको मालूम है कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, सभी अत्यधिक प्रसन्न हैं, राजा जनक जी की चिंता दूर होती है, माँ सुनैना का भय, उनकी दुश्चिंता दूर होती है, सीता जी की प्रसन्नता का तो पूछना ही क्या, गुरु विश्वामित्र परम प्रसन्न हैं कि उन्होंने श्री राम पर इतना विश्वास किया और उनका वो विश्वास आज फलीभूत हुआ। इसी तरह से सबके मन में प्रसन्नता है, जिसका तुलसीदास जी ने एक एक करके बहुत ही सजीव, बहुत ही मनोहारी वर्णन किया। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। धनुष टूट गया, अब उसके बाद किसकी प्रतीक्षा है कि सीता जी जयमाल पहनाए राम जी को और इस तरह से ये विवाह संपन्न हो। इसलिए पहले तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी को मानो सुध ही नहीं है कि क्या हो गया। और धीरे धीरे जब सबको समझ में आता है तब ऋषि शतानंद जी, जो राजा जनक जी के गुरु हैं, जो उनके सारे इस प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों को देखा करते थे, उन्होंने सीता जी से कहा कि अब जाओ और जाकर के जयमाल श्री राम को पहनाओ। तो सखी न मध्य सियसोहति कैसे, छबिगन मध्य महा छबि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही चाई। जब सीता जी गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो अकेली नहीं हैं, उनकी सखियां उनके साथ हैं, मंगल गीत गा रही हैं और धीरे धीरे मंद गति से सीता जी राम जी की ओर बढ़ रही हैं। चारों ओर सखियां हैं और बीच में सीता जी हैं। तुलसीदास जी सीता जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं, सखी न मध्य सिंह सोहति कैसे, छबिगन मध्य महा छबि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुंदर दिखाई दे रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महा छवि हो। जैसे हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे तारे हैं चारों ओर और बीच में चंद्रमा, तो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सबसे अलग, सबसे सुंदर, सबसे चित्ताकर्षक दिखाई देता है, बिल्कुल उसी प्रकार सीता जी हैं। घिरी हुई हैं सखियों से, लेकिन सारी सखियां मानो तारों की तरह हैं और सीता जी चंद्रमा की तरह हैं। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। कर कमल में सुंदर जयमाल है, उनके हाथ मानो कमल की तरह हैं, उनके कर कमलों में जयमाला है, यानी वह माला जिसे उन्हें श्री राम को पहनाना है, उनके हाथ में वो जयमाला है और जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। यानी ये जो विजय है, जो श्री राम ने धनुष तोड़ा और सीता जी को श्री राम

वर रूप में प्राप्त हो रहे हैं, ये मानो क्या है, एक विश्व विजय की तरह है। मान लो सीता जी ने संसार को जीत लिया है श्री राम को पाकर, इतनी प्रसन्नता है, इतना शुभ अवसर है। और तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काहू। बोल रहे हैं कि तन सकोच, सीता जी के शरीर में संकोच है लेकिन मन में उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र वरे की। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। कितना सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं कि सीता जी के शरीर में संकोच है। आइए इसे समझें। इतने पिताजी हैं वहाँ, गुरु हैं, एक से एक ऋषि मुनि हैं, बड़े लोग बैठे हैं, और सबके बीच में सीता जी जयमाल पहनाने श्री राम को जा रही हैं। मन में तो परम प्रसन्नता है, परम उत्साह है। उन्हें लग रहा होगा कि कब वो जाकर जयमाला पहना दें। लेकिन जो समाज की बड़ों की मर्यादा है, उस मर्यादा को उनका शरीर अभिव्यक्त कर रहा है। यानी वो चाहती तो तेज तेज कदमों से जा सकती थी, क्योंकि वे तो अधीर थी, वे तो चाहती थी कि जल्दी से धनुष टूटे और वे जयमाल पहनाएं और उनका विवाह राम जी से हो जाए। कब से उनकी यही मनोकामना थी। लेकिन फिर भी चूंकि सब लोग बैठे हैं, इसलिए सीता जी के शरीर में संकोच है, यानी संकुचित होकर के चल रही हैं, लज्जा के भाव से चल रही हैं, बड़ों का सम्मान करते हुए चल रही हैं, बड़ों की मर्यादा का पालन करते हुए चल रही हैं, जबकि मन में परम उत्साह है, यानी परम प्रसन्नता है। परम उत्साह का मतलब चाहती हैं कि जल्दी से जाके माला पहना दें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वे अपने पग उठा रही हैं। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काहू। उनके मन में जो ये प्रेम है वो अत्यंत गूढ़ है, छुपा हुआ प्रेम है, क्योंकि सीता जी ने कभी अपने प्रेम के बारे में किसी को बताया नहीं था। तो उनका ये गुप्त प्रेम किसी को नहीं जान पड़ रहा। कोई नहीं जानता है कि सीता जी ने मन ही मन राम जी को प्रेम किया है, मन ही मन राम जी को पाने के लिए वे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। किसी को नहीं पता है, सबको लग रहा है कि बस धनुष टूटा, सीता जी को आज्ञा हुई, वो बस माला पहनाने जा रही हैं, क्योंकि जो मन के भाव हैं वो केवल मन जानता है। और जाई समीप राम छवि देखी, और अब वो धीरे धीरे राम जी के निकट पहुंचती हैं। देखा था राम जी को, लेकिन कैसे देखा था, दूर से देखा था, लता मंडप में देखा था। और जब राम जी देख रहे थे तब सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, यानी दोनों ने एक साथ एक दूसरे को नहीं देखा था और क्षण मात्र के लिए देखा था। इसलिए अब निकट जाके जब सीता जी श्री राम जी की शोभा को देख रही हैं, तो कैसी उनकी स्थिति हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। मानो राजकुमारी एक चित्र बन गई हों। चित्र बन गई हों का मतलब, जैसे चित्र को जहां रख दिया जाए वो वहीं रहेगा। आपने जैसी रेखाएं खींच दी हैं, जैसा कलर आपने लगा दिया है, वो तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो चित्र है, उसमें थोड़ी कोई जान है कि वो चल देगा, वो कुछ परिवर्तन कर देगा। तो जैसे चित्र हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार सीता जी की स्थिति है। वो बस केवल राम जी को एकटक देख रही हैं, ये उनकी स्थिति है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझा कर कहा, जो उनकी सखी है, जो थोड़ा थोड़ा उनके मन का हाल जानती है, उसने देखा कि सीता जी तो एकटक केवल श्री राम को निहार रही हैं, ये तो तन मन भूल गई हैं, इनको तो अपनी होश नहीं है, सुधी नहीं है, ये भूल गई हैं कि ये जयमाल पहनाने आई हैं, ये तो चुपचाप खड़ी हैं और सब लोग देख रहे हैं। इसलिए सखी ने स्थिति को संभाला और उसने धीरे से

सीता जी से कहा कि जयमाला पहनाओ, जल्दी करो, माला राम जी के गले में पहनाओ। और ये सुन करके सीता जी जो चित्र की तरह अभी थीं, जिनको न पलक झपकने की होश थी, जो एकटक देख रही थीं, जब सखी ने उन्हें याद दिलाया कि वो क्यों यहाँ खड़ी हैं, तब उन्होंने जयमाल पहनाने के लिए हाथ उठाए, हाथों से माला उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम इतना अधिक है, उनका एक एक अंग प्रेम में इस तरह भरा हुआ है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पहिराई न जाए। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है मानो कि वो अपने हाथों को उठाएं और माला राम जी के गले में पहना दें। तो प्रेम के विवश होने से माला पहनाई नहीं जा रही है। सोहत जनुजुग जलज सनाला, ससी ही सभीत देत जय माला, गावही छवि अवलोक सहेली, सी जय माल राम उर मेली। सोहत जनुजुग जलज सनाला, उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी, तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। यहाँ ये जो एक चौपाई है, इसे समझने की आवश्यकता है। आइए जरा इस पर विचार करें। सोहत जनुजुग जलज सनाला, ससी ही सभीत देत जयमाला। उनके हाथ, सीता जी के हाथों के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो सीता जी के हाथ, क्योंकि अब सारा फोकस, सारा सबका ध्यान कहाँ है? सीता जी के हाथों पर। क्यों सीता जी के हाथों पर? क्योंकि उनके हाथ में जयमाल है और जयमाल को राम जी के गले में डालना है। तो सब लोग सीता जी के हाथों को ही देख रहे हैं कि कैसे हाथ उठा रही हैं, कैसे राम जी के गले तक उनका हाथ जा रहा है, कैसे माला पहना रही है। तो सब लोग सीता जी के हाथों को ही देख रहे हैं। तो उन हाथों का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि उनके हाथ बहुत सुंदर हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि कैसे हैं, कमल के समान उनके हाथ हैं, और यहाँ पर उसी बात को विस्तार से समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके हाथ यानी सीता जी के हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल। पहले इसको समझते हैं, यानी उनके ये जो दो हाथ हैं, यानी जो हथेली और पांचों उंगलियां, ये वाला यानी हाथ, तो ये जो हाथ हैं उनके दोनों, वो किसकी तरह हैं? कमल की तरह। मान लो दो कमल के फूल, जो खिले हुए फूल हैं, वो उनके दोनों हाथ हैं, क्योंकि दोनों हाथ यूँ खुले हैं, उसमें माला है। तो उनके जो दोनों हाथ हैं वो कमल की तरह हैं। और ये उनकी भुजाएं वो कैसी हैं? तो कह रहे हैं वो डंडियों सहित, मान लो दो कमल, यानी कमल का जो फूल है वो आपने देखा होगा, पतली पतली सी डंडियां होती हैं, उस नाल पर वो कमल का फूल होता है। तो हाथ कमल का फूल और जो उनकी बाहें हैं वो मानो कमल की दो डंडियां हैं और हाथ कमल के फूल हैं। अच्छा, और अब बोल रहे हैं कि चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हैं। करना क्या है? उनको जयमाला पहनानी है। किसको पहनानी है? राम जी को। लेकिन तुलसीदास जी राम जी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं चंद्रमा को। कौन है चंद्रमा? तो राम जी चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और कमल को क्या करना है? जयमाला देनी है। किसको? चंद्रमा को। अब आइए इसको समझे। थोड़ा कठिन है, हम कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि जो कमल का फूल होता है, ये सुबह सूर्य की किरणों के साथ खिलता है और शाम होते ही, संध्या काल होते ही, उसकी पंखुड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं, यानी बंद हो जाती हैं पंखुड़ियाँ। जब प्रातः सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब वे पंखुड़ियाँ फिर से खिलती हैं। और चूंकि राम जी को यहाँ सूर्य की तरह नहीं कहा है, यदि सूर्य कहते तब तो ये कहते तुलसीदास जी कि तुरंत सीता जी के जो हाथ हैं, जो कमल की

तरह है वो पंखुड़ियाँ मान लो खुल रही हैं और तुरंत उन्होंने माला पहना दी, क्योंकि सूर्य और जो कमल का संबंध है उसके कारण। लेकिन यहाँ कुछ बात दूसरी तरह से कही जा रही है। राम जी हैं चंद्रमा की तरह और सीता जी के हाथ हैं कमल की तरह। अब कमल को माला पहनानी है किसको? चंद्रमा को। तो एक भय है, एक संकोच है कि कमल कैसे चंद्रमा को वो माला पहनाए, ये तुलसीदास जी बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ और तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि डरते हुए जयमाला दे रही हैं, मतलब दे रही हैं लेकिन एक डर है। आइए इसे समझें, क्यों कहा कि डर है? सीता जी को क्या डर है? सीता जी के मन में तो उत्साह है। फिर क्यों लिखा तुलसीदास जी ने कि ससी ही सभीत, सभीत मैंने भय के साथ, तो इसको समझते हैं। यहाँ जो भीत बोल रहे हैं इसका अर्थ वास्तव में भय नहीं है, ये वास्तव में प्रेम जनित संकोच और लज्जा का भाव है। सीता जी के हाथ जयमाला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनका मन राम को पति रूप में स्वीकार कर चुका है, लेकिन वे एक स्त्री हैं इसलिए वो जो लज्जा और प्रेम उनके मन में है उसके कारण संकोच है। इसलिए तुलसीदास जी ने कल्पना की है कि जैसे कमल चंद्रमा को माला पहनाने जा रहे हों पर चंद्रमा की प्रभा और महिमा के सामने संकोच कर रहे हों, वही स्थिति सीता जी की है। इसका एक और अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कमल, जैसा मैंने कहा कि सूर्य के प्रकाश से खिलता है, जबकि चंद्रमा के सामने कमल का स्वभाव अलग माना जाता है। तुलसीदास जी ने इस विरोधाभास को भी इस भाव में बदल दिया है, मानो कमल यानी जो सीता जी के हाथ हैं उस चंद्रमा यानी राम जी के सामने आ गए हैं जिनकी दिव्यता के कारण वे कमल संकुचित हो रहे हैं। कहने का अर्थ कि डरते हुए शब्द में श्री राम की महानता और सीता जी की विनम्र प्रेम भावना दोनों ही व्यक्त हो रहे हैं। ये भय नहीं बल्कि वही भाव है जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेम में संकोच या श्रद्धा मिश्रित लज्जा। तो उस लज्जा भाव के कारण मानो सीता जी तुरंत जयमाल नहीं पहना पा रही हैं और इस छवि को देखकर सखियां प्रेम मुग्ध हो जाती हैं और गाने लगती हैं। और तब सीता जी ने सिय जयमाल राम उर मेली, और तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। रघुबर उर जयमाल देख ही देव बरिसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। जब सीता जी ने जयमाल पहना दी तो वो माला कहाँ है? श्री राम जी के वक्षस्थल पर। तो उनके हृदय पर जयमाला को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे कि आज वो शुभ अवसर आया जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। आज सीता जी और राम जी का विवाह हो रहा है। इस हर्ष के कारण देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे हैं और जो राजा लोग बहुत आशा लेकर के, अहंकार और अभिमान लेकर के आए थे कि हम ही सीता जी से विवाह करेंगे, हम ही धनुष उठाएंगे, ऐसे राजा लोग सकुचा गए, मानो उनकी आशा पर पानी फिर गया। वे लज्जित हो रहे हैं, सकुचा रहे हैं कि जाके अपने राज्य में हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे कि गए थे हम स्वयंवर में और हार करके आ गए। तो उनकी स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी किस प्रकार कर रहे हैं? जैसे सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। दो प्रकार के फूल हैं, एक सूर्य को देख करके खिलने वाला और एक चंद्रमा को देख करके खिलने वाला। एक सूर्य को देख के मुरझाने वाला, एक चंद्रमा को देखकर मुरझाने वाला। सूर्य को देखकर कौन खिलता है? कमल। मुरझाता कौन है?

कुमुद का फूल। तो इसलिए श्री राम जी की शोभा को देखकर, श्री राम जी कैसे हैं, मानो सूर्य की तरह है, तेजस्वी आभा मंडल उनका इतना दिव्य है, मानो सूर्य, प्रखर सूर्य चमक रहा हो। तो बोल रहे हैं जैसे सूर्य को देखकर कुमुद मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही जो राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए थे इस आशा से कि वे सीता जी से विवाह करेंगे, वे सब कुमुद के फूल की तरह से मुरझा गए हैं, संकुचित हो गए हैं, उनकी आशा पर पानी फिर गया है। और श्रोताओं, आज इतने सुंदर प्रसंग के साथ ही हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, एक भजन सुनते हैं, अपने मन की प्रसन्नता को हम भी अभिव्यक्त करते हैं, और उसी के साथ आपसे मैं अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।

चलिए श्रोताओं, भक्तिधारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस समय हम प्रसारित करेंगे चैन भक्ति गीत भगवान शिव जी पर आधारित। आपको पता है भगवान शिव जो है केवल एक देवता नहीं बल्कि शांति का, करुणा का, त्याग का और आत्मज्ञान की प्रतीक माने जाते हैं। उनका शांत स्वरूप हमें ये भी जो है सीख देते हैं कि जीवन में कितनी भी हलचल हो, मन को के भीतर जो है हमें शांति बनाए रखनी चाहिए।

मधुर जटी शिव महादेव भारत में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। भगवती श्रुति द्वादशांगों वै पुरुषः की सराहना करती है।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। वैसे इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं और हम आपसे यही कहेंगे कि हर हर महादेव केवल जयकारा नहीं बल्कि भीतर की शक्ति और विश्वास को जगाने का भाव है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। वैसे कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे। तो ये कार्यक्रम सायदा की पेशकश में आप सुन सकेंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: अदिति आगे स्टूडियो में एक बार फिर से मिलते हैं उनसे, जानते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस कमर्शियल बैंक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत। कीनिया के हाईकोर्ट ने जेड पेट्रोलियम को आदेश दिया है कि वो मॉरिशस के इस बैंक को 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 304 मिलियन रुपए चुकाए। इसमें ब्याज और कानूनी खर्च शामिल नहीं है। ये वित्तीय विवाद 2015 के आखिर का है, जब एमसीबी को जेड पेट्रोलियम के लिए फाइनेंसिंग सुरक्षित करने वाले 5 लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान करना पड़ा था। कंपनी द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद मॉरिशस के इस बैंक ने अपने पैसे वसूलने के लिए 2016 में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट रैंड बैंक का बकाया चुकाया। अपने बचाव में जेड पेट्रोलियम ने यह तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की कि उसके मध्यस्थ इंपीरियल बैंक को रिसीवरशिप में डाल दिया गया था। कीनिया के जजों ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि मध्यस्थ की मुश्किलों से जेड पेट्रोलियम को एमसीबी के प्रति अपने कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। बैंक के लिए एकमात्र नकारात्मक बात यह रही कि औपचारिक नोटिस भेजने में प्रक्रियात्मक गलती के कारण 3 व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ उसके दावों को खारिज कर दिया गया। फिर भी जेड पेट्रोलियम पूरे कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं और उसे मॉरिशस कमर्शियल बैंक का कानूनी खर्च भी उठाना पड़ेगा। एजिंग पॉपुलेशन, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर पुसीला माथुगा ताको के अनुसार ये 4 बड़े बदलाव हैं जिसके लिए मॉरिशस को तैयारी करनी होगी। सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 के अंतर्गत अपने वक्तव्य में उन्होंने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता और साथ ही देश को ऐसे बदलावों के लिए तैयार करने की बात पर बल दिया जिनका प्रभाव रोजगार, विकास और पब्लिक फंड पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में शनिवार शाम को एक बार के करीब 8 हमलावरों ने अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस हमले के कुछ ही घंटे बाद कल सुबह केप टाउन में किए गए इसी प्रकार के एक और हमले में 11 लोगों ने जान गंवाई। इसके पीछे आपराधिक गुटों के बीच झगड़े का कारण माना जाता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 17 रॉयल रोड बोबासे में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड जनाब गुलाम अहमद कुदाबकस, जो अहमद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और UBS के पूर्व शेफ्टिगो थे, इनकी इनका इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज शाम चार बजे उनके मकान नंबर 17 रॉयल रोड बोबासे से उठा के पहले नमाज़ जनाजा के लिए नूरे नवाबी मस्जिद में जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सैमोतमोश का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुडे 4 PM। माघी जानी रोजबेल में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री रमेश मुनिया, जो उत्तम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता मुनिया के मकान माघीजानी रोजवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
2: शम्मे फरोजा.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है बख्शने वाला है।

और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं, मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है।

और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल-ए-तारीफ है।

और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मर कर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है।

0: और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बर्तरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख़र कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ।
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था, उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था, और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहें। ए आले दाऊद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं।

फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते।

अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहां तुम्हारे रहने को यह पाकीजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं।

और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है।

कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के हां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से इस्तेराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि

कौन रिस्क देता है? कहो कि अल्लाह। और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में। कह दो कि न हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसिश होगी।

कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिब इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

0: और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। हमारा मालिक परवरदिगार, हमारा रब, हमें सब कुछ अपने खालिक के सुपुर्द करना सीखें। हर चीज़, हर फैसले को जब हम जानमाज पर बैठें तो इस यकीन के साथ कि भारी दिल को खालिक करके हर चीज़ परवरदिगार को सौंप कर उठना है, क्योंकि माजी में जो हुआ उसकी रज़ा से हुआ, जो कुछ हाल में हो रहा है उसकी रज़ा से हो रहा है, और जो मुस्तकबिल में होगा उसकी मर्ज़ी से होगा। नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान कर दें, बस उसके फ़ैसलों पर इत्मीनान से चलते रहें, इस यकीन के साथ कि वो हमेशा बेहतर

0: जन्नत की इन दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह ताला का दीदार और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। ऐ पाक परवरदिगार हमें दोनों नसीब फरमा। मौज़े सामईन, अब हर पीर की तरह आप समात फरमाएंगे मुबल्लिग़े दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم। एक बुजुर्ग जंगल में सफर कर रहे थे कि रात हो गई। हर तरफ खौफनाक दरिंदे दनदनाते फिर रहे थे। इन्हें खौफ महसूस हुआ कि अचानक ये हदीस पाक याद आ गई कि जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और एक जगह सो गए। सारी रात सुकून से गुजारी और किसी दरिंदे ने इनको छुआ तक नहीं। फिर इसी हदीस के मुताल्लिक उन्होंने फरमाया, मैंने इसीलिए दुरूद शरीफ पढ़ा था क्योंकि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और जब मुझे अल्लाह पाक की 10 रहमतें घेर लेंगी तो भला किस दरिंदे की मजाल है कि वो मेरी तरफ आँख उठा कर भी देखे। सआदतुद्दारैन पेज नंबर 156, सआदतुद्दारैन पेज नंबर 152।

में बड़ी बुरी खसलत यह है कि इसमें शहवत ज़्यादा होती है। कबूतर में बुरी सिफत यह है कि इसको अपनी बुलंद परवाजी पर बड़ा नाज होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन चारों परिंदों को ज़बह किया तो उनके दिल को करार आ गया। आज अगर कोई मुसलमान इन चारों बुरी खसलतों को ज़बह कर दे, यानी अगर किसी में हुस्न व जमाल पाया जाता है तो वो उसे खूब निखारता संवारता और इस पर नाज करता है, तो वो अपने हुस्न व जमाल वाले घमंड को ख़त्म कर दे। अगर किसी में बेजा शहवत पाई जाती हो तो वो इसे पर कंट्रोल हासिल कर ले। अगर कोई हिरस व तमा का शिकार है, वो दुनिया की दौलत पर फरेफ्ता है, तो वो दुनिया की लालच को दिल से निकाल दे। अगर किसी के दिल में ऊँच

को ख़त्म कर दें। अगर किसी में बेजा शहवत पाई जाती हो तो वो इसे पर कंट्रोल हासिल कर लें। अगर कोई हिरसो तमा का शिकार है, वो दुनिया की दौलत पर फरेफ्ता है, तो वो दुनिया की लालच को दिल से निकाल दे। अगर किसी के दिल में ऊँचियत आमोज़ वाक़ा सुनते हैं, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने नकल करते हैं, हज़रत ताऊस रहमतुल्लाहि ताला ने एक शख्स को अकड़ कर चलते हुए देखा तो फरमाए, ये चाल उस शख्स की नहीं जो ये जानता है कि उसके पेट में क्या है, यानी उसके पेट में पाखाना और गंद भरा हुआ है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर कोई अपने हुस्न व जमाल पर तकब्बुर करता है तो उसे चाहिए कि अपनी तख्लीक पर गौर करें, उस पर वाज़े हो जाएगा कि उसकी तख्लीक खून और नुतफे से हुई है। इस तरह गौर व फिक्र करने से इंशाल्लाह उसकी तकब्बुर जैसी बुरी खसलतें ख़त्म हो जाएंगी। आजकल हर एक अपनी बुलंद परवाज़ी यानी मनसब और ओहदे के पीछे दौड़ता नज़र आता है, और अगर किसी को बुलंद परवाज़ी यानी बड़ी कोई ओहदा या मनसब मिल जाए तो उसे बहुत घमंड होने लगता है। ऐसों को भी उन लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए जिनकी हलाकत का बाइस इनका ओहदा व मनसब बना। आइए ओहदे व मनसब पर तकब्बुर करने वालों का अंजाम मुलाहिज़ा कीजिए। जब फिरौन को ओहदा मिला तो वो भूल गया और खुदाई का दावा कर बैठा। 300 साल तक अयाशी करता रहा, लेकिन आखिरकार इसका अंजाम ये हुआ कि वो दरियाए नील में बड़ी ज़िल्लत के साथ डूब कर मरा। इसी तरह जब नमरूद को ओहदा मिला तो वो भी खुदा होने का दावा कर बैठा, बिलाखिर उसे एक मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया गया। याद रखिए, ओहदा वही अच्छा है जो इस्लाम की महब्बत के साथ हो, जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अली रिदवान के पास था, और वो इसे दीन इस्लाम की तबलीग और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हमारे बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम के पास भी ओहदा था, और ऐसा ओहदा कि दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आज भी वो अपने उर्स के मौके पर लाखों लोगों को जमा कर लेते हैं, जबकि कोई बड़े से बड़ा सियासी लीडर इतने लोगों को जमा नहीं कर पाता। आज भी रोज़ाना हज़ारों लोग उनके मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों पर उनकी हुकूमत जारी है। याद रहे, आजकल दुनियावी कानून के एतबार से अगर किसी को कोई ओहदा या मनसब मिलता है तो वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है, जबकि औलिया किराम की हुकूमत सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी जारी और जारी रहेगी। अगर किसी पर ओहदे की धुन सवार है और मकसद सिर्फ दुनिया बनाना या दौलत कमाना है तो यकीनन ये उसकी बड़ी सिफ्त बुरी तो यकीनन ये उसकी बुरी सिफ्त है। उसे चाहिए कि अपनी इस बुलंद परवाज़ी की चाहत को ख़त्म कर दे ताकि इसे दिली सुकून हासिल हो। हाँ, अगर वाकई कोई दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ओहदा या मनसब पाने की कोशिश करता है तो वो लायक़ तहसीन है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में शहवत जैसी बुरी खसलत को काबू में रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये बड़े बड़ों को चार खाने चित कर देती है और बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है। तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जो लोग बड़े बुज़ुर्ग और वली माने जाते थे, उनके साथ शहवत ने वो गुल खिलाए कि उनकी विलायतें छीन ली गईं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आइए एक शख्स का इबरत नाक दास्तान मुलाहिज़ा कीजिए, जो शहवत के सबब अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठा। चुनाचे बनी इसराइल में एक आबिद था जिसकी दुआएं रद्द नहीं की जाती थीं। लोग अपने मरीज़ों को उसके पास लाते, वो दुआ करता तो सेहतियाब हो जाते। एक मरतबा इलाज के लिए बादशाह की लड़की को इसके पास छोड़ दिया गया। वो इसका इलाज करता रहा, यहाँ तक कि शैतान ने उसके दिल में बुराई डाली और ना होने का हो गया, और उसने खौफ की वजह से लड़की को कत्ल करके दफन कर दिया। शैतान इंसानी शक्ल में बादशाह के पास गया और इसे इस वाक़े से आगाह करके कब्र के बारे में भी बता दिया। चुनाचे बादशाह ने ज़मीन खुदवाई तो लाश बरामद हो गई। अब जब सजाए के तौर पर इस आबिद को सूली पर लटकाया जा रहा था तो शैतान इसके पास आया और कहने लगा, मैं तुझे इससे निजात दिला सकता हूँ, बशर्त ये कि तू मुझे सजदा कर। आबिद ने शैतान को सजदा किया तो शैतान खिलखिला कर हंसा और बोला, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर इस बदनसीब को आबिद को सूली पर लटका दिया गया। गौर कीजिए, शहवत को काबू में ना रखने की वजह से बदनसीब आबिद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठा। बदकिस्मती से आजकल हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर कोई इस दौर में गुनाह से बचा हुआ है तो शायद इसलिए कि इसे गुनाह करने का मौका नहीं मिला। वो इस बात से डरता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, वरना अगर बिल्कुल खुली छूट मिल जाए तो शायद ही कोई गुनाह से रुक पाए। वैसे जिस तरह आजकल गली कूचों में खुलेआम नाच गानों के फंक्शन होते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गुनाहों की खुली छूट मिल चुकी है। कारों में सफ़र करने वाले गाने सुनकर मस्ती में
हिल रहे होते हैं और स्कूटर और साइकिल चलाने वाले गानों की आवाज़ सुनकर अपने सरों को हिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नाजुक दौर आ गया।

0: किया है कि लड़के और लड़कियां मिल कर नाचते हैं और नाच गानों के ऐसे ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं कि इनमें जो कुछ होता है ऐसे अल्फाज में इसे अल्फाज में बयान करना मुनासिब नहीं। अल्लाह पाक हमारे हाल इज़ार पर रहम फरमाए। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने ये वाक़ियात सुने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपने वाक़िया सुना कि उन्होंने चार जानवरों को लिया, उन जानवरों में जो बुरी खसलत है अगर कोई अपने अंदर उन बुरी खसलतों को निकाल दे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अब उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा हो जाएंगी, वो अल्लाह पाक का नेक बंदा बन जाएगा, वो अल्लाह पाक का मकबूल बन जाएगा, यूँ समझ लो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। वो चार चीज़ें क्या थीं? हिर्स थी उसके अंदर, उसके अंदर चार चीज़ें ये थीं कि उसके अंदर शहवत थी, उसके अंदर ओहदा पाने की थी, उसके अंदर हुस्न व जमाल के लिए गोनुआ यानी गुरूर करने वाली चीज़ें थीं। अल्लाह पाक हमें इन सब से बचाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मौज़ सामईन औलियाए कराम की तालीमात में अल्लाह ताला के बंदों के साथ हुस्ने सलूक को बड़ी अहमियत हासिल है। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से भी हमें यही दर्स मिलता है कि इबादत के साथ साथ इंसान का इखलाक अच्छा हो, दिल में आजिज़ी हो और ज़रूरतमंदों के लिए हमदर्दी हो।
2: एक

आइए समात फरमाइए ये चंद सुनहरी बातें। इंसान की असल पहचान उसका किरदार है, ना कि उसकी दौलत। जिसने तुम्हें खुशी में याद रखा वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ़ ना दे। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। अगर तुम किसी आदमी को खामोशी को तूल देते हो और लोगों से दूर रहते हो तो देखो उसके करीब हो जाओ, क्योंकि उसे हिकमत अता

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। तू लम्हे भर के लिए हमें हमारे नफ्स के हवाले ना कर और हमारे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा।

अशी कुठं

माझ्या काळजाला लागली कळ पाहणी थेंब थेंब गळ हा

गोविंद नाम संगीतनम गोविंद गोविंद अया इंदिरन अवर्कल वैयापुरी अवर्कल आत्य उरेक्कु एमद

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: आपकी पसंद. घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं. ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है. मीडियम वेवस 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है. मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आपके साथ, आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक. और ये है आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां पर अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश आप हम तक पहुंचा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से. नंबर है 402-8085 और अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो 5251-7005 पर. तो चलिए, देर किस बात की है, आज के सफर की शुरुआत हम करते हैं 90s के कुछ मजेदार गीतों के साथ. और आज का ये पहला गाना है फिल्म करण अर्जुन से लिया हुआ. आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की.

फिल्म है सरफरोश, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज, और ये भी 90s के जमाने का गाना, और ये जाएगा गिरीश हलोल के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और उन्होंने इस गीत की फरमाइश की है सभी हलोल परिवार के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और चलिए यहाँ पर राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को बस एक प्यारी सी याद ताज़ा करते हुए ये गाना उन्होंने मांगा है, फिल्म विरासत से लिया हुआ। और जी हाँ, उनका नाम है रेशमा। तो चलिए रेशमा, अगर आप सुन रही हैं तो ये प्यारा सा गीत आपके पति की ओर से आपके नाम है।

फिल्म है संबंध, आवाजें हैं हेमंत कुमार और आशा भोसले की, 60s के जमाने का ये गाना, और ये गाना जाएगा अनीता जी के नाम पर। अनीता जी त्रियोले से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, बेटी अंजू, दामाद है वेद, बेटा है सचिन, बहू है पूजा, साथ है केयांश और सिया, उनके दो नाती पोते, और सभी परिवार के लिए ये गाना है फिल्म संबंध से लिया हुआ।

तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को बेहतरीन गीतों के साथ सजाते हैं। और बिल्कुल ये जो अगला गाना है जाएगा शकुंतला जी के लिए, जो मोताइलोंग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी ननंद है गायत्री, बेटा अजय, बेटी है सुनीता अनवलफोंस से, फिल्म है पगला कहीं का। और इस गीत को हम चलाएंगे लता जी के सभी फैंस के लिए, आज लता जी का जन्मदिन है और बिल्कुल 92 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में कुछ लता जी के गीतों को भी हम श्रद्धांजलि के रूप में चलाते हैं और आपको याद दिलाते चले। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ, समाचार के बाद ये सफर जारी रखा जाएगा।

0: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सपेर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। देश के पूर्वी प्रांत लावांचुआ में आज सुबह एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। एक एनटीसी बस और एक लौड़ी के बीच हुई टक्कर में 70 वर्षीय लौड़ी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे, जिनमें से 6 अभी भी फ्लाक के साज अस्पताल में भर्ती हैं। उधर तामागे में दक्षिण अफ्रीका मूल की 58 वर्षीय महिला तब मारी गई जब उसका 4x4 रास्ते से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उसकी जान बच नहीं पाई। पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसके लीवर में गंभीर चोट लगी थी। एक और हादसा, देश के दक्षिण में स्थित पोना चुगैल की चट्टानों पर 29 वर्षीय भारतीय श्रमिक सेल्फी लेने की कोशिश करते समय अपना संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। लहरें उसे बहा कर ले गई। वो एक रेस्टोरेंट में

0: वेटर के रूप में कार्यरत था। नेशनल कोस्ट गार्ड के गोताखोरों और पुलिस के एक हेलीकॉप्टर सहित बड़े पैमाने पर बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। खराब मौसम के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। खोज अभियान आज सुबह फिर से शुरू किया गया। 9 से 20 नवंबर तक तुर्की के अंटाल्या में लगने वाले कप 31 सम्मेलन में हिंद महासागर के द्वीप जलवायु से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज सोमवार को कोडाउट सेंटर में एक क्षेत्रीय संवाद शुरू किया गया। सरकारों, नागरिक समाज और युवाओं के लगभग 60 प्रतिनिधि 2 दिनों तक विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं ताकि साझा प्राथमिकताएं तय की जा सके। आज सुबह एनटीसी की कई बस लाइनों में उठल पुथल देखी गई क्योंकि कई कर्मचारी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से कई बसें चल नहीं पाई। इसकी वजह नया रोस्टर है, जिसका ट्रेड यूनियन ने ये कहकर विरोध किया कि काम के घंटे बढ़ाए गए हैं जबकि अदायगी कम हुई है। और विदेशी स्तर पर फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करते वक्त एक हादसा पेश आया। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में डूब गई, जिससे 3 प्रवासियों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। आंखें काटों ओकुले में 51 साल के 51-year-old श्री शास्त्री गंगाना जो बुडो से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगाना के मकान आंखें काटों ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए पैनमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
1: 819 kilohertz. This is Radio Marxis. आपकी पसंद।
2: घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 3:04 हो चुके हैं। एक बार फिर रेडियो मॉरिशस की लहरों पर हम आ पहुंचे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। मैं हूं रत्ना, आपका साथ दे रही हूं और आशा करती हूं कि आज के सफर को भी आप बहुत प्यार से सुनेंगे। तो चलिए मज़ेदार गीतों का ये सफ़र है जारी रखते हैं। और यहाँ पर सिमला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेलगोस से। बहनें हैं रूमा, आरती, इंदिरा, भाई है राकेश और धीरज, बेटा नमलेश और बेटी कीर्तिना। वारिस फिल्म का ये गाना आपके नाम।

प्यार। चलिए ये प्यारा सा गाना हम ढूंढ लाए हैं और शीला जी दीपिने से आप हमारा साथ दे रही हैं और आप चाहती हैं कि ये गाना उन सभी के नाम हम करें जो लोग उस जमाने के 50s के ज़माने के हैं। तो चलिए ये गाना सभी जो पुराने गीतों को सुनते हैं पुराने गानों को पसंद करते हैं उन सभी के लिए हम चलाना चाहेंगे। और आप चाहती हैं हम ये भी बताएं कि ये गाना गाया किसने है, तो ये गाना गाया है मुकेश साहब और लता जी ने, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का, लिरिसिस्ट थे गुलशन बावरा जी और इस फिल्म में नजर आए थे आजरा, सुरेश, दुर्गा खोटे, मीनू मुमताज, महेंद्र कुमार, इंदिरा, इंदिरा, असीत सेन और जमाल। आशा करते हैं ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं ये गाना। और वैसे ये गाना हम जरूर करना चाहेंगे आफेज आपके लिए भी, क्योंकि आप भी पुराने गानों को बेहद पसंद करती हैं। आप लावेनिया सैंपियर की रहने वाली हैं और आपकी प्यारी दोस्त सीता देवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए सीता देवी, अगर मैसेज आप तक पहुंच चुका है, आशा करते हैं ये गाना सुनेंगे, ये आपका नाम सुनेंगे तो आपको खुशी बिल्कुल मिलेगी।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद। और बहुत सारे लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं। उदय जी, आप रिवेजी पोस्ट के रहने वाले हैं और आपके खास दोस्त प्रेम रामचरण जी जो मॉरिशस आए हैं और उनकी प्यारी पत्नी माला जी का जन्मदिन है आज। माला जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और आपको हम कहेंगे बस आप जल्दी ठीक हो जाएं, स्पीडी रिकवरी आपको। और इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफ़र आपकी पसंद में, उदय जी ने आपके लिए बहुत सारी प्यार भरी विशेज़ मांगी हैं, तो चलिए आपको हम विश करते हैं। और आपकी प्यारी सासू माँ है गोबियों की रहने वाली, सिनोद परिवार, रामचरण परिवार जो है फोन जुसाक से, और बिल्कुल संगीता जी हैं, साथ ही साथ स्मृति, कीर्ति, नागेश, केयान और सभी परिवार की ओर से आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार। और यहाँ पर जन्मदिन बिल्कुल बहुत सारे लोग आज मना रहे हैं। माला सुमारू जी हमारे साथ हैं, उनकी प्यारी बहन सविता पदारत जो रहती हैं नवेल्दे कुवैत, 60 वर्ष की हो चुके हैं। चलिए सविता जी, आपको बहुत बहुत प्यार और बस आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगी, खुश रहेंगी और अपनों का प्यार आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। और साथ ही साथ है यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं मोहन जी, मोहन जदू जो है बालीसों के रहने वाले, उनकी प्यारी पत्नी विद्यावती और साथ ही साथ नाती आयुष भी अपना जन्मदिन मना रहा है। तो चलिए दादा पोते दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बेटी है पूनम, रेनू, प्रीति, बिंदिया, लक्ष्मी और दामाद जी है शिवानंद, साथ है सुभाष, सुदेश, यांतीश और सभी नाती नातिन की ओर से, पूरे परिवार की ओर से मोहन जी आपको और आयुष आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। हमारी ओर से भी आपके नाम करेंगे ये प्यारा सा गाना।

कई सारे लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो बिल्कुल आज का दिन बहुत खास रहे आपके लिए। अपनों का प्यार पाएं, अपनों का बस साथ पाएं, और इसी के साथ चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं। और इस अगले गीत को हम चलाने जा रहे हैं, ये है फिल्म आईएस महमूद इन गोवा, और इस फिल्म की फरमाइश, इस गीत की फरमाइश करते हैं रफ़िक मोहित जी, माफ़ कीजिएगा रफ़िक दौलत जी, जो प्लान मायों से साथ दे रहे हैं रफ़िक दौलत जी और उनकी प्यारी बेगम नूरजहां के लिए।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चले। और ये जो अगला गाना है ये है फिल्म करण अर्जुन से लिया हुआ गीत, और ये जाएगा खास ममा सीता दौलत के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। प्यारी ममा सीता को ढेर सारी विशेज आ रही हैं, उनके प्यारे बेटे राज, साथ है मनोज, सूरज, बेटियां हैं कविता, बबिता और प्रीता, बहुएं हैं बिंदु और शिमला, और उनके पोते हैं यूके से, साथ ही साथ उनकी ग्रैंड डॉटर, और खासकर सीताबाई दरमिया की ओर से उनको जाता है ये प्यारा सा गाना तोहफे के रूप में। तो चलिए सीता जी, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और बस आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का प्यार पाएं। ये प्यार का बंधन है आपके जिंदगी में, आपकी झोली में ये प्यार भरपूर मात्रा में ऊपर वाला दे।

चलिए बढ़ते हैं पुराने गीतों की ओर और ये जो गाना है फिल्म नमस्ते जी से लिया हुआ मुकेश जी, मुकेश साहब और लता जी की आवाज में, और ये गाना जाएगा गीता जी की पसंद पर जो इस वक्त मोह ताइलोंग से हमारा साथ दे रही हैं।

फिल्म है दोस्ती, गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। दिलीप जी कोंगोमा से इस गीत की फरमाइश करते हैं और ये गाना जाएगा उनकी प्यारी पत्नी सुनीता, कृष्णवी, योगेश, कविता, मनीषा, निशान, इंदिरा और सभी सुनने वालों के।

आपकी पसंद कार्यक्रम। और चलिए इसी के साथ 3:42 हो चुके हैं, अगली फरमाइश की ओर नजर दौड़ाते हैं। ये है मुकेश साहब, मुकेश मोहन साहब ओयता से, और दिव्यानी जी साथ दे रही हैं। और अगला गीत जो है बहुत ही बिल्कुल हट कर एक गीत उन्होंने हमें दिया है, तो चलिए कौन हो तुम फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपके नाम करेंगे।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और चलिए, बहुत कम समय रह गया है, जल्दी जल्दी इस अगली फरमाइश को लेते हैं। और ये है परदेसी बाबू से लिया हुआ गीत, और ये जाएगा बंधु परिवार के लिए जो इस वक्त रियोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खोना है, कुछ पाना है। और यहाँ पर साधना जी रिवेदिक खयोल से मैसेज करती हैं, आप अपने पति का जन्मदिन मना रहे हैं, पति हैं देवानंद, बेटा नीतीश, कुशल, करण, बेटियाँ हैं अनुषा और मनशा, दामाद है सतीश, बहू कविना संहिता, नाती नातिन है जिया, तेजल, गौरव, क्रियान और छोटा लड्डू गोपाल धस्वी, जीवन परिवार

पुराहू परिवार जो है रिवेदी खयोल से, साथ ही साथ मोडालबे यूनियन पार्क लाहौजा और दुबई से पापा देवानंद जीवन को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी खुशियां। चलिए सुदेवी जी भी हमारे साथ वाकवा से जुड़ी हुई हैं। बहन है ललिता कुशल त्रियोले से, दीदी सुनीता, देवीना, माला, बिंदु, मालेगा से है बबीता, राधा, ललिता, रामरतन, कुआरू और जीवलाल।

गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार का दिन बस धीरे धीरे करते हुए 4 बजे की ओर बढ़ रहा है और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में सभी लोगों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आप घर की ओर बिल्कुल संयम के साथ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए घर की ओर पहुंचे। बिल्कुल ये जो ट्रैफिक रूल्स है हमारी सुरक्षा के लिए।

बनाए गए हैं। और इसी के साथ फिल्म मुक्ति का ये गाना, और ये गाना है शफीक साहब की पसंद पर, सैंपियर से भी साथ दे रहे हैं और सभी रेडियो टीम के लिए उन्होंने ये गाने की फरमाइश की है। तो बस ये गाना मोहम्मद रफ़ीज़ साहब की आवाज़ में गाया हुआ गीत है। अमीना जी पोंफालें से आप भी साथ दे रही हैं, आपकी चार बहनें, दो भाई, सभी दोस्तों के नाम। वैसे बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गीत चलाने की, पर आप हमारी भी प्रॉब्लम को समझिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सभी के गीतों को चलाना। माधुरी जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच। कविता जी मोचदा से, प्रकाशवती जी आपको भी सिलेक्शन पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच।

चलिए, इस वक्त पितृपक्ष में सभी लोग हैं और पितृपक्ष के साथ साथ यहाँ पर बिंदिया, रोशनी, महादेव और मामा सुनीता देवी दिन हमारे साथ है। सभी को पितृपक्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हैं।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। यहाँ पर गीता जी हमारे साथ पोंफिया से जुड़ी हुई हैं, पति रोहित, साथ है आदित्य, आरव, तानिश, जानवी, सभी परिवार के लिए विश्वानी जी आप भी हमारे साथ जुड़ी रही, विश्वानी दुमन, हमेशा की तरह इंदिरा, शारदा, सहेली है नीता और नीला और प्रतिभा,

शोभा और गीता गजाधर, अनीता लाल जी आप भी हमारे साथ मोरालबिया से जुड़ी रही, करुणा अमृता कविता के साथ, माधुरी जी आप भी साथ दे रही हैं, प्रकाशवती जी, कविता जी मोचिदा से, और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, बसंती जी बोबासन से आपने भी कॉल किया, थैंक यू सो मच। बस कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी का दिल खुश करें, कोई नाराज ना हो, और बस आप हमारी दुविधा को समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बहुत प्यार जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर नीता जी, नीता मोहिस्वा, आप है पालमा काथोबोन की रहने वाली और आपने इस गीत की फरमाइश की है। माधुरी है बिल्कुल इमृत परिवार, माफ़ कीजिएगा, इमृत परिवार त्वाबुचिक से, साथ ही साथ गंगा बिसुन परिवार नुएल फ्रांस से, और महिस्वा परिवार पालमा काथोबोन से आपने इस प्यारे से गीत की फरमाइश की है, जो आपके पति को याद दिलाता है। बिल्कुल आप अपने पति को बहुत मिस करती हैं और वे राज कपूर के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो ये गाना आपके नाम और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने हमारा बहुत ही प्यार से साथ दिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को आपकी पसंद कार्यक्रम में, और बिल्कुल 4 बजे आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम जो है प्रकाश, इसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्बरन द्वारा। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, भूलिएगा नहीं सुबह का नजराना कार्यक्रम में।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: हिंदी माथे की बिंदी, विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी. सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की.
2: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश में. आपके लिए सदैव हम हिंदी से जुड़े कार्यक्रम लाते हैं. और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ एक छात्र जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं आज के प्रकाश कार्यक्रम में. और हम चाहेंगे कि वे श्रोताओं से अपनी जान पहचान बढ़ाएँ और स्वयं ही अपना परिचय दें.
3: सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते. मेरा नाम ननकू महावीर गोसाई है. मैं MJAC का छात्र हूँ. मैं BA हिंदी का छात्र हूँ और इसके साथ साथ मैं एक अध्यापक भी हूँ. मैं शिवोपासक सभा का एक मेंबर हूँ कह सकते हैं. मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ. वहाँ पर मैं छठी कक्षा के छात्र को पढ़ाता हूँ और प्रवेशिका के छात्र को भी पढ़ाता हूँ. और वहाँ पर कक्षा रविवार को होती है.
2: ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आज का एक युवा बैठका में, चाहे वे शिवोपासक सभा है, बैठका में बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका झुकाव कैसे हुआ कि आप हिंदी पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और हिंदी भाषा से आप कैसे जुड़ पाए.
3: तो मैं इससे शुरू करना चाहूँगा कि छोटे से ही मेरी माता जी ने मुझे प्रोत्साहित किया हिंदी पढ़ने के लिए, और उन्होंने

0: मुझे घसीट घसीट कर बैतका में पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजा है
1: जी।
0: और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि आज जो उन्होंने किया मैं इस स्तर तक पहुँचा हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हिंदी सीख भी रहा हूँ और यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुझे बहुत अवसर मिले हैं। मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के छात्र के होने के नाते मैं पार्लियामेंट में भी गया और वहाँ पर अवसर मिले कि मुझे मिनिस्टर के जो पद जो वे संभालते हैं वहाँ पर जो कार्य करते हैं मुझे वो मौका मिला कि मैंने वहाँ पर
1: एक अनुभव किया।
0: हाँ, मुझे ये अनुभव किया।
1: बहुत सुंदर आपने बताया कि हिंदी के माध्यम से आप पार्लियामेंट तक भी पहुँचे, तो ये हिंदी की विजय है, आपकी भी विजय है और कहीं ना कहीं पीछे आपकी माँ की विजय है जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुँचाया। चलिए अब हम बात करते हैं जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं महात्मा गांधी संस्थान, वहाँ पर क्योंकि सितंबर का महीना है और हिंदी दिवस आता है इसमें 14 सितंबर को, इसके लिए आयोजन हुआ होगा, क्या आयोजन था, किस प्रकार था, क्या क्या हुआ, हमारे श्रोताओं को बताइए क्योंकि वे घर पर बैठे हैं, थोड़ा सा जान पाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हिंदी के लिए आजकल क्या हो रहा है संस्थानों में।
0: जी ज़रूर, तो MGI में महात्मा गांधी संस्थान में हम वहाँ पर हिंदी सप्ताह मनाते हैं, जहाँ पर एक सप्ताह के लिए वहाँ पर हम कक्षा नहीं करते हैं बल्कि हमारे प्राध्यापक और हम छात्रगण हम सब मिलकर हिंदी को मनाते हैं और वहाँ पर बहुत कार्यक्रम वे लोग करते हैं जिसमें हम भाग लेते हैं और हमें पुरस्कृत भी किया जाता है। तो मैंने नुक्कड़ नाटक में भाग लिया जिसके लिए मुझे प्रथम प्राइज मिला, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, धन्यवाद
1: जी।
0: तो इसका जो लक्ष्य है ये है कि बच्चों को उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए या उसको और मनोरम बनाने के लिए हम करते हैं, मनाते हैं, ताकि जब हम जॉब मार्केट में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कैसे हम स्वभाव करेंगे, कैसे बात करेंगे। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रेडियो पर, तो इसका एक योगदान है जिसमें मैंने भाग लिया।
1: क्योंकि एक सप्ताह पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ पाए पर उसके अलावा आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया, आनंद लिया और उसके साथ साथ एक अनुभव पाया कि किस प्रकार हम भाषा के साथ, चाहे वे लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे वे कहानी कथन हो, चाहे वो एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट हो, वो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगा और साथ ही साथ अनुभव तो है ही
0: जी।
1: तो आपके लिए जो गतिविधियां मनाई गई उसमें से रोचक कौन सी थी आपके लिए?
0: मेरे लिए जो रोचक रही वो थी नुक्कड़ नाटक ही,
1: नुक्कड़ नाटक
0: जिसके लिए हमने बहुत बहुत प्रिपरेशन किया है, हमने तैयारी बहुत की। हमने
1: यहाँ पर श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि नुक्कड़ नाटक जिसे अंग्रेजी में स्ट्रीट
0: प्ले
1: कहते हैं वे है जिसमें ना कोई मंच होता है, ना कोई साज सज्जा होती है और ना कोई विशेष वेशभूषा होती है, पर एकदम से तैयारी करके जहाँ पर भी जगह मिलती है, जैसे कि कहा गया स्ट्रीट प्ले, वैसे ही कोई भी नुक्कड़ हो वहाँ पर नाटक प्रस्तुति होती है।
0: जरूर,
1: तो आप बड़े आगे बताएं।
0: जी, तो हमने एक टोली बनाई
1: जी
0: और तैयारी की। हमने सोचा कि क्यों ना हम जहाँ पर जो स्कूल का जो माहौल होता है तो हमें पता है कि कहीं कहीं पर तो बुलिंग होती ही रहती है
1: जी,
0: तो इसलिए हमने इस विषय को चुना ताकि हम बता सकें कि बुलिंग हमारे जीवन का एक भाग होता है और इससे
1: बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं,
0: डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या फिर खुदकुशी भी करते हैं, आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग होते करते हैं।
1: तो उस नुक्कड़ नाटक का विषय जो तो आपने बता दिया
0: जी,
1: नाटक का शीर्षक क्या रहा?
0: शीर्षक ही बुलिंग रहा।
1: अच्छा,
0: हमने यही शीर्षक रखा जी,
1: स्लोगन की तरह माने या उसका टाइटल माने, जो भी
0: तो
1: बुलिंग ही था,
0: ताकि हम जो श्रोताओं हैं उनसे मिल

0: सकें और जुड़ सकें, इसलिए हमने यह रखा।
1: तो और उसमें इंटरेक्शन भी बड़ी जल्दी मिलता है
0: जी,
1: क्योंकि जब लोग देख रहे हैं तो आप उनके हाव भाव से जान जाते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है या वो आपसे जुड़ पाए हैं या नहीं।
0: हाँ, मैंने देखा स्वयं, मैंने यह अनुभव किया है कि लोगों को हमारे नाटक को बहुत पसंद आया
1: जी।
0: तो इसमें हम यह ज्ञान देना चाहते थे कि अगर कोई इसके प्रभाव में पड़ जाता है या ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, तो उसे कोई गलत कदम नहीं करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि अपने आप को ख़त्म करना ये सही बात नहीं है।
1: नहीं
0: तो किसी से बात करें या
1: कहीं भी जीवन में कमज़ोर पड़ना वो आपकी शिक्षा का महत्व भी खो देता है, हर प्रकार से आपको पीछे धकेल देता है।
0: तो कोई होगा जो किसी के साथ हम बात करना चाहेंगे या हमारे दुख को बांटना चाहेंगे, वे हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं ताकि हम इससे बाहर निकल सके और एक अच्छा जीवन जी सके।
1: चलिए, आप
0: क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है,
1: संदेश दे दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जीवन में लोगों की परवाह ना करते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए, आगे। इस नाटक में आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। और इसके अलावा इस सप्ताह में युवा जैसा न्यूज़लेटर एक आयोजन हुआ जिसमें इसका लोकार्पण हुआ प्राइज गिविंग सेरेमनी में। तो प्राइज गिविंग सेरेमनी में इस आयोजन से आपके लिए युवाज में क्या संदेश रहा कि ऐसा एक न्यूज़लेटर क्यों होना चाहिए, या वो प्रतिभा को उभारता है, आपका एक सहयोग मिलता है बाकी छात्रों के साथ जुड़कर ऐसा निकालना, क्योंकि हमारे देश में समाचार पत्र नहीं है हिंदी के।
0: जी, लेकिन पहले था, अब नहीं है।
1: अब नहीं है
0: लेकिन
1: अब सबके हाथ में मोबाइल जो है,
0: जी मोबाइल है, अब सब ऑनलाइन मिलता है,
1: ऑनलाइन मिलता है
0: जी।
1: तो युवाज ऑनलाइन है,
0: युवाज ऑनलाइन है, हमारा एक फेसबुक पेज है युवाज के नाम से ही
1: जी।
0: सभी लोग, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे पेज को फॉलो करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप लोग हमसे फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको लिंक भेज सकें, आप हमसे जुड़ सकें
1: जी।
0: और अगर आप लोग चाहेंगे कि कुछ करें हिंदी के लिए तो आपका स्वागत है,
1: आपका विचार युवाज तक पहुंचे तभी ये आगे बढ़ पाएगा
0: जी। तो युवाज के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो लोग रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं या फिर न्यूज़पेपर के लिए काम करना चाहते हैं या फिर MBC में ही क्यों ना काम करना चाहते हैं, तो यह एक मौका है उनके लिए कि वे लोग अपना जो टैलेंट है या फिर जो स्किल्स हैं उनको और बढ़ा सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें।
1: तो छोटे छोटे प्रयास बड़े
0: बढ़ेंगे,
1: बढ़ पाएंगे और एक बड़ा कदम आगे बढ़ पाएगा भाषा के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि हिंदी सप्ताह में भी आपने भाग लिया, युवाज में भी आप बड़े एक्टिव रहे और आपने हिंदी विषय चुना। हिंदी आपके लिए भविष्य में क्या है?
0: हिंदी मेरे लिए हमारे संस्कृति को और बढ़ाने के लिए एक माध्यम है
1: जी,
0: क्योंकि एक बात है जो हम कहते हैं, भाषा गई संस्कृति गई। तो इसलिए मैंने हिंदी चुना क्योंकि मुझे भाषा पसंद है, हमारे जो देश है हिंदी एक भाग है हमारे देश के लिए,
1: पूर्वजों के साथ आई हुई है हमारे।
0: तो इसके अलावा भोजपुरी भाषा भी है
1: जी,
0: लेकिन भोजपुरी भाषा अब उसका जो मूल्य है थोड़ा घट गया था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा और बढ़ता जा रहा है।
1: देखिए, जल जो है कहीं रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है, इसी तरह प्रवाह में, चाहे वे भाषा हो चाहे वे कुछ भी हो, जिसका प्रवाह बना रहेगा वो बहता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो भाषा भी वैसे ही है, उसका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। देखिए, आपने कहा भोजपुरी बढ़ रही है, तो बोलचाल के माध्यम से ही बढ़ रही है। आपकी माँ का प्रयास रहा कि आप हिंदी पढ़े, तो आपने उस प्रवाह में अपना अंश डाला, आपने पढ़ाई की, आपने गतिविधियों में जुड़े, आप उसको सराह रहे हैं, इसलिए आपको हिंदी प्रिय है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ पर आकर श्रोताओं के साथ बहुत सारी जानकारियाँ बांटी और आपको विशेष बधाई कि आप

0: अपने हिंदी सप्ताह में भाग लिया, पुरस्कृत हुए युवाज, जिसमें लेखन कार्य भी है, समाचार भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, और एक माध्यम आज का आपने और बढ़ा दिया कि प्रकाश के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं के साथ जान पहचान की। आगे भी उम्मीद करती हूं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे, अपने विचार श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार कि आप समय निकालकर यहां पर आए हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि बड़े लोग तो पढ़ते ही हैं, टीचर्स आते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, पर छात्र हमारे साथ जुड़ते रहें, ये सबसे विशेष है कि छात्रों को हम मौका दें और छात्रों के साथ जुड़कर हर मंच पर युवा को पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बहुत बहुत बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। भाई शिव हमारे साथ कार्यक्रम में आप तक टेक्निकली सहयोग देते हुए आप तक पहुंचाया उन्होंने ये कार्यक्रम, इसके लिए हम भाई शिव को भी आभार प्रकट करते हैं। आप सब श्रोतागण हमारे कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए भी आभार। आज के लिए इतना ही, अंजू को आज्ञा दें, एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद, शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।
2: एमबीसी रेडियो 24 hours a day।
3: तेलुगु सन्निधि, सांस्कृत आध्यात्मिक पिन्निधि। తెలుగు సన్నిధి
4: శ్రోతలకు మా హృదయపూర్వక నమస్కారం, స్వాగతం. సోమవారం నాడు అంటే సాయంత్రపు వేళ మన తెలుగు సన్నిధి అనే తెలుగు కార్యక్రమం ప్రసారం అవుతున్నది. అలవాటు ప్రకారంగా గంట సేపు కార్యక్రమం ప్రసారం చేస్తున్నాం. విశేషంగా సోమవారం నాడు మన తెలుగు సన్నిధి శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్రత దీక్ష మహోత్సవం శుభ సందర్భంగా ప్రసారం అవుతున్నది భక్తి పాటలతోనే.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
3: नमस्कार दोस्तों, बचपन ऐसा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आशा करती हूँ आप सभी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। रत्ना का सब प्रेम नमस्कार स्वीकार करें और आज के इस आधे घंटे

घंटे के सफर में आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। लाजवाब गीतों के इस सफर में गीतों का भी मनोरंजन साथ मिलकर सुनेंगे और कुछ लाजवाब बातों के साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि पहले के बचपन में और आज के इस बचपन में क्या अंतर आया है। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले गीत के साथ।

दोस्तों, पुराने जमाने के बच्चों के तौर तरीके और आज के नए जमाने के बच्चों के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है।

क्या मुख्य बदलाव आया है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तकनीकी रूप से आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। पहले के बच्चे संयुक्त परिवार में मानते थे और बिल्कुल उनका पालन पोषण किया जाता था उसी अंदाज में, पर आज की जो नई पीढ़ी है इस बचपन में और उस बचपन में काफ़ी अंतर आ चुका है। आदतों में बदलाव आया है और पहले के बच्चे जिस प्रकार से खेल खेला करते थे, ट्रेडिशनल खेलों में मानते थे, गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई, क्रिकेट खेलते थे और मिट्टी में बस अपने घुटने छिलकर आते थे, पर आज के बच्चे बस कमरे में बंद रहना पसंद करते हैं, डिजिटल और इंडोर खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोबाइल गेम्स, यूट्यूब वीडियो गेम्स और ऑनलाइन लूडो में अपना समय व्यस्त रखते हैं। इतना ही नहीं, हम ये नहीं कहते कि बचपन ये वाला ख़राब है, पर देखा जाए तो पहले के बचपन में हम बड़ों के सामने हमेशा शांत रहा करते थे, इसे अनुशासन कहा जाता था, पर आज के समय में बस कहते हैं कि बचपन आज का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो चुका है, हर बात के पीछे क्यों यानी तर्क करना सीख चुका है, पूछना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने ओपिनियन बताना, अपने डिसीजंस में उनकी सम्मति होना, ये एक परिवर्तन आज के ज़माने में देखा गया है।

दोस्तों, पहले के बचपन में बच्चे जो थे वो धैर्य और सहनशीलता पर उसे बहुत ज़्यादा सिखाया जाता था, और साधारण खिलौनों या छोटी चीज़ों में भी संतुष्टि किस तरह से प्राप्त हो सकती है ये सिखाया जाता था। पर आज के समय में कहते हैं कि तुरंत परिणाम उनको प्राप्त हो, तुरंत परिणाम चाहने वाला ये बचपन है। चीज़ें जल्दी ना मिलने पर कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ापन दिखाई देने लगा है, और तानेबाजी, ओहो हो, क्या कहे। वही सामाजिक दायरा सिखाया जाता था, सामूहिक भावनाओं में मजबूती हुआ करती थी, पड़ोस के बच्चों और रिश्तेदारों के साथ घुलने मिलने में झिझक नहीं होती थी। पर आज के समय में अकेलापन या सीमित दायरा, स्क्रीन टाइम के कारण सोशल स्किल्स कम होती दिखाई दे रही हैं। बच्चे खुद में सिमटे हुए नजर आते हैं, कई बार अपनी बात सामने रखना उन्हें मुश्किल लगता है, पर यही बात अगर उन्हें मैसेज द्वारा टाइप करनी हो तो भाई उनके स्किल्स का कोई जवाब नहीं।

दोस्तों, पहले के जमाने में हम दादा दादी के साथ या बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर कहानियां बांटा करते थे, कहानियां सुना करते थे। और आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, इंटरनेट और गूगल से सीखने का जमाना है। किसी भी जानकारी के लिए तुरंत डिजिटल साधन का सहारा लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम देखे तो हमारा जो दिमाग है वो बस गूगल या इंटरनेट के सहारे ही चल सकता है, ऐसा युग हो चुका है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर हमें कुछ अपने दिमाग से सोचना पड़े तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हैंडीकैप हो सकता है, समझ सकते हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही लाजवाब बातें हमने आपके साथ शेयर की, पहले के बचपन और आज के बचपन के अंतर के बारे में। आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और गीतों का भी बिल्कुल लाजवाब सा साथ रहा है। तो चलिए लेते हैं इस अगले गीत को।

करना, यस कुछ करना है, जमाने के साथ चलना है, रोज एक नया सॉफ्टवेयर, आर वी अवेयर? नो डैड, तुम भी पढ़ो और हमें भी सिखाओ ना। ना तालो बात, ना हमें बुद्धू बनाओ, खेल भी खेलेंगे, हमें

दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के साथ बस आशा करते हैं कि अनुशासन, धैर्य और सामाजिक जुड़ाव ये कितना आवश्यक है, ये पहले के बचपन में सिखाया जाता था और आज के ज़माने में अधिक रचनात्मक, तकनीकी रूप से उन्नत और स्वतंत्र सोच वाले बचपन में हम कदम रख चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि आज का बचपन गलत है, बस ये थोड़ा हटकर अलग है, ये हम ज़रूर मानते हैं। तो चलिए इसी के साथ आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और बस इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के 6 बजे हैं, पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। लावाउचे में आज सुबह एक एनटीसी बस और एक लॉरी की टक्कर में लॉरी चालक की मौत। बस में सवार 20 लोगों में से 6 अब भी साज अस्पताल में भर्ती। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। 2025 में चीनी की बिक्री से 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी। थाईलैंड में बाढ़ से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। राजधानी बैंकॉक के कई इलाकों में पानी भरने के बाद करीब 6,000 लोगों ने राहत केंद्रों में शरण ली। सुरों की दुनिया में अमिट छाप छोड़ने वाली लता मंगेशकर की आज जयंती। दशकों तक उनके गीत हर पीढ़ी की यादों का हिस्सा बने। अब समाचार विस्तार से। आज के समाचारों की शुरुआत लावाउचे में हुए गंभीर सड़क हादसे के साथ। सुबह एनटीसी की एक बस और एक लॉरी की टक्कर में लॉरी चालक की मौत हो गई। बस में 20 लोग सवार थे, उनमें से 6 अभी भी फ्लाक के से अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल में भर्ती हैं। टक्कर किन हालात में हुई इसकी जांच की जा रही है। विस्तार कोयल सितल और गीता सुनारान के साथ।
2: सुबह के 7:45 बजे रुजल की ओर जाने वाली एनटीसी की लाइन 222 की बस एक लॉरी से जा टकराई। बस में 20 लोग सवार थे, जिनमें कई छात्र भी थे। हादसे में लॉरी चालक की मौत हो गई, वे 70 साल के थे। आपात सेवाएं सक्रिय हुई और घायलों को फ्लाक के सनिरु जगन्नाथ अस्पताल ले जाया गया।
3: Men payer après au fait man nicht ferme léger après ce moment dans un pack de l'année pour que nous nous dévirer donc tiens j'ai mon bizarre mettre parce que quand je te peux tiens moi je peux tu connais ça.
2: अस्पताल में घायल हुए 6 लोगों को भर्ती किया गया और 14 को जरूरी इलाज के बाद घर जाने दिया गया। अस्पताल के ड्यूटी मैनेजर डॉक्टर ताराचंद सिनुत कहते हैं,
4: une à peu près 21 personnes qui atteignent l'hôpital aujourd'hui. Et il y en a 6 parmi là-dedans qui sont admitted. Parmi là-dedans, il y a un chauffeur, il y a un contrôleur, il y a une personne qui a une fracture 3 côtes, et il y a une madame qui a une blessure de la tête. Et nous, nous

0: Aussi, dans trois élèves qui étaient involés dans cet accident-là, il y en a un élève 16 ans, il y a à l'école secondaire, et nous avons deux élèves tertiaires qui sont à l'examen aujourd'hui.
1: दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।
2: उधर एनटीसी के डिपो में आज सुबह कर्मचारियों ने गो स्लो किया। इसका असर राजधानी जाने वाली कुछ बस सेवाओं पर पड़ा, खासकर काथोबोन क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी हुई। विवाद नए काम के समय को लेकर है, जिसमें ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है। परिवहन मंत्री उस्मान माओमेद ने डिपो पहुंचकर मैनेजमेंट और कर्मचारियों से बात की। उनके मुताबिक उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि कल से बस सेवा सामान्य हो जाएगी। चीनी की बिक्री से 2025 में 10.4 बिलियन रुपए की आमदनी, लेकिन गन्ना उद्योग के सामने जमीन और मजदूरों का सवाल अभी भी बना हुआ है। पोटवी में आज मॉरिशस शुगर सिंडिकेट की सालाना बैठक में सचिन सुकना नए अध्यक्ष चुने गए। पदमुक्त अध्यक्ष निकोला मेघो ने बागास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग की और पहले गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाली करीब 10,000 हेक्टेयर खाली जमीन को फिर खेती में लाने की अपील की। मंत्री अरविंद बुलेल के मुताबिक गन्ना क्षेत्र में काम करने के लिए 600 विदेशी मजदूर दिसंबर में मॉरिशस आएंगे। काविंता पिसाओ, गीता सुनारान।
3: मॉरिशस का गन्ना उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, श्रमिक संघों की कमी और गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन में कमी शामिल है। शुगर सिंडिकेट के वर्तमान अध्यक्ष निकोला मेघो ने बताया कि 2025 की फसल के लिए उत्पादकों को प्रति टन चीनी 24,095 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि पिछले साल के लिए ये कीमत 27,478 रुपए थी। 2025 में चीनी की बिक्री से होने वाली आय 10.4 बिलियन रुपए रही, जबकि पिछले साल ये 11 बिलियन रुपए थी। अब खास शक्कर का हिस्सा कुल उत्पादन का 60% हो गया है, जबकि पिछले साल ये 54% था। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट ने बगास के लिए दिए जाने वाले दाम की समीक्षा की मांग की है। साथ ही कुछ आयात की जाने वाली चीनी से स्थानीय बाजार को बेहतर तरीके से सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने की भी मांग की गई। निकोला मेघो कहते हैं, बायोमास के दाम पर फिर से गौर करना होगा। आज बागास का दाम 3.50 रुपए प्रति किलोवाट है। मंत्री ने इन्फ्लेशन के बारे में बात की तो दाम भी बढ़ना चाहिए, इससे अन्य सेक्टर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे स्थानीय बायोमास की पैदावार करने के लिए।
4: Qui aussi incitera d'autres secteurs à planter, par exemple, pour faire de la biomasse locale.
3: कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने कहा कि बायोमास गन्ना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार बायोमास के दाम पर फिर से गौर करने की मांग पर अध्ययन करेगी।
5: Nous paierons dans ce qu'on appelle production de l'électricité à partir de biomasse.
3: बायोमास से बिजली उत्पादन कर रहे हैं, 3.50 रुपए के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इसे बढ़ाना होगा, इससे बायोमास आयात नहीं करना पड़ेगा। उत्पादन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2025 में 33,805 हेक्टेयर जमीन से गन्ने की कटाई की गई और कुल 2,20,305 टन चीनी का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आज भी खाली है। महासभा के बाद नए अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सचिन सुकना को नया अध्यक्ष चुना गया है, वे इससे पहले शुगर सिंडिकेट के उपाध्यक्ष के पद पर थे।
2: दुनिया भर में पेय पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है और बल्कि 2025 तीन दशकों से ज्यादा अवधि के लिए सबसे सूखा साल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं। उदाहरण के लिए माओवाकवा को ही लें, जिसका जल नवंबर 2026 तक 20% तक का

0: चिंताजनक स्तर पर पहुंच सकता है। विस्तार अगली रिपोर्ट में।
1: नदियों में पानी के बहाव को लेकर 2025 पिछले 35 सालों में दुनिया भर में सबसे सूखे सालों में से एक रहा। इस पर विश्व मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चिंताजनक है। संगठन की महासचिव सेलेस्ट सोलो कहती हैं, 2025 पिछले 35 सालों में नदियों में पानी के बहाव को लेकर सबसे सूखा साल रहा। पिछले 7 सालों में असामान्य रूप से बारिश और जल बहाव दर्ज किया गया। इस प्रकार की विनाशकारी आपदाएं अभी तक देशों और अर्थनीतियों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। परिणाम स्वरूप नदियों में पानी का बहाव कम हो रहा है, जमीन के नीचे भी पानी का स्तर गिर रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। WMO के हाइड्रोलॉजी निदेशक वेन जेनकिंसन कहते हैं, लगातार 7 सालों से दुनिया में नदियों में जल प्रवाह कम हुआ है। ये 1991 से 2020 के वर्षों के मुकाबले बड़ी गिरावट है। पिछले 4 नियमित सालों से दुनिया के कई बड़े ग्लेशियर पिघल कर गिरे हैं। आज धरती पर मीठा पानी कम हो गया है। पिछले 5 सालों के दौरान अफ्रीकी और एशियाई देश जल आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मॉरिशस में काफी समय से भारी बारिश न पड़ने के कारण पहले से ही मुश्किल हालात और बिगड़ रहे हैं। देश का मुख्य जलाशय माहोवाक्वा अभी अपनी क्षमता का मात्र 37% ही भरा है। स्थिति को देखते हुए पिछले जून महीने से CWA देश के कई इलाकों में रोजाना पानी की कटौतियां कर रही है। वाटर रिसोर्सेज यूनिट के निदेशक लोमिश जगू कहते हैं, अभी माहोवाक्वा का जल स्तर 37.6% के आसपास है। निकोलियर करीब 44% भरा है, जबकि कुछ अन्य जलाशयों में जल स्तर करीब 80% पर है। इस साल सेंट्रल प्लाटो के इलाकों में बारिश बहुत कम रही। ये दर 1998-1999 के बीच पड़े सूखे की स्थिति के आसपास है। अगले नवंबर महीने तक माहोवाक्वा का जल स्तर करीब 20% का होगा, जबकि दिसंबर तक ये 11% तक गिर सकता है। पाबंदियों के अलावा अब संबद्ध अधिकारी नए उपाय लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लोमिश जगू कहते हैं, CWA लाविविया पापाई में एक कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर स्थापित करने जा रही है। इससे कुछ प्रभावित इलाकों तक पानी सप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही एक ड्रिलिंग अभियान शुरू किया जा चुका है। एक और महत्वपूर्ण उपाय के तहत हमने मौलोंग जलाशय को माहोवाक्वा की प्रणाली के साथ जोड़ा है। पानी एक कीमती संसाधन है, इसे बर्बाद न होने देना सभी की जिम्मेदारी है।
0: क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड ने 100% रिसाइकल की जा सकने वाली पेट बोतलों की नई उत्पादन लाइन में 300 मिलियन रुपए से ज्यादा निवेश किया है। आज इसकी लॉन्चिंग पर मंत्री राजेश भगवान ने बताया कि सरकार नए नियम तैयार कर रही है, जिसके तहत उत्पादकों को अपने इस्तेमाल हो चुके उत्पादों को इकट्ठा करने और रिसाइकल करने का खर्च उठाना होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों के मंत्री आदिल आमिया मियां के मुताबिक तैयार किया जा रहा इंडस्ट्री बिल उद्योगों को विविधता बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा। माधवी जगन्नाथ, अशिता रघु।
2: बेल्ट्रोज में क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड की नई उत्पादन इकाई पिछले कुछ महीनों से काम कर रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस उत्पादन लाइन में 30 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यहां 100% रिसाइकल किए जा सकने वाले PET बोतलों का उत्पादन किया जाता है। PET एक हल्का और मजबूत प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल पेय पदार्थों की बोतलें और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग बनाने के लिए किया जाता है। क्वालिटी बेवरेजेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इनिगो डे प्राडो कहते हैं, प्रयोग किए गए बोतलों को इकट्ठा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं, धोकर फिर से रिसाइकल करके प्रयोग किया जाता है। डायट पेप्सी के बोतलों के लिए फिलहाल ऐसा किया जा रहा है, अन्य पदार्थों के लिए भी आने वाले वर्षों में ऐसा करेंगे। पॉलीपैट के साथ मिलकर बोतलों को जमा किया जाता है। इस नई व्यवस्था से हर बोतल के उत्पादन में बिजली की खपत 56% तक कम होती है और पानी के इस्तेमाल को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। रीना सुहाई सुंटो कहती हैं, एक नए CIP सिस्टम में निवेश किया है। ये मशीन हमें पानी और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग को कम करने में मदद देती है। सभी कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे मशीन का प्रयोग कर सके। इस नई उत्पाद

0: उत्पादन इकाई के लॉन्चिंग समारोह के दौरान पर्यावरण मंत्री ने नए नियम तैयार किए जाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्पादकों की विस्तृत जिम्मेदारी की व्यवस्था लागू करना है, जो प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे के सिद्धांत पर आधारित होगी। मंत्री राजेश भगवान कहते हैं, पैकेजिंग के उत्पादकों को अपने बोतलों के संचालन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और रिसाइकल किया जा रहा है। एक आधुनिक सिस्टम डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि हर मॉरिशन इन्हें जमा करने में योगदान दे। वही मंत्री आदिल अमियामिया ने कहा कि उद्योग क्षेत्र से संबंधित नए विधेयक का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तकनीकी बदलावों के साथ खुद को ढालने में मदद करना है, साथ ही उसकी उत्पादकता में सुधार करना है। आज कामगारों की कमी, लागत में बढ़ोतरी समस्याएं हैं। मशीन में निवेश करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।
1: Peut évoluer à Maurice, il peut évoluer d'une façon que pour nous adapter nous à nos défis économiques.
0: Quality Beverages Limited ne 1991 में मॉरिशस में PET पैकेजिंग की शुरुआत की थी। पैकेजिंग की ये नई उत्पादन लाइन कंपनी के विकास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये नवाचार तथा अधिक टिकाऊ उत्पादन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: तो विवरण गीता सुनारान का रहा। दिखने में छोटा और प्यारा, हाथ में दबाने पर तनाव कम करने वाला खिलौना, लेकिन स्क्वीजी डंपलिंग बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कई देशों में इसे बाजार से वापस मंगाया जा रहा है, जबकि मॉरिशस में ये अब भी खुले तौर पर बिक रहा है। आखिर ये खिलौना यहाँ की दुकानों तक कैसे पहुँचा? हमारी रिपोर्ट यासिन दैन महमूद की इस रिपोर्ट में ज्यादा खुलासा। इन दिनों फैशन में आया एक नया खिलौना, कई रंगों और कई आकारों वाला स्क्वीजी डंपलिंग, कुछ में ग्लिटर भी हैं और कुछ बिना ग्लिटर के। इनकी ऑनलाइन मांग लगातार बढ़ रही है। ये खिलौना दुकानों और कुछ फेरी वालों के पास भी हैं। देखने में बेहद प्यारा ये खिलौना अपने अंदर एक संभावित खतरा छिपाए हुए है। कई देशों, खासकर इंग्लैंड और फ्रांस में, कुछ मॉडलों को अधिकारियों ने वापस करने का आदेश दिया क्योंकि उनमें संभावित कैंसरकारी पदार्थ पाए गए। इसके अलावा कुछ मामलों में खिलौने के फटने और अंदर मौजूद पदार्थ के त्वचा से संपर्क में आने से जलन की भी शिकायत की गई। मेबर्ग में ऐसे ही एक मामला सामने आया। मॉरिशस में खिलौनों की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लागू हैं। मॉरिशस स्टैंडर्ड्स ब्यूरो सुरक्षा से जुड़े मानकों के पालन को सुनिश्चित कराता है। MSB की निदेशिका रोमा पासान ने कहा, खिलौने की जांच की जाती है ये देखने के लिए कि उससे बच्चे को खतरा तो नहीं, उपकरण ढीले तो नहीं, बच्चे उसे कहीं निगल न जाए, कपड़े में कहीं जल्दी से आग न लग जाए। रासायनिक पदार्थ की भी जाँच की जाती है, जहाँ रंगों का इस्तेमाल होता है जिसमें लेड हो सकते हैं। यदि जांच के नतीजे संतोषजनक नहीं तो MSB उत्पादों की क्लियरेंस के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये खिलौना मॉरिशस के बाजार तक पहुंचा कैसे? खिलौने नियंत्रित होते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन खरीदे जाए सीमित संख्या में, तब व्यक्ति खुद इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। यदि संख्या 10 से ज्यादा हो तो कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट ये सुनिश्चित करेगा कि जांच का प्रमाण हो। एक ऐसी खामी जिसका फायदा कुछ विक्रेता ऑनलाइन ऑर्डर और छोटी मात्रा में किए जाने वाले आयात के माध्यम से उठा सकते हैं, इसीलिए MSB ग्राहकों से सतर्क रहने की अपील करता है। खासकर ऑनलाइन खरीदारी के समय जिनके उत्पादों पर जरूरी नहीं कि वही सुरक्षा जांच लागू हुई हो। सेहत की बात हो तो शरीर के साथ मन का ख्याल भी जरूरी है, यही आयुर्वेद की सोच है। इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गुरुवार 17 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में चर्चा हुई। आयोजन 23 सितंबर को मनाए जाने वाले आयुर्

0: आयुर्वेद दिवस 2026 का हिस्सा था। इस मौके पर आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी देने वाले आयुर्वेदा कोने की भी शुरुआत की गई। रिपोर्ट प्रियंका हरि की, विवरण अशिता रघु का।
1: एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बनाए हुए है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद शरीर, मन और जीवन शैली के बीच संतुलन पर जोर देता आया है। एक पारंपरिक ज्ञान जिसमें आज की युवा पीढ़ी भी दिलचस्पी ले रही है। केशव पुगाव कहते हैं, हमारे बड़े लोग व पूर्वज जिन जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे, इनकी उपचारात्मक तत्वों पर ध्यान नहीं देते थे, पर आज एक मेडिकल विद्यार्थी होने के नाते इनका एहसास हो रहा है और आयुर्वेद डॉक्टर की पढ़ाई का एक हिस्सा है जो बहुत आवश्यक है। नोवीना चिनाई कहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से इस क्षेत्र में ज्यादा जान पाएंगे और इस तरह प्राकृतिक उपचार को अपना पाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होगा।
2: रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन आयुर्वेदा।
1: आयुर्वेद दिवस 2026 के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में आयुर्वेद चर्चा के केंद्र में रही।
3: इट्स अ वेरी रिच ट्रेडिशन।
1: आयुर्वेद फॉर अ हेल्दियर टुमारो विषय पर आदि दिन का एक सिंपोजियम आयोजित किया गया जिसमें विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के शिक्षक और इस क्षेत्र के पेशेवर शामिल हुए।
4: अंडर दैट नो आयुर्वेदा प्रोग्राम वी
1: मॉरिशस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद चेयर डॉक्टर पूजा सबरवाल कहती हैं, लक्ष्य है विद्यार्थियों और स्टाफ को अंतर विषयक अनुसंधान की संभावनाओं के बारे में बताना और ये दिखाना कि विभिन्न विषय अपने अपने अध्ययन के क्षेत्र में रहते हुए आयुर्वेद में किस प्रकार योगदान दे सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों और आयुर्वेद के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में एक आयुर्वेद कॉर्नर का भी उद्घाटन किया गया। ये एक ऐसा स्थान है जहां आयुर्वेद के बारे में लोगों को अधिक जानकारी दी जाएगी और युवाओं को इस पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तर्शरी मंत्री कविराज सुको कहते
3: हैं,
1: युवकों को समझने में आसानी होगी कि कैसे पारंपरिक उपचार के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सब हम पहले करते थे जो अब नहीं करते, जैसे पूर्व में हर सप्ताह या बीमार पड़ने पर सर में तेल मालिश करते थे, दर्द होने पर आयापना के पत्ते पीते थे। इन सब में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं, भारत का आयुर्वेद के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना और विकसित करना है तथा वैज्ञानिक परिणामों, अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से इसे मजबूत बनाना है। इसी सोच और प्रयास के तहत आयुर्वेद से संबंधित ये सूचना मंच शुरू किया गया है। परंपरा और आधुनिकता के बीच आयुर्वेद का ये ज्ञान आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहेगा और भविष्य की बेहतर सेहत की ओर ध्यान केंद्रित करेगा।
0: विदेश की खबरों में, ब्रिटेन में अमेरिकी सेना के इस्तेमाल वाले रदरफोर्ड अड्डे के पास 3 संदिग्ध वाहन्स मिलने के बाद 5 लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस को वाहनों में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली है जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के 85 घरों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। आतंकवाद विरोधी अधिकारी भी यही जांच रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश का ईरान से कोई संबंध है। ऐसा संबंध अभी साबित नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है जिसके तहत लड़ाई रोकने और 7 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात थी। फिर भी ट्रंप को इस सप्ताह नई बातचीत की उम्मीद है। ईरान का कहना है कि जलमार्ग खोलने से पहले उसकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिलहाल कोई नया समझौता नहीं हुआ है। मेक्सिको के प्रशांत तट पर तूफान पोलो का खतरा बना हुआ है। उधर थाईलैंड की बाढ़ में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि नेपाल और भारत में तेज बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने कई जाने ली हैं। 4 देशों के हालात पर हमारी रिपोर्ट आस्था गोबिंद के साथ।
5: मेक्सिको के प्रशांत तट की ओर तूफान पोलो अब कैटेगरी 3 पर है। इससे पहले

वो श्रेणी 5 तक पहुंच गया था। गलिस्को में बाढ़ का पानी एक घर को बहा ले गया। 2 बच्चों की मौत हुई और उनके माता पिता लापता हैं। तूफान के सोमवार रात कैलिफोर्निया पर पहुंचने का अनुमान है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटाया गया है। थाईलैंड में 16 सितंबर से आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। राजधानी बैंकॉक में किसी मौत की पुष्टि

0: में जलाशय भरने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। नेपाल में चार दिनों की तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग अब भी लापता है। भूस्खलन ने कई सड़कें बंद कर दी और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बचाव का काम चुनौती बना हुआ है। देश अभी अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से उबर नहीं पाया है और अब बारिश ने फिर मुश्किलें बढ़ा दी है। पड़ोसी भारत के उत्तर प्रदेश में 3 दिन की भारी बारिश और बाढ़ से कम 62 लोगों की मौत हुई है। 46 लोग घायल हैं और 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह स्कूल बंद किए गए हैं और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ओडिशा में भी 75,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो सकती है, जबकि दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बहुत भारी बारिश हो सकती है।
1: मेरी आवाज ही पहचान है, लता मंगेशकर की आवाज के लिए शायद इससे सुंदर पंक्ति कोई नहीं। कभी वे माँ की लोहड़ी जैसी सुकून देती हैं, कभी प्यार की याद बनकर दिल में ठहर जाती हैं। आज उनकी जयंती पर उन गीतों को फिर से सुनने का मन होता है जिन्हें हम बरसों से जानते हैं, फिर भी हर बार उनमें कुछ नया महसूस करती हैं। उनके आवाज से जुड़ी यादों पर ये खास रिपोर्ट सुमेहरा अकबर अली के साथ।
2: नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर भारत की वो अनमोल रत्न हैं जिनकी मधुर आवाज से वो जिंदा हैं। उनकी आवाज ने मोहब्बत को तरन्नुम दिया, प्यार को अंदाज सिखाया, प्रेम की भावनाएं जिताई और कला को जान दी। 28 सितंबर 1929 को लता जी की पैदाइश इंदौर में हुई थी। पंडित दीनानाथ मंगेशकर और श्रीवंती हरिदास अलाद के 5 बच्चों में लता दीदी सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म के लिए अपने पहले गाने को रिकॉर्ड किया था। 1946 में आपकी सेवा में उनका पहला हिंदी गाना आया था, लेकिन 1949 में महल फिल्म का आएगा आने वाला गाना उनकी शोहरत का बाइस बना। शास्त्रीय संगीत से भजन, रोमांटिक गीतों और देशभक्ति तरानों तक लता जी ने हिंदी सिनेमा उद्योग के बेहतर से बेहतरीन मौसीकारों के साथ काम किया।

1963 में लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों गाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम किया। ये गाना भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखा गया था, जो 1962 की जंग में शहीद हो गए थे। 1997 में ए आर रहमान ने माँ तुझे सलाम की कंपोजिंग की थी, जिसने उस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये गीत रचित किया गया था। लता मंगेशकर को यूं तो सभी प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिले, लेकिन उनकी कला और निराली आवाज से उनके लिए खास सम्मान दिए जाने लगे। वो पहली भारतीय कलाकार रही जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया। 30 से ज्यादा भाषाओं में उनके हजारों गाने हैं। भारत के अलावा कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में वो चल बसी, लेकिन उनके हर एक गाने के जरिए वो हर दिल में बाहयात हैं।

खबरों के अंत में चलिए सुनते हैं मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह कर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि पूर्व एवं ऊंचाइयों पर आज रात के दौरान थोड़ी बहुत बारिश के अलावा मौसम सुहाना होगा। कल सुबह और दोपहर में भी पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घेराएंगे और जहां तहां बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के दौरान हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में

0: 6:29 हो चुके हैं। समाचार बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है लीडोवी के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। ओकुले में 51 साल के 51-year-old श्री शास्त्री गंगना जो बुडू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे विराज गंगना के मकान औंखे कातों ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लानमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबा में 69 साल के 69-year-old श्री मुनीलाल डुला जो रोहित से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे नेश्वर डुला के मकान नंबर 42 रूट कोकोटरी रोशबा से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले दीप्रेत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 kHz पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: Radio Mauritius.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस।

सादर प्रणाम श्रोताओं, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस और अब समय है उस सुंदर पल का जब दिन भर की थकान के बाद हम थोड़ा विराम लेते हैं अपने जीवन से और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आपका अपना कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम, सोमवार की इस पावन रात्रि में आइए, मन को शांत करते हैं, कुछ पल अपने भीतर उतरें तथा उस परम शक्ति को याद करते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। जब मनुष्य का विश्वास संसार से हटकर प्रभु पर टिक जाता है तब चिंता धीरे धीरे प्रार्थना में बदल जाती है। तो आइए सांसों में भक्ति भरें, हृदय में श्रद्धा जगाएं। तक इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोतागण, जीवन में सुख भी आता है तथा दुख भी। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी छोटी सी मंजिल भी बहुत दूर दिखाई देती है। परंतु भक्त का विश्वास यही कहता है, जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो उसे जीवन की राहों से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु हमारे हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देते, परंतु वे हमें उस उत्तर तक पहुँचने की शक्ति

भजते प्रभु का नाम। इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत करते हैं श्रोतागण। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भोलेनाथ का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि सरलता में भी महान शक्ति होती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, कंठ में विष है, परंतु हृदय में समस्त संसार के लिए करुणा। यही तो महादेव है जो स्वयं विष पीकर भी संसार को अमृत सा जीवन देने की प्रेरणा देते हैं। आइए मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय और अब सुनते हैं एक मधुर

तो श्रोताओं, आज की इस भक्तिमय रात्रि में इतना ही। आप सुन रहे थे भजे प्रभु का नाम एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर। स्मरण रखिए, प्रभु का नाम वह दीपक है जो अंधेरे मार्गों में भी उम्मीद की रोशनी देता है। अपना ख्याल रखिए, अपने प्रियजनों से प्रेम बांटिए तथा प्रभु को अपने हृदय में रखिए। पुनः मिलेंगे यहीं पर, तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय श्री राम। भजे प्रभु का नाम इस कार्यक्रम से देते हैं।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
1: रेडियो 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।

रात की नमाज की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। सोने से पहले आयतुल कुर्सी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले अल्लाह की तरफ से हिफाजत में रहते हैं और सुबह तक शैतान उनके करीब नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक फरमाई। बहवाला सही बुखारी शरीफ।

रात के आखिरी हिस्से की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ, सवाल और मगफ़िरत तलब करने की तरफ बुलाता है। जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल फरमाए, जो मांगे उसे अता फरमाए और जो बख्शिश मांगे उसे बख्श दे। बहवाला सही बुखारी शरीफ। मौज़ सामीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: सब कोई के नमस्ते और आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। आज के रात है 28 सितंबर 2026, लेंदी के रात और 9:03 होलबा। आज के दिन थोड़ा भारी रहल और मौसम भी उतना अच्छा नहीं रहल और फजिर इधर उधर के कुछ खराब हमने के समाचार भी मिलल, लेकिन ई दिन पूरा हो गल और आप सब कोई के एगो अच्छा शांति और सुकून भरल शाम खातिर रात्रि खातिर हमने एक बार फिर प्रस्तुत हो रही जा आपके मनपसंद प्रोग्राम के साथ। तो जितना भी काम करवा लोग के आज दिन काम करते बीतल और काल फिर से शुरू हुई, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत काम करवा कमल और विभा चिंतामणि की आवाज़ में।

रात के 9:09 होलबा और आप सबको के फोन कॉल सावता बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो गीत चली ये खास तौर पर पूर्णिमा फोकीरा जी के, पूर्णिमा फोकीरा जी जे हमेशा की तरह सुनते रहलन प्रोग्राम और आपके पूरा परिवार और आपके बहू, आपके समधिन, आपके जितना जिले भवन जा और SSIN हॉस्पिटल के आपके जितना दोस्त हवन जा, पूर्णिमा जी सब कई के नाम आपके ओर से अगला गीत। और ये जो अगला गीत चली सुना नोयान के आवाज़ में कौन फूलवा, ये गीत के फरमाइश करत हवन विजय बेनी प्रसाद जी, आप शामुनी से हवा और शामुनी के आपके एगो दोस्त हवन जिनकरा सब कोई गुरुजी नाम से जाने लन जा, उनकर नाम है गणेश जगनारायण और साथ में आपके दोस्त शास्त्री बनोमाली जी मोहताबा से हवन।

ये दोनों जना के साथ साथ आपके दोनों बेटी आपके पत्नी के नाम ये अगला गीत विजय जी आपके ओर से सब सुने होला लोग के भी नाम ये अगला गीत और साथ में गाँव गोप के सुनीता जी अपन बहन विमाला के नाम ये अगला गीत करत हवन। विमाला जी के बेटा विदेश से आल रहलन और काल फिर से अपन सफर तय करियन अभी पैकिंग चलता तो विमाला जी आपके बहुत बहुत शुभकामना आपके बेटा के सफ़र अच्छा रही और सुनीता जी भी हमेशा खुश रहेलन आपके खातिर गीत मंगते मंगते तो चला ये अगला गीत आप सब कोई के नाम।

धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

और आज के जिन दिन रहल बहुत जगह पानी बरसल बा, बहुत जगह मौसम उतना अच्छा नहीं रहल। आज ठंडा भी करता, जितना गर्म काल कर ले रहल उतनी ही ठंडा आज करता। तो आप सब कोई अपन अपन ख्याल रखा जा और हमने के सड़क पर आपके बहुत जस्ती सावधानी चाहिए बरते के, काहे कि दिखत हवा कैसन कैसन खबर रोज मिलता और एक दिन में 3-4 गो ऐसा बुरा बुरा खबर मिलता जहाँ पर दुर्घटना हो ले जाता। तो जब पानी बरसेला, हवा हवा रहेला, तो आपके चाहिए जो सावधानी बा ओके दुगुना कर देवे के। और ये बखत जे आपके घर से नहीं निकले के ज़रूरत हुई, कोनो ख़ास वजह नहीं हुई निकले के, तो नहीं निकला बहुत ज़रूरी रही तभी रात के बखत निकले के चाहिए। और अभी ढेर कोई दिखत है जा निकलत हवा जा कोनो ख़ास कारण खातिर, लेकिन जोन काम अभी करबा, जो मुनाफा आपके अभी होई ओकर से कितना आगे जाइबा। तो जोन चीज जैसे जाता जाए दा मालिक बा सब कोई खातिर, सब ठीक हो जाए। और अगला गीत के फरमाइश कर ले हवन हमने के मेरा भाई दमिया, आप मौदार ब्या से हवा और आप बोलत हवा कि ये जोन अगला गीत चली बिजमावती संपत के आवाज़ में गीत गवाए, ये आप पूरा पायजा परिवार, दमिया परिवार और अपन बेटी और दामाद के नाम करत हवा। और साथ में उधर फोंजुसा के उमा जी, आप भी एगो शादी के गीत की फरमाइश करत हवा, कहे कि आपके परिवार में एगो शादी चलता, तो आपके बहुत बहुत शुभकामना, पूरा परिवार के बहुत बहुत शुभकामना। और जितना कोई अभी हमने की सुनत हवा जा और बिजमावती संपत के गीत खुश रहे लजा सुनेगे, तो चला आप सब कोई के नाम गीत गवाई में जाना है रे चंदा।

गीत गवाए के बाद जो अगला गीत चली वह सुनीता ननकू के आवाज में धरिला चरनिया तोहार। ये गीत के मांग करत हवन सीला अपन पति सुरेन अपन सब नाती पोता रुद्राक्ष यौवन कबीर श्लोक अपन बेटी लोग के नाम शशि किरण सोनम के नाम और हंसली के नाम।

जगदम्बे भवानी के परगावल ई गीत सुनीता ननकू के आवाज में फ्लिक ऑफ लक से हमने के जे सुनत हवन अनिता जी, उनकर नाम भी उनकर पूरा परिवार के नाम।

सुनीता ननकू के आवाज़ में अम्बे भवानी के बाद अगला जन गीत चली कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में नया सिरे ई गीत मांगत हवन हांसले अपन सास प्रेमिला के नाम।

नीरज गुप्त मधु की आवाज में हेले साबुन हेले लुंडा, ये गीत खास तौर पर लविनी सैंपिया के अफेज के मांग पर। अफेज, आपके मनपसंद गीत आपके नाम।

सुना नोयान के ई जबरदस्त गीत के बाद अगला जन गीत चली संभावती दुमन के आवाज में, और ई गीत के फरमाइश करत हवन ललिता अपन सब बहन लोग के नाम और पूरा परिवार के नाम जिथ जोले से हवन, और उधर छोटी पोला जी से ई गीत अपन सब बहन लोग के नाम करत हवन अपन आत्माराम भैया और हरीश भैया के नाम भी, और जितना कोई भी अभी हमने के सुनत हवजा उधर वाकवा से सुदेवी जी भी ई गीत अपन सब बहन लोग के नाम करत हवन, मालेंगा के सब राम रतन परिवार के नाम और पूरा कुशल परिवार के नाम।

संभवती दोमन के आवाज के बाद जो नगला आवाज अब सुनाई दे वह सत्यम गणपत के आवाज में छोटे मोरे नकुआ छोटे मोरे फुलिया और इगेत खास तौर पर पीतों के अमृता गणेश के ओर से उनकर पोती सोनिया परी और उनकर बेटा विहान और बहू मीनाक्षी और बेटी पूनम के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night.

here on your one and only station. भोजपुरी तड़का किरण संगे. अगला गीत एगो दूसरा भोजपुरी संगीत के सम्राट बसंत सुपोल के आवाज़ में लाल लाल फुलवा. ये गीत ख़ास तौर पर मोताइलों के गीता जी के नाम, गीता जी जे बहुत प्यार के साथ अभी साथ देवत हवन.

ये वक्त रात के 10:05 होल बा और जैसे जाने ला अभी से 11 तक हमने के ये सफर चले होला बा और ये वक्त ढेर कोई अब सुते जाता हुआ जा ढेर कोई आराम करते करते गीत सुनते सुनते आपके नींद लगेगी।

इस रूह गलबा। लेकिन कितने कोई अभी काम करत हवा जा और काम करते करते हमके सुनत हवा, या फिर आप ड्राइव करत हवा और सुनत हवा, एक बार फिर अच्छा से गाड़ी चलाया, बहुत सावधानी बरतिया और स्पीड लिमिट के पूरा ओके अमल में अन्य, और जे आपकी तरफ से सावधानी रही तो हो ही सकेला कि जो कुछ इधर उधर घटे के होते सकी वो नहीं घटे। और हमने के शुभकामना आप सब कोई संगे बा। आज के दिन काफ़ी भारी रहल, आज के दिन काफ़ी थकान होला दिन रहल, लेकिन मौसम भी उतना ठीक नहीं रहल, लेकिन यही उम्मीद यही कामना के साथ ई रात के समाप्ति करब जा कि आवे होला जो दिन बा काल के दिन उ सब कोई खातिर बहुत अच्छा दिन रही। और आपके चाहें ई जोन बदलता मौसम बा ओकर ख्याल रखते हुए अपन ख्याल रखे के कहे के कबो ठंडा करता कबो गर्म करता, और है ये वो मौसम है जब सब कोई बीमार पड़ेला। और अभी लड़का लोग एग्जाम में चलता तो दुगुना सावधानी अब चाहें बरते के। और अगला जन गीत चली रागिनी सवारत और लीलो माथुर के आवाज़ में मड़ैया में आग। ई गीत के फरमाइश ख़ास तौर पर बगीज़े वेजा के नसीम के ओर से, नसीम अपन बहिन खतीजा के नाम ई गीत करे चाहत हवन और बोलत हवन कि उनकरा बहुत मन बा बहुत दिन से ई गीत सुने के। तो नसीम जी आपके मांग पर चला ई गीत संगे सुनी जा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.6.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.
4: जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवा जा वैचित सितम 28 सितंबर के आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। चाहे आपके जन्मदिन आज से अक्टे भी मना देला और अभी से अक्टूबर महीना तक मनेबा, कहे कि भोजपुरी तड़का में हम आपसे फिर से मिलब आवत सेमैन के, आवत मंगर के। तब तक जितना कोई के जन्मदिन बा, आप सब कोई के हैप्पी बर्थडे।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Sunehri par, Sunehri par, Radio Mauritius ke saath.
4: देखा जाए तो ज़िंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफ़ी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए। एक आवाज़, एक धुन और आँखों के सामने बचपन की गलियाँ, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और

घर का वो पुराना रेडियो सब कुछ जिंदा हो जाता है और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफर पर रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम।

0: वैसे दोस्तों, अगर दिल कभी उदास होना तो पुराने बॉलीवुड के गीत उसका सबसे खूबसूरत इलाज होते हैं। इन सुरों में एक अजीब सी ताकत होती है जो मुस्कान भी लाती है और आँखों को ज़रा नम भी कर देती है। इसीलिए तो हम आज सिर्फ गाने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने आए हैं। तो चलिए हर नगमे के साथ एक नई याद और एक नई मुस्कान बांट देते हैं।
1: आपका ये बजा ही सही

आज की रात को और भी खास बनाइए उन गीतों के साथ जो कभी आपके होंठों की मुस्कान हुआ करते थे। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत हमने कर लिया है। वैसे जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं ना, तो दिल अपने आप मुस्कराने सा लग जाता है, और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। तो साथ यूं ही निभाते रहे, अगला गाना आपके नाम।

0: एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।
1: बाहर से

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आरजे की निशा, जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता, महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर आपके नाम।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: किम चू मॉरिशियस।
4: नमस्कार श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम।
5: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
6: ரேடியோ மொரிஷியஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।

0: ABC Radio 24 hours a day.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
2: मन के सच्चे